मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ज और FM 100.3 मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: केश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और

0: असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना और शुरुआत करते हैं इस गणपति वंदना से।

जब भी भक्त का मन विकल होता है, जब भी उसका चित्त व्यग्र होता है, बस एक ही पुकार निकलती है, हे माँ कृपा कर दे, कृपा कर दे माँ।

माँ शारदे हम सभी को बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, सत्मार्ग पर चलने की इच्छा शक्ति दें। इसी के साथ ये गीत

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
2: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
1: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
2: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
3: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ, 8700014242।

0: लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: माँ के दर पर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी ख्वाहिशें लेकर, अपनी इच्छाएं लेकर, अपनी मांगे लेकर पहुंचता है। माँ का दर बिना कुछ दिए कहाँ अपने भक्त को जाने देता है।

इसी के साथ आज की आराधना अब संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत के विचार।

0: महात्मा जी ने जीवन काल में अपने बाल काल से ही संयम से, तपस्या से एक आध्यात्मिक शक्ति को उपार्जित किया। वो निरंतर इस बात में ही अपना समय लगाते थे कि किस ढंग से सच को प्राप्त करके इस संसार में नई जीवन की ढांचे को वो फिर ढाल सकें। इसी के पीछे उन्होंने अपना तमाम समय, अपनी तमाम शक्ति लगाई। अपने चिंतन से वो इस नतीजे पर पहुँचे कि सत्य और अहिंसा के आधार पर ही नए समाज का निर्माण हो सकता है। सत्य और अहिंसा के द्वारा ही मनुष्य समाज का उद्धार हो सकता है। सत्य और अहिंसा के द्वारा ही लोकप्रिय राजसत्ता स्थापित हो सकती है। सत्य और अहिंसा के द्वारा ही गरीबों की, शोषितों की अवस्था सुधर सकती है। और सत्य और अहिंसा के ही द्वारा ही मानव समाज में सभी मनुष्यों में भ्रातृभाव, प्रेम और सदाचार का प्रादुर्भाव हो सकता है। उस सत्य और अहिंसा को महात्मा जी ने हमारे देश में हमारे सामने रखा। सत्य और अहिंसा वैसे तो हमारे साहित्य का, हमारी सभ्यता का, हमारे संस्कृति का एक मुख्य अंग है। महावीर ने, गौतम बुद्ध ने, हमारे और बड़े बड़े धार्मिक नेताओं ने, साहित्यकारों ने सत्य और अहिंसा को सदैव हमारे देश में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया है। सत्यमेव जयते नानतम बार बार हमें बतलाया है। सत्यम शिवम सुंदरम की धुनि आज नहीं हजारों बरस से भारत में सर्वत्र सुनाई आ रही है। हरिश्चंद्र ने, रामचंद्र ने, सब ने सत्य की ही दुहाई दी और सत्य के ही आधार पर हमारे देश में एक सभ्यता का पूरी तरह से सुदृढ़ किला बनाया। परंतु महात्मा जी ने उसका और भी विस्तार किया। उन्होंने सत्य को केवल अपनी वैयक्तिक आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में हजारों, लाखों, करोड़ों के बीच में एक नए जीवन को उधारने के लिए, उसमें एक नई ज्ञान पैदा करने के लिए आगे बढ़ाया। उन्होंने सत्य और ईश्वर को एक साथ समझा और सदैव उन्होंने जो कुछ किया वह इसी आधार पर किया कि जो सत्य है वही सफल हो सकता है, जो सत्य के आधार पर किया जाता है वही नित्य का रहने वाला है। और सत्य में और सत्य में और नित्य रहने वाले में कोई अंतर नहीं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आज इस कार्यक्रम में किसान भाइयों को हम सुनवा रहे हैं बारिश के मौसम में फसलों की देखभाल विषय पर ऋचा गुप्ता से रितेश कुमार शुक्ल की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, किसान भाई राम राम, बहुत बहुत स्वागत बा किसान भाई आपका अपने कार्यक्रम कृषि जगत में। भैया हम सबे लगातार ऐसे विशेषज्ञ भैया या वैज्ञानिक भैया के बुलाई थे जे कि तमाम विषयन पे आपके नई नई जानकारी आपसे साझा करत हैं और वो जानकारी लेके भैया आप अपन खेती किसानी के बढ़िया करत हैं। तो भैया आज अपने बीच अगस्त के माह में सब्जियों की खेती पर जानकारी दे बिना ऋचा गुप्ता जे कि शोध छात्र हैं CSA कानपुर से आई हैं। तो ऋचा जी बहुत बहुत स्वागत बा आपका।
2: धन्यवाद जी।
1: ऋचा जी पहला सवाल किसान भाइयों के मन में ही आवत है, हालांकि किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं परंतु किसान भाइयों के मन में ही सवाल आवत है कि भाई का उनके पास ऐसा विकल्प बाटे कि भाई गेहूँ चावल के इतर भी कुछ ऐसा चीज की जाए जैसे भाई नगदी जो फसल होती नौकर लगावा जाए जैसे उनके फायदा मिल सके। तो जो न भाई महीना चलत बाट का किसान भाई कौन कौन से मुख्य ऐसी फसल हैं जेकर लगाई सकते हैं और उसे फायदा ले सकते हैं।
2: जी, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगी कि अगस्त माह की सब्जियों की खेती में आते हैं जैसे भिंडी, लौकी, करेला, टिंडा, अरबी, बैंगन, मिर्च, टमाटर आदि।
1: जी,
2: और इसमें भूमि का प्रबंधन की बात की जाए तो निराई गुड़ाई की जाती है जिसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए नियमित निराई की आवश्यकता होती है और सिंचाई बरसात में अतिरिक्त पानी निकालना और जल भराव से बचाव रखना करना चाहिए भूमि का। और खाद प्रबंधन की बात करें तो लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए। अगस्त माह में सब्जियों की खेती के दौरान कई प्रकार के कीट और रोग फसल को प्रभावित करते हैं।
1: जी जी।
2: इनमें फल छेदक कीट, एफिड, सफ़ेद मक्खी, लीफ माइनर, रेड स्पाइडर, माइट प्रमुख कीट हैं। फल छेदक कीट फल में छेद करके अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, जबकि एफिड और सफेद मक्खी पत्तियों का रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देती हैं और साथ ही वायरस रोग फैलाती हैं। लीफ माइनर पत्तियों में सुरंगें बनाती हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और रेड स्पाइडर माइट पत्तियों को पीला करके जाल बना देती हैं।
1: जी जी।
2: इस प्रकार से रोग में आता है जैसे झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यू और डैम्पिंग ऑफ बैक्टीरियल विल्ट और मोजैक वायरस सामान्य रोग हैं
1: जी,
2: जो बारिश के मौसम में फसलों पे लगते हैं। झुलसा रोग पत्तियों को भूरे धब्बे बना देती हैं, पत्तियों पर पौधों को सूखा कर देती हैं। पाउडरी मिल्ड्यू हैं, सफ़ेद चूंड जैसे परत बनाते हैं और डैम्पिंग ऑफ नर्सरी पौधों को गिरा देते हैं
1: जी।
2: और इन समस्याओं के नियंत्रण हेतु नीम का अर्क, फेरोमोन ट्रैप, जैविक शत्रु और रोग मुक्त बीज और फसल चक्र और कॉपर आधारित दवाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा और उत्पादन अधिक होगा। इस प्रकार से कीट और रोग प्रबंधन के लिए जैविक एवं रासायनिक दोनों उपायों का संतुलित उपयोग आवश्यक है।
1: जी अच्छा ऋचा जी, एक सवाल और आवत, जैसे आप बताएं कि भाई जैविक और रासायनिक दोनों की जरूरत पड़ा था पर आजकल जैसे जो समय चला बाटे कि भाई ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ भैया भी बतावत हैं कि जैविक खाद का प्रयोग किया जाए, जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जाए, कहे कि भाई जब हम सब्जी हम सब खाई था तो ई प्रचलन में भी बाटे कि भाई सब जने कहते हैं कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे जोर दिया जात बाटे। तो का ऐसा चीज की जाए कि भाई ऑर्गेनिक रूप से ओका उगावा जाए और कितना प्रयोग जायज बाटे रासायनिक खाद का?
2: जी जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगी जैविक खाद और रासायनिक खाद में दोनों में फर्क क्या होता है और किसान भाई को क्या लाभ है उससे।
1: जी।
2: जैसे जैविक और रासायनिक प्रबंधन दोनों ही फसल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन इनका दृष्टिकोण अलग अलग है। जैविक प्रबंधन में नीम का अर्क, नीम तेल, गोबर खाद, कंपोस्ट, फेरोमोन ट्रैप, परजीवी कीट और प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड बीटल का उपयोग किया जाता है।
1: जी।
2: अब ये प्राकृतिक शत्रु लेडी बर्ड बीटल क्या है? ये एक लाभकारी कीट है जो हानिकारक कीट को खा जाते हैं, जो जिससे हानिकारक कीटों का जो संख्या है वो नियंत्रित रहती है और जो पर्यावरण अनुकूल होता है, जैसे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है और लंबे समय तक टिकाऊ समाधान देता है। दूसरी ओर रासायनिक प्रबंधन में कीटनाशक और फफूंदनाशक जैसे इमिडाक्लोपाइराइड, स्पाइनोसैड, मैनकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आदि का प्रयोग किया जाता है जिससे त्वरित और त्वरित प्रभाव परिणाम देते हैं, लेकिन अधिक प्रयोग से कीटों के प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है और कीटों मिट्टी व पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

0: जी, बिल्कुल। अच्छा कि
1: जी
0: भाई दोनों को जरूरत बाटे, पर दोनों को ऐसे प्रयोग किया जाए कि भाई आपका मिट्टी के गुणवत्ता भी बनी रहे और हमार जोन उपज बाटे
1: जी
0: वह कम ना हुए।
1: जी जी
0: अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ आप बताइन। एक चीज और सब्जियन की खेती में समस्या आवत है किसान भाइयन के सामने, वो बाटे चूंकि बारिश के मौसम में पानी की उपलब्धता तो रहत है, पर एक चीज ही रहत है कि भाई पानी का जमाव हो जाता है, साथ ही साथ ये इंसान नहीं समझ पावत है कि कब खाद दे के चाहिए और कब सिंचाई करे के चाहिए।
1: जी
0: तो आप एक बार बतावें कि कब कब उनकर खाद दिया जाए, कहे की बात होता है कि भाई खाद दे के बाद कब वो पानी बरस गया तो वो खाद बह जाता, तो
1: जी
0: कब खाद दी जाए, कितने समय पे दी जाए, एक बारे में कुछ बतावें।
1: जी तो भूमि की तैयारी के लिए देखिए, सबसे पहले तो अच्छे जल निकास रखना चाहिए भूमि
0: जी
1: का,
0: जी
1: और गोबर की खाद कंपोस्ट का अधिक प्रयोग करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और उसके बाद ये बताया जाता है कि अगस्त के माह में बारिश होना स्वाभाविक है, तो लगभग 7 से 10 दिनों के अंतराल में इसमें सिंचाई दिया जाए। और अगर बारिश हो रही है तो ये सावधानी बरता जाए कि दवाओं का छिड़काव कम से कम किया जाए, क्योंकि बरसात के समय में दवा बह जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ, तो स्प्रे पंप में जो दवा रखी रखी जाती है उसको जो है अच्छे से घोलकर पत्तियों के ऊपर और नीचे छिड़काव किया जाए।
0: जी। ऋचा जी, एक सवाल और बाटे अपन किसान भाइयों की तरफ से कि जो आपने प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र के किसान बाटे भाई,
1: जी जी
0: जो हमारे पचन के पास जोन जमीन बाटे, जोन मिट्टी की गुणवत्ता बाटे, जोन संसाधन बाटे, ओकरे हिसाब से हमारे आसपास के जोन किसान भाई हैं कौन तरह के खेती करें, कौन सब्जी की खेती करें कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। कहे कि आप कई तरह की खेती के बारे में बताएं, मिर्च टमाटर शिमला मिर्च गोभी, कई तरह के भाई सब्जियन के खेती
1: जी
0: होता,
1: जी
0: तो कौन की तरह की खेती किया जाए जैसे भाई कम लागत लगे
1: जी
0: और ज़्यादा मुनाफा हो।
1: जी जी तो मैं बताना चाहूँगी, जैसे आप अगस्त के माह में बारिश के समय में आप भिंडी का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं किसान भाई।
0: जी
1: और इसका जो अच्छा बीज दर है भिंडी का, जैसे 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और दूरी जो रखे हैं बीजों का वो कतार से कतार की लगभग 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की 15 से 20 सेंटीमीटर। और खाद का प्रयोग करें, जैसे गोबर खाद है वो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, और नाइट्रोजन है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और लगभग फास्फोरस है 50 किलोग्राम, और पोटास है 50 किलोग्राम प्रति
0: बिल्कुल
1: हेक्टेयर। इस प्रकार जैसे बैंगन है, बीज दर इसकी 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर है नर्सरी के लिए, और दूरी कतार से कतार जैसे 60 सेंटीमीटर है, और पौधे से पौधे 45 सेंटीमीटर।
0: बिल्कुल
1: और गोबर की खाद इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप 25 टन प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं गोबर की खाद, और नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम। इसी प्रकार से आप मिर्च की भी खेती कर सकते हैं, जैसे 500 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर मिर्च का बीज दर लिया जा सकता है एक अच्छे उत्पादन के लिए। और जैसे दूरी है वो कतार से कतार 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे 30 से 45 सेंटीमीटर। और खाद में गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर, इसमें गोबर की खाद का डिफरेंस सभी जो है क्रॉप में या फसलों में अलग अलग लिया जाता है।
0: अच्छा।
1: मिर्च के लिए जैसे 20 टन प्रति हेक्टेयर है, और नाइट्रोजन 100 किलोग्राम है, फास्फोरस 50 किलोग्राम है, पोटास 50 किलोग्राम है। टमाटर इसी प्रकार सेम टमाटर की खेती भी की जाती है, और लौकी की खेती, और
0: जी
1: अन्य प्रकार की सब्जियों की भी खेती की जाती है। लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से इसका अगर बीज का सही मात्रा में उपयोग करेंगे, बहुत क्राउडेड फसल नहीं करेंगे, जैसे पास पास की बुआई या फिर पौधे से पौधे की दूरी या कतार से कतार की दूरी नियमित रखेंगे, तो उत्पादन किसान भाई को अच्छा होगा। जैसे आप देखेंगे कि अगस्त के माह में कीट भी
0: जी
1: काफ़ी
0: जी
1: आक्रामक होते हैं फसलों के लिए, अब और जैसे बीमारियां हैं वो भी काफ़ी आक्रामक होती है फसलों के लिए, तो कीट इसमें लगते हैं जो अगस्त के माह में, वो लगभग जैसे फल छेदक कीट है जिसको हम फ्रूट बोरर बोलते हैं, इसका जीवन चक्र है अंडे कहाँ देते हैं, पत्तियों में फलों पर देते हैं, और लार्वा फल में छेद करके अंदर प्रवेश करते हैं, प्यूपा मिट्टी में बनता है और वयस्क पतंगा निकलता है। नुकसान क्या करता है ये, जैसे फल में छेद कर देगा, अंदर से फलों को खाता है और बाजार के मूल्य को फल का घटा देता है। और नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, जैसे फल छेदक कीट को, जैसे नीम का अर्क है 5%
0: जी
1: छिड़काव कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रेप है उसका प्रयोग कर सकते हैं,
0: जी जी
1: जैसे स्पाइनोसेड है या कार्बरिल का छिड़काव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। ऋचा जी, आप आइन हमारे कार्यक्रम में और किसान भाई से इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी साझा कीन। भाई निश्चित तौर पर किसान भाई जानकारी ले कि अपन खेती किसानी में सब्जियों की खेती अगर कहीं करी तो निश्चित तौर पर उसे फायदा लें। आप आइन, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारिश

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खसरा, क्षमा कीजिएगा, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नेत्रदान, भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी विषय पर डॉक्टर मुकेश खरे से की गई अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत।
1: नेत्र प्रत्यारोपण और नेत्रदान, ये दोनों अलग अलग बातें हैं या एक ही बातें हैं?
2: नहीं, एक ही बात नहीं है। मैं आपको एक बहुत साधारण शब्दों में बताता हूँ
1: जी।
2: पूरे वर्ल्ड में 2.2 बिलियन ब्लाइंड्स हैं, जिसमें से आधे ऐसे हैं जो ब्लाइंडनेस प्रिवेंट की जा सकती थी। हमारे अपने देश में 5 मिलियन ब्लाइंड्स हैं
1: जी,
2: जिसमें से 93% प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है,
1: जिनको रोका जा सकता,
2: जिसको बचाया जा सकता था। और उसमें भी 8.2% ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट के बाद
1: जी,
2: सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट की वजह से है। उसके बाद 8.2% ब्लाइंडनेस जो है वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। जैसा कि हमने बताया कि आई डोनेशन तो होता है, उतना नहीं होता है जो हम लोग चाहते हैं। जैसे कि हम आपको एक छोटी सी बात बताएं, 2023 में हम लोगों को 62,000 आँखें मिली, 2024 में 64,000, 2025 में 69,000, और इस वर्ष हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 85,000 आँखों का कलेक्शन करें। और आपको ये मैं बता दूं कि आज की तारीख तक या कल की तारीख तक हम लोग लगभग 60,000 आँखें इकट्ठी कर चुके हैं।
1: क्या बात है।
2: लेकिन ये सारी आँखें ट्रांसप्लांटेबल नहीं होती हैं, इसमें लगभग 25-30% आँखें जो ऐसी होती हैं जिसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और उठ करके आता है, क्या किसी भी तरह की जो ब्लाइंडनेस है, जो अंधत्व है, चाहे वो जन्मजात हो चाहे वो बाद में हुआ हो, उसको नेत्रदान से ठीक किया जा सकता है क्या?
2: हर ब्लाइंडनेस नेत्रदान से नहीं ठीक होगी, केवल कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ही नेत्रदान से ठीक होती है। बाकी जो और टिश्यूज़ हैं जैसे स्क्लीरा है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन उससे विज़न नहीं आता है, या जो ख़राब कॉर्निया होती है उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, उससे आँख बचा ली जाती है लेकिन विज़न नहीं आता है।
1: सरकार या आप लोग किसी प्रकार का कोई कैंपेन या कोई जागरूकता अभियान चलाते हैं या चला रहे हैं?
2: 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पखवाड़ा मनाते हैं। हम लोगों ने अपने देश में कानून में कुछ ढील दी है अभी 2024 में
1: जी।
2: एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी, पहले ये था कि वो मैंडेटरी होना चाहिए आई डोनेशन सेंटर्स पे, लेकिन अब उसकी मैंडेटरी वाली शर्त खत्म कर दी गई है। एक बात मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक कानून बनाया हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट। इसके थ्रू ही सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, चाहे वो कॉर्निया का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे लीवर का हो या इंटेस्टाइन का हो, किया जाता है
1: जी।
2: लेकिन किडनी या लीवर के ट्रांसप्लांट में लाखों रुपए खर्च होते हैं, व्यक्ति को जिंदगी भर इलाज करना पड़ता है और मुश्किल से मिलता है, जबकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है उसको टिश्यू को लेने में, रिट्रीव करने में कोई खर्च नहीं आता है, और मुश्किल से 2,000 रुपये के खर्च में हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके बाद 3 से 4 महीने या 5 महीने के लिए दवा डाली जाती है, डेट्स इट। तो मुश्किल से देखा जाए तो 10,000 रुपये के खर्च में कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाता है।
1: क्या बात।
2: मेरी और हम सभी डॉक्टर्स की ये इच्छा है, आकांक्षा है कि सरकार इस बात को समझेगी और इसको डीलिंक कर देगी टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट से, क्योंकि वो जो एक्ट बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है जिस

0: जिससे कि कॉमर्शियल
1: जी
0: मिसयूज ना हो पाए। आंखें खरीदी नहीं जाती हैं, खरीदी नहीं जा सकती हैं, मरने के पश्चात दान की जाती हैं। किडनी और लीवर में खरीद फरोख हो सकती है, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने वो एक्ट बनाया हुआ है। गवर्नमेंट ने एक और चीज़ की है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में नॉटोक कहते हैं हम लोग। उसकी स्टेट बॉडीज भी हैं, सिटीज़ में भी हैं, और वो एक सेंट्रल बॉडी है जिससे कि कोई यदि डोनर अवेलेबल हुआ है तो जो नीडी पर्सन है उस तक वो प्रॉपरली पहुंच जाए।
2: अभी आप सुन रहे थे नेत्रदान, भ्रांतियां और हमारे जिम्मेदारी विषय पर डॉक्टर मुकेश खरे से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 बजे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 12:15 पर और रात 10:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे प्रियंका मलिक का ख्याल गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर कलाकार होंगी अंशुला सिंह।

0: सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर मुकेश खरे से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत। कलाकार होंगे जंग बहादुर यादव और साथी, रश्मि टंडन और लाल बहादुर रागी और साथी। शाम 7:31 पर बोलते नगमे और सबरस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 8:30। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्य देशानां आह्वानं कृतवान् यत् आतंकवादस्य वित्तपोषणं आतंकवादीनां संघटने प्रवेशः उग्रवादस्य प्रसारः आतंक

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

संगीतमय पाठ संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। सबसे पहले हम आपको देव फिल्म की रचना सुनवा रहे हैं। आवाज़ है अभिजीत और साथियों की, रचना है निदा फाजली की और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

और अब अंत में हम आपको अग्निपथ की रचना सुनवा रहे हैं। लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है अजय अतुल का, आवाज़ अजय और साथियों की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: サマちゃん。प्रधानमंत्री नरेंद्र कल्याणकारी उपलब्धियों को जन बैठक के दौरान सेवा संकल्प अभियान को जन भागीदारी का व्यापक अभियान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के प्रभावी संचालन के लिए शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, जनपद स्तर पर समन्वय की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित एमएसएमई अवार्ड समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एमएसएमई विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है।
1: विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कोई सच्चाई को

0: जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार सहित 5 राज्यों की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। इस बीच केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
2: हमने छात्रों के भविष्य को

0: प्रदर्शन कारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम इस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम इसका स्वागत करते हैं।
1: चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। साथ ही देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है।
2: चीनी के भंडारण की नई सीमा इसी महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। उधर प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली चुकी है, जिसे दिल्ली NCR, वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में वितरित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार में प्याज आते ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में दाम और कम होंगे। रेल मार्ग से प्याज की सुरक्षित आपूर्ति के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: हरियाणा के पलवल जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में मैनपुरी के लोगों की मृत्यु का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। पलवल में KMP एक्सप्रेसवे पर कल सुबह एक पिकअप सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इस दुर्घटना में पिकअप में सवार 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए। यह लोग राजस्थान के खाटू श्याम बालाजी दर्शन के बाद मथुरा के वृंदावन आ रहे थे। रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में बारिश से होने वाली जनहानि, पशुहानि और आर्थिक हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का आकलन कर 2 से 4 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, राहत सामग्री और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 549 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 248 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 552 नाव और मोटर बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए 312 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन राहत शिविरों में करीब 1700 लोग रह रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 2 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर इस अभियान को जन भागीदारी से व्यापक बनाने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के MSME अवार्ड समारोह में लिया हिस्सा। कहा, विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है MSME सेक्टर। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का दिया आदेश। और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए अब सुनिए उपशास्त्रीय गायन। आज इस कार्यक्रम में हम आपको प्रियंका मलिक की

गाई राग भैरवी, राग मिश्र भैरवी में ठुमरी और दादरा सुनवा रहे हैं। ठुमरी के बोल हैं, बसिया ना तेरो कन्हैया, और दादरा के बोल हैं, कहाँ जाए बसे मोहन रसिया। रचना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपके साथ संगत की अरुणेश कुमार पांडे ने और हारमोनियम पर शमशाद अहमद ने। तो आइए सुने प्रियंका मल्लिक की गाई राग मिश्र भैरवी में ये ठुमरी और दादरा।

अभी आप प्रियंका मलिक की गाई राग मिश्र भैरवी में ठुमरी और दादरा सुन रहे थे। तबले पर आपके साथ संगत की अरुणेश कुमार पांडे ने और हारमोनियम पर शमशाद अहमद ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और हॉर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों के पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
1: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है, इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसान को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine.

0: What's possible? This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram per AIR News Alerts ko follow kare.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, ज़िरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक दल ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए DNA के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से DNA नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए DNA नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
3: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
4: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी में
3: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ

0: रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं

0: का हिस्सा हैं। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र, एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है, हिंदुस्तान में है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. U.S. begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran. Explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikant and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Master Super 750 in Shenzhen today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
4: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल

0: on a war footing to control the erosion. Senior officials and engineers are present at the site and are continuously monitoring the situation. Water Resources Minister Vijay Kumar Chaudhary said that the erosion has intensified due to an unexpected change in the course of the Ganga. He said all possible efforts are being made to check the erosion and situation is being closely monitored. Meanwhile, a rise in the water levels of major rivers has led to flooding at several places in Saran, Vaishali, Begusarai, Baksar, Jahanabad, Nawada and Aurangabad districts. The administration and Water Resources Department are maintaining close vigil in vulnerable areas. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
1: In badminton, India's leading shuttler Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma will begin their campaigns today at the China Masters Super 750 in Shenzhen, Guangdong Province. Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also be in action in men's doubles. Earlier, Unnati Hooda has made an early exit from the tournament yesterday after she lost to South Korea's Kim Jae-yeon in straight games in the opening round of the women's singles. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
2: Thank you, Shagun. Prime Minister Narendra Modi asks SCO member nations to unite and fight against terror, shun double standards, resolve conflict via dialogue, respect sovereignty, leads the Asian age. All systems are go, stormproof economy, August queues lead to growth. Headlines the Economic Times, adding several macro indicators bring further economic cheer. GST mop-up grows 15%, car sales zoom and other signals stay green on resilient strength. In a historic milestone for the Indian Air Force, Air Vice Marshal Shakti Sharma has become the first woman officer, non-medical, in the country's armed forces to attain the rank of Air Vice Marshal or equivalent, informs the Pioneer. And finally, scientists from the Zoological Survey of India in collaboration with ICAR, Center Marine Fisheries Research Institute and international experts have discovered a new species of deep sea skate in the Arabian Sea off India's southwestern coast, informs the Pioneer. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Masters Super 750 in Shenzhen today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी मसनूआत अपनाने और गैर जरूरी तौर पर सोना खरीदने और बैरून मुल्क शादियों की तकरीबात मुनाकिद करने से गुरेज करने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म आज नई दिल्ली में जल शक्ति की वजारत के महकमा जाती इजलास के अख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। हुकूमत ने चीनी के जखीरे की हद 4000 क्विंटल से कम करके 2000 क्विंटल कर दी है। अमेरिका ने ईरान के अंदर सिपाही पासदारानी इनकलाब आईआरजीसी के ठिकानों पर नए हमले शुरू किए। बंदर अब्बास और हुरमुज में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। भारत की फोरेंसिक टीम ने नेपाल में अचानक आने वाले सैलाब के महलुकीन की शिनाख्त के लिए डीएनए जांच शुरू कर दिया है। और भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेषंस में मुनाकिदा चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी मसनूआत को अपनाने और गैर जरूरी तौर पर सोना खरीदने और बैरून मुल्क शादियों की तकरीबात मुनाकिद करने से गुरेज करने की अपील की है। एक वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म ने भारतीय शहरियों से कहा कि वह तफरीही सफर के लिए बैरून मुल्क जाने से गुरेज करें। बैरून मुल्क शादियां

0: हिस्से में सप्लाई कर रहा है, लिहाजा कोलकाता और उसके तौसी शुदा मेट्रोपॉलिटन इलाकों के लिए यह हद बरकरार रखी गई है। हुकूमत ने सारिफिन को यकीन दहानी कराई है कि मुल्क की मार्केट में चीनी की मुनासिब दस्तियाबी, बाकायदा फराहमी और कीमत के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तमाम जरूरी इकदामात कर रही है। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में प्याज मुनासिब मकदार में दस्तियाब है और उसमें कांडा एक्सप्रेस और सड़क ट्रांसपोर्ट के जरिए बफर स्टॉक से जारी करना शुरू कर दिया है ताकि इसकी कीमतों में इतदाल को यकीनी बनाया जा सके। सारिफिन के उमूर, खुराक और अवामी तकसीम की वजारत ने कहा है कि खुर्दा इकदाम को 19 शहरों में नुमाया तौर पर बढ़ाया गया है जिसकी मदद के लिए वसी पैमाने पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 30 से ज्यादा ट्रकों को रवाना किया गया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त की जायजा लिया। मीटिंग में 100 शिनाख्त शुदा जिलों में इस स्कीम के नफाज, तालमेल को मजबूत बनाने और किसानों के लिए जिला सतह पर कारकर्दगी को बेहतर बनाने के काम में तेजी लाने पर खास तवज्जो दी गई। पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, फसल के तनव्वो और पायदार ज़रई तौर तरीकों को फ़रोग देना, फसल की कटाई के बाद ज़खीराकारी की सलाहियत को बढ़ाना, आपपाशी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, मुख्तसर और तवील मुद्दती ज़रई क्रेडिट को मजीद बढ़ाना और हुक्मरानी और खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाना इस स्कीम के 6 अहम मकासद हैं। मज़ीद तफ़सील हमारे नामा निगार से।
2: ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया है कि इस स्कीम के 6 अहदाफ के तहत 100 जिलों का औसत स्कोर जुलाई में 16.31 पॉइंट्स बेहतर होकर 38.85 हो गया, जो अप्रैल के महीने में 22.54 था। वजारत ने बताया कि ये स्कीम 11 वजारतों और महकमों की 36 मरकजी स्कीमों के साथ साथ रियासती स्कीमों के इंजमाम के साथ और निजी शोबे के इश्तराक से नाफिज की जा रही है। सालाना अहदाफ के मुकाबले में पेशरफ्त की निगरानी के लिए इन 36 स्कीमों के तहत 121 इशारे मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें 74 आउटपुट इशारे और 47 आउटकम इशारे शामिल हैं। धन धान्य कृषि योजना को गुज़िश्ता बरस मरकजी काबिना की तरफ से मंजूरी दी गई थी और इसका आगाज 11 अक्टूबर 2025 को किया गया था। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन रायपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तीसरे जलसे तकसीम असनात में शिरकत के लिए आज रायपुर का दौरा करेंगे। ये तकरीब इस इदारे की तालीमी सफर में एक अहम संग मील होगी जिसमें मुमताज शख्सियतों की मौजूदगी में तलबा को डिग्रियां तफीज की जाएंगी। अमरीका ने ईरान के अंदर सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC के ठिकानों पर ताज़ा हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, हुरमुस, जिरोफ्ट, जजीरा, कोनार्का, चाबहार और लावान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंट कॉम ने कहा है कि इसने ईरान के फौजी ठिकानों के खिलाफ हमलों का एक मरहला मुकम्मल कर लिया है जिनमें फिजाई, दिफाई तनसीबात, बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियतें और मौसलाती मराकज समेत दीगर ठिकाने शामिल थे। इसके जवाब में ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC ने उर्दुन में वाकई अमरीकी फौजी कैंप टितिन पर हमला करने का दावा किया। 19 अरकान पर मुश्तमिल एक भारतीय फॉरेंसिक टीम ने फॉरेंसिक माहिरीन के साथ नेपाल में हालिया अचानक सैलाब से मुतासर लोगों की शिनाख्त में मदद की खातिर DNA सैंपल्स की जांच शुरू कर दी है। भारतीय सफारतखाने ने बताया कि इस टीम ने काठमांडू वादी के खुमलटार इलाके में नेपाल पुलिस सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में तजजिए का काम शुरू किया है। भारतीय फॉरेंसिक टीम की तैनाती हालिया अचानक आने वाले सैलाब के बाद नेपाल की मदद की खातिर जारी कोशिशों का हिस्सा है। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा है कि पिछले हफ्ते तिब्बत से भोटेकोशी दरिया के रास्ते रसुआ में दाखिल होने वाला तबाहकुन सैलाब आबोहवा की तब्दीली के बाइस आया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने हिमालयी खित्ते के दर्जे हरारत में 1.8 डिग्री इजाफे का हवाला दिया। भारत

0: अमेरिका ने वजीरा खजाना निर्मला सीतारमन और अमेरिका के वजीरा खजाना स्कॉट बेसेंट के दरमियान मीटिंग के बाद अहम मादनियात पर करीबी तालमेल के साथ काम करने पर इत्तेफाक किया। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वेवर आज से भारत के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई व आलमी उमूर पर बातचीत करेंगे। महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ मुकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बैडमिंटन में भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के ग्वांगडोंग सूबे के शेनजेन में शुरू होने वाले चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। आला दर्जे के खिलाड़ी सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी मर्दों के डबल्स मुकाबले में खेलते नजर आएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराह इजलास से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के 26वें सरबराह इजलास के इनेकाद से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि दुनिया को दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वजीर आजम मोदी के इस तबसरे को भी आज के अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है कि आलमी बहरान के दौरान मुल्क की GDP में 7.8% का इजाफा हुआ, ये शहरियों की मेहनत का नतीजा है। गोवा दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर को इनकलाब और प्रताप समेत कई दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी मसनूआत अपनाने और गैर जरूरी तौर पर सोना खरीदने और बैरून मुल्क शादियों की तकरीबात मुनाकिद करने से गुरेज करने की अपील की है। वजीर आजम आज नई दिल्ली में जल शक्ति की वजारत के महकमा जाति इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। हुकूमत ने चीनी के जखीरे की हद 4,000 क्विंटल से कम करके 2,000 क्विंटल कर दी है। अमरीका ने ईरान के अंदर सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC के ठिकानों पर नए हमले शुरू किए। बंदर अब्बास और हुरमुज में धमाकों की आवाजें सुनी गई। भारत के फोरेंसिक टीम ने नेपाल में अचानक आने वाले सैलाब के महलुकीन की शनाख्त के लिए DNA जांच शुरू कर दिया है। और भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेनजेन में मुनाकिदा चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेस

0: असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम अपने प्रयागराज की बात करेंगे, पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की बात करेंगे और बात करेंगे इस बारिश से पैदा हुई बीमारियों और दैनिक जीवन में उत्पन्न समस्याओं के बारे में। तो शुरू करते हैं इस गीत के साथ।

श्रोता, पिछले कुछ वर्षों में प्रयागराज में इतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी इस बार हो रही है। वैसे तो इस बारिश ने भीषण गर्मी से हमें मुक्ति दिला दी है, लेकिन एक दूसरी मुसीबत इस मौसम में आम है, वो है वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट से जुड़ी समस्याएं, त्वचा के रोग आदि। तो जहां एक ओर राहत है, वहीं दूसरी ओर सिरदर्द है। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। बच्चों के स्कूल आने जाने में उनकी ओर से थोड़ी सी लापरवाही उन्हें हफ्तों बीमार डाल सकती है। ऑफिस आने जाने में समस्या, जो लोग बाइक, स्कूटी, साइकिल या रिक्शा से जाने वाले हैं उन्हें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जगह जगह सड़कों पर जलभराव, गड्ढों का पता न लगना, बगल से चार पहिया गाड़ियों का तेजी से दूसरों को भिगोते निकल जाना, ये सब हमें समस्या में डालने के लिए काफ़ी है। ऐसे में घर से बाहर जाने से पहले रेनकोट ज़रूर पहनें, जिससे आपके अंदर के कपड़े सुरक्षित रहें, सूखे रहें। जाने पहचाने रास्तों से ही जाएं, जिससे सड़कों की सही स्थिति उसकी जानकारी हो और हम किसी भी अप्रिय घटना से बचे रहें। हमें अगर कुछ खाने या पीने की इच्छा हो तो घर से ले गए टिफ़िन और गुनगुने पानी को ही पिएं, क्योंकि ये मौसम सिर्फ हमें ही नहीं, वायरस और बैक्टीरिया को भी पसंद है। मतलब खाने पीने की चीज़ें सफाई से बनाई गई हों, ताज़ी हों, पानी गुनगुना हो, किसी भी तरह के कोल्ड ड्रिंक या अन्य कोई ठंडा पेय पदार्थ बाहर का न पीना ही अच्छा है, क्योंकि पानी और खाने से इस मौसम में संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है और उसके बाद रिकवर होने में कई बार महीने से अधिक का समय लग जाता है। ख़ासकर बच्चे, बूढ़े या वो लोग जो पहले से ही किसी दवाई को ले रहे हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित हो, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ ना हो तो हम किसी भी काम को अच्छे ढंग से नहीं कर सकेंगे। हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई प्रभावित होगी, गृहिणी हैं तो घर के कामकाज, और अगर ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी हमारी परफॉर्मेंस प्रभावित होगी। कुल मिलाकर प्रयागराज का मौसम भले ही खुशगवार हो गया हो, लेकिन समस्याएं भी अपनी जगह मौजूद हैं। बहुत से निचले क्षेत्रों में पानी भर गया है, जिससे आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो तो ही बाहर जाएँ, और हाँ, अगर हमें कुछ करना है तो कम से कम अपनी ओर से थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। उन लोगों की जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिनके घरों में पानी घुस गया है, उनकी हम अपनी ओर से खाने पीने में या जो भी उन्हें ज़रूरत है उसकी हम उन्हें मदद कर सकें तो अच्छा होगा। और इस बारिश में भीगने से हमें बचने की ज़रूरत है। हालांकि बारिश बहुत अच्छी लगती है और बच्चे तो खास करके भाग भाग के पानी में जाना और खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इससे बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एक बार भीग जाएं तो बीमारी का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर भीगें तो जितनी जल्दी हो गीले कपड़ों को तुरंत बदल दें। जूते चप्पल ऐसे पहने जो बारिश को, उसके पानी को एब्जॉर्ब ना करें। घर में मच्छरदानी का उपयोग ज़रूर करें, जिससे मच्छर हमें ना काट सके, क्योंकि इस समय मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है और इनसे बहुत तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। घर में बिजली का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें, किसी भी तरह के तार को छूने में सावधानी रखें, बिजली के खंभों से दूर रहें, घर की नालियों और छतों की भी सफाई करें, बाइक स्कूटी से जाते समय अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में रखें। इन सारी सावधानियों को अपनाने के बाद भी कोई दिक्कत हो तो हेल्थ में थोड़ी सी भी परेशानी महसूस हो, हमें डॉक्टर से

अविलंब मिलना चाहिए। इस बारिश के मौसम में अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू जैसे खट्टे फलों का उपयोग करें। ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का प्रयोग ना करें। हल्के सुपाच्य भोजन करें, क्योंकि इस मौसम में पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे जो मसालेदार चीज़ें हम खाते हैं, जो तली भुनी चीज़ें हम खाते हैं, वो हमारे पेट में ठीक से नहीं पचती और फिर बीमारियाँ पैदा करती हैं। थोड़ा व्यायाम, थोड़ा योग हमें ज़रूर करना चाहिए। शरीर की स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, इससे मांसपेशियों में जो जकड़न या शिथिलता होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारा शरीर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का घर होता है, तभी दुनिया अच्छी लगती है। इसलिए मौसम का आनंद ज़रूर लें, लेकिन सावधानी के साथ।

0: तो उस बारिश का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन सावधानी के साथ। आज के कार्यक्रम का यही संदेश था और इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।

0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
5: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
4: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
5: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
6: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, और ये पहला गाना हम आपको भेड़िया फिल्म से सुनवा रहे हैं। संगीत है सचिन जिगर का, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और आवाज़ अरिजीत सिंह की।

कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, हर्ष उपाध्याय, प्रणव वत्स और सुकृति भारद्वाज की आवाज़ में हर्ष उपाध्याय का लिखा हुआ गीत। फिल्म थी सुल्ताना। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पे। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश शर्मा का।
2: देवरिया में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत मिड डे मील रसोइयों के सम्मान एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर लखनऊ में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह के आयोजन का लाइव प्रसारण जिला मुख्यालय समेत जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर किया गया। इस दौरान कैशलेस चिकित्सा कार्ड का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित सम्मान समारोह में सदर विधायक डॉक्टर सोलम मणि त्रिपाठी ने कहा कि रक्षाबंधन के ठीक पहले मुख्यमंत्री द्वारा महिला रसोइयों की चार घोषणाएं की गई हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में काफी बदलाव आएगा। कैशलेस चिकित्सा कार्ड की सुविधा से उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पथरदेवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री श्री प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा और पोषण व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी महिला रसोइयों शिक्षा मित्रों एवं शिक्षकों को सम्मान देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ शिक्षकों एवं कार्मिकों के कल्याण के लिए भी लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सलेमपुर में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें रसोइयों के सम्मान कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में उचित दर विक्रेताओं के लाभांश वृद्धि की घोषणा

0: से संबंधित मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान सदर सांसद सुशागमणि त्रिपाठी ने कहा कि लाभांश में वृद्धि से उचित दर विक्रेताओं का सम्मान बढ़ा है, यह निर्णय उनके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। जिले में दिव्यांगजनों के लिए सेवा संस्कार एवं सम्मान की भावना के साथ जिले के सभी तहसीलों में कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में दिव्यांगजनों को विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही पात्र दिव्यांगजनों में ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। विकास की मुख्य धारा में जिले को जोड़ने के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का पारदर्शिता से क्रियान्वयन कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मधुसूदन होलगी ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। NSPWD, RED तथा सेतु निगम के निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का भी जिलाधिकारी ने समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए हर हाल में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। जिले में बाढ़ का प्रभाव अभी नहीं है। जिले में बह रही घाघरा, राप्ती नदी तथा गोर्रा नदी का पानी खतरे के निशान के नीचे बह रही है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामशंकर ने बताया कि
1: हमारे जनपद में अभी किसी भी ग्राम में घाघरा नदी का पानी नहीं घुसा है। राप्ती और गुर्रा नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से 2.5 से 3 मीटर नीचे बह रही है, इसलिए वहां अभी कोई खतरा नहीं है और प्रशासन इसमें अपनी सतर्क दृष्टि बनाए हुए है।
0: जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की विस्तार से जानकारी लेते हुए कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी व गुणवत्ता पूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने जिले में मातृ एवं शिशु दर में कमी लाने पर विशेष जोर दिया। मरीजों को स्वास्थ्य सेवा बेहतर उपलब्ध कराने के लिए सदर सांसद सुशागमणि त्रिपाठी ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर ट्रामा सेंटर में उपलब्ध सुविधाएं, साफ सफाई, मरीजों के उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए मरीजों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे जनपद में विभिन्न जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। यात्रा के दौरान वंदे मातरम के नारे गूंजे। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्त के नारों के साथ निकली तिरंगा यात्रा में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के समापन के दौरान राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और देश की एकता अखंडता के प्रति संकल्प को दोहराया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूलों में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। जिले के नगर पंचायत बरियारपुर में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अंश सुधार एवं अंश निर्धारण, नाम त्रुटि सुधार, वरासत, फार्मर रजिस्ट्री तथा मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। रामपुर कारखाना विधानसभा के विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लाभार्थियों से उसका लाभ उठाने की अपील की। विधायक द्वारा संबंधित किसानों में खतौनी वितरण के साथ विभिन्न योजनाओं से संबंधित पात्र लाभार्थियों में प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मेरा रेशम मेरा अभियान 2 के तहत जिले के हरपुर निजाम में रेशम उत्पादन से 20 संक्रमण एवं स्वस्थ प्रौद्योगिकी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को रेशम उद्योग से जोड़ने के साथ साथ रेशम कीट पालन में स्वच्छता एवं 20 संक्रमण के वैज्ञानिक उपायों के प्रति जागरूक किया गया।
2: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण का।
3: गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखपुर महानगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हाथ में तिरंगा लेकर पद यात्रा कर रहे मुख्यमंत्री का साथ देने के लिए हजारों कदम उसी दिशा में बढ़ चले। यात्रा का शुभारंभ करने से पहले मुख्यमंत्री ने उपस्थित विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष 2022 में नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिक अपने घर पर राष्ट्रध्वज को सम्मान पूर्वक लगा सकें। इसी का परिणाम है कि आज देश का हर नागरिक भारत के आन बान शान के रूप में तिरंगे को अपने घर पर लगाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि
4: भारत के आन बान और शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का ध्वज लेकर के देश की आजादी को एक नई गति दी थी।
3: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में नाग पंचमी के अवसर पर खेल विभाग और जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती

0: कुश्ती प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। खेल के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सांसद और विधायक खेल कूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग के माध्यम से नई नई प्रतियोगिताएं आगे बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि अभी कॉमनवेल्थ में भारत के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, भारत के खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहे, देश के लिए मेडल जीते। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल नीति लाकर यह व्यवस्था बनाई है कि जो भी खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतेगा उसको सीधे सरकारी नौकरी देंगे। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। खेल विभाग में सहायक निदेशक से लेकर प्रदेश पुलिस में डिप्टी SP तक का पद खिलाड़ियों को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत शीघ्र अगले महीने के अंदर फिर से 500 पदक विजेता खिलाड़ियों को यूपी पुलिस और अन्य विभागों में नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के जो खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं उनको 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ और ब्रांज मेडल जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए यूपी सरकार की ओर से दिए जाते हैं। ओलंपिक में प्रतिभाग करने पर 10 लाख और कॉमनवेल्थ और एशियाड में 5-5 लाख की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और खेल की संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ समाज को जुड़ना होगा, स्वयंसेवी संगठनों को जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि निजी एकेडमी कोई चलाएगा तो सरकार उसको सहायता प्रदान करेगी क्योंकि वह युवाओं को तराशने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के जिस भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहयोग करेगा राज्य सरकार की खेल नीति उसमें सहयोग करने की है। उन्होंने गाजीपुर की खेल संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि ओलंपिक में देश के लिए मेडल प्राप्त करने वाले 2 खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल गाजीपुर के ही एक निजी स्टेडियम से ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
1: पुराने खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, पुराने उस्ताद हैं, ये कोचेज हैं, इन्होंने अपने जीवन को तपाया है, खपाया है, अलग विषय है और उनके समय में संसाधन नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था, अन्यथा उनको भी प्रोत्साहन और संसाधन मिलता वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम आगे कर सकते थे।
0: गोरखपुर जिले में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर धागा बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की और भाई से अपनी रक्षा का वचन लिया। इसके साथ ही सावन मास का समापन भी हो गया। सावन मास के दौरान विभिन्न शिव मंदिरों में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का बड़े ही आस्था भाव के साथ जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप समूह स्वरों में देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे। अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: जबां से निकले तो रूह में उतर जाता है, अदब वो नगमा है जो दिलों को मिला देता है। जी हाँ सामिन, जब अल्फाज दिलों को जोड़ने और रूह को मुनव्वर करने का जरिया बन जाएं, तो सरहदें और फासले खुद ब खुद सिमट जाते हैं। इस खूबसूरत विरसे की तासीर ही कुछ ऐसी है कि ये बिखरे हुए ख्यालात को एक मुकद्दस साज और इंसानी जज्बात को एक नई परवाज देता है। इन्हीं पाकिजा और महकते एहसासात के साए में आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज से मैं निकहत सिद्दीकी आपकी रफीक सफर लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम। पुरखलूस आदाब कबूल फरमाएं। सामिन, अदब की दुनिया में लफ्ज सिर्फ आवाज नहीं होते बल्कि ये इंसानी रूह की तर्जुमान होते हैं। जब ये लफ्ज सोच की वादियों से गुजरकर दलीलों का लिबास पहनते हैं तो तकरीर बन जाते हैं, और जब यही लफ्ज जज्बात की आंच में तपकर धड़कनों की लय पकड़ते हैं तो कलाम का रूप अख्तियार करते हैं। तो एक जहन की बेदारी है तो दूसरा दिल की धड़कन। तो आज की हमारी ये महफिल इन दोनों के हसीन इम्तिजाज से सजी है। इसी अदबी सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी तकरीर का उन्वान एक ऐसी अजीम शख्सियत से वाबस्ता है जिसने हिंदुस्तानी थिएटर और अदब को एक नया फलसफा और मुकाम अता किया। यूं तो सामिन, अदब की तारीख में कई ऐसे नाम गुजरे हैं जिन्होंने स्टेज

0: स्टेज की तारीख में उनका नाम एक दरख्शिंदा बाब की तरह रोशन रहेगा।
1: हबीब तनवीर, अवामी थिएटर का मुनफरिद फनकार। इस मौजू पर अभी आप तकरीर समाप्त फरमा रहे थे, मुकर्रर थे डॉक्टर मोहम्मद काशिफ। सामिन, यकीनन जहन इस वक्त अदबी सरशारी से सराबोर है, और जब दिल और दिमाग पर अल्फाज का ऐसा पाकीजा असर हो तो रूह खुद ब खुद कलाम की वादियों में खो जाने को मचल उठती है। सामिन, शायरी या कलाम दरअसल दिल की धड़कनों की वो मौसिकी है जो बिना किसी साज के भी रूह को सुकून पहुंचाता है। ये जज्बातों की वो गंजीना है जहां खामोशी भी गुनगुनाने लगती है। तो मखमली अल्फाज और हसीन ख्यालात के इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए आपको जोड़ती हूँ आज के खास कलाम से खुद शायर की आवाज में। कलामी शायर हैं जनाब अनवार अब्बास इलाहाबादी। समाअत फरमाएं
2: कि हम महकते हुए फूलों के घराने से हैं, हम महकते हुए फूलों के घराने से हैं, इसलिए अब भी अलग सारे जमाने से हैं, और जिसके चेहरे रहे हर दौर में रोशन चेहरा, जिसके चेहरे रहे हर दौर में रोशन चेहरा, मुनफरिद चेहरा उसी आईना खाने से हैं, मुनफरिद चेहरा उसी आईना खाने से हैं, हम मसले जाने की कहाँ करते हैं कोई परवाह, मसले जाने की कहाँ करते हैं कोई परवाह, दस्ते हालात में तस्बीह के दाने से हैं, दस्ते हालात में तस्बीह के दाने से हैं, और उकदे जुल्फ़ गिराहगीर है अपना उकदा, इसी बुनियाद पे उलझे हुए शाने से हैं, और संग का अम्रे सना संग की जद तक लाया, संग का अम्रे सना संग की जद तक लाया, आग के दिल की खलिश आग बुझाने से हैं, आग के दिल की खलिश आग बुझाने से हैं, और चंद आँखों में रहा खून हमारा उतरा, चंद आँखों में रहा खून हमारा उतरा, और चंद आँखों में गड़े अश्क बहाने से हैं, चंद आँखों में गड़े अश्क बहाने से हैं। मक्ते का शेर है कि हाँ मिले जौहरे तहजीबो तमद्दुन अनवार, हाँ मिले जौहरे तहजीबो तमद्दुन अनवार, अपनी हस्ती रहे हस्ती में मिटाने से हैं, अपनी हस्ती रहे हस्ती में मिटाने से हैं, मेरे करीब मेरी दस्तरस में आया है, अरे फलक पसंद परिंदा कफस में आया है, मेरे करीब मेरी दस्तरस में आया है, फलक पसंद परिंदा कफस में आया है, और हिसार हब्ज का टूटा है बाद मुद्दत के, हिसार हब्ज का टूटा है बाद मुद्दत के, हवा के झोंके का तोहफा उमस में आया है, हवा के झोंके का तोहफा उमस में आया है, और किताब नाज के औराक धीरे धीरे खुले, किताब नाज के औराक धीरे धीरे खुले, जो पहले रंग में आया था रस में आया है, जो पहले रंग में आया था रस में आया है, मुलाहिज़ा करेंगे न पूछ कीमत लम्हे निशात अफजा, न पूछ कीमत यक लम्हे निशात अफजा, ये एक लम्हा हजारों बरस में आया है, ये एक लम्हा हजारों बरस में आया है, मुलाहिज़ा करें कि जुनून काफले तेज गाम के हमराह, जुनून काफले तेज गाम के हमराह, खरोश साज व सदाए जरस में आया है, हंसी की बात है लेकिन हंसे न खल्क़े खुदा, हंसी की बात

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अंशुला सिंह के गाए गीत और भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार, प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जतलाई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के

0: पूर्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की तैनाती के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच गई है और बाद में इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली NCR क्षेत्र में वितरित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंची और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। और खेलों में भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। 13 सितंबर को इस श्रृंखला का पहला मैच नई दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर मुकेश खरे से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत का पहला भाग।
2: श्रोताओं नमस्कार, आपका स्वागत है एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम में। मैं हर कार्यक्रम को विशेष कहता हूं, लेकिन इस कार्यक्रम को मैं विशेष रूप से विशेष कहूंगा। इसलिए कहूंगा क्योंकि ये कार्यक्रम हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको ये लगता है कि हमारा ये जो शरीर है ये सब कुछ है हमारे लिए, और इस शरीर को वो ये समझते हैं कि ये अनंत काल तक चलेगा, ये उनकी पूंजी है। जबकि आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो हम सभी ये जानते हैं कि जब हम दुनिया में जन्म लेते हैं उस समय ये शरीर हमको मिलता है, और जब हम ये दुनिया छोड़ते हैं तो ये शरीर हम छोड़ करके जाते हैं, हम कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है प्रयागराज के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मुकेश खरे को। क्यों आमंत्रित किया है, किस लिए आमंत्रित किया है, हम आज क्या बातचीत करेंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे। बल्कि अगर ये कहें कि ये आपको खुद डॉक्टर मुकेश खरे बताएंगे तो ये गलत नहीं होगा। डॉक्टर मुकेश खरे, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं?
3: हाँ, मैं बताऊंगा, और आपके थ्रू, ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उनको भी मैं नमस्कार बोलता हूँ। मैं आँखों का डॉक्टर हूँ और कुछ आँख के विषय में ही बात करूँगा। आँखें बेहद खूबसूरत चीज़ हैं। आँखों में आदमी को आपकी पीड़ा दिखती है, आदमी

0: होता है तो उसकी खुशी दिखती है, आंखों में भय दिखता है, आंखों में रोमांच दिखता है, आंखें सुनती भी हैं, आंखें बोलती भी हैं, आंखें स्मेल भी करती हैं, लेकिन आंखें देखती नहीं है। देखता तो हमारा दिमाग है। हमारे शरीर में आंख केवल रोशनी को दिमाग तक पहुंचाने भर का मात्र साधन है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नहीं देख पाता है किसी वजह से, जिसमें कि आंखें खराब हो जाएं, आज हम उसी बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे देश ने 25 अगस्त से 8 सितंबर तक का जो पखवाड़ा है उसको हम लोग नेत्रदान पखवाड़ा के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे सभी समकक्ष आँख के डॉक्टर, हमारी एसोसिएशन, भारत सरकार, हम सब लोग इस पखवाड़े में अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको एक खास चीज़ नेत्रदान महादान कहा जाता है उसके बारे में हम बता सकें। आज हम लोग नेत्रदान के बारे में ही बात करेंगे।
1: क्या बात है। तो श्रोताओं, सुना आपने कि जैसा कि डॉक्टर मुकेश खरे ने बताया कि आज हम नेत्रदान के ऊपर बात करेंगे। क्या है नेत्रदान, हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्यों करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है समाज के प्रति। डॉक्टर मुकेश खरे, अपने बात किसी की दुनिया को रोशन कर देना बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है कोई व्यक्ति जन्म से ना देख पाता हो या किसी दुर्घटना में उसकी आंखें चली गई हों, उसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। सबसे पहले ये बताएं कि कोई व्यक्ति नेत्रदान क्यों करे, कोई क्यों अपनी आंखें किसी और को दे।
0: नेत्रदान हमेशा मृत्यु के पश्चात ही किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में नेत्र दान करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है। ये लॉ है, हमारे ही देश में नहीं पूरे संसार में कोई जीवित व्यक्ति अपनी आँख का दान नहीं कर सकता है। नेत्रदान मृत्यु के पश्चात किया जाता है। क्यों किया जाता है? हम लोग जब एक दूसरे को देखते हैं सामने से तो हम लोगों को आँखें दिखती हैं काली सी बीच में
1: जी।
0: और दो पलकें होती हैं, एक ऊपर की एक नीचे की। जब वो पलकें बंद हो जाती हैं तो आँखों को अपने में समेट लेती है, आँख को सिक्योर कर देती है। जब आँखें खुलती हैं तो हम लोग देखते हैं। जो हम लोगों को एक दूसरे की काली पुतली दिखती है वो वास्तव में काली नहीं होती है, पूरी तौर पे ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन उसके पीछे एक झिल्ली होती है जिसकी वजह से वो काली दिखती है। इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और कभी कभी चोट लगने से, घाव बन जाने से या किसी ऑपरेशन की वजह से ये सफ़ेद हो जाती है। और जब सफ़ेद हो जाती है तो इसके थ्रू जो रोशनी जाती है दिमाग तक वो नहीं जा पाती है। चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रोग्रेस की है और अब हम लोगों ने ये सीख लिया है कि इस सफ़ेदी को हम लोग हटा सकते हैं और उसकी जगह एक दूसरी पुतली लगा सकते हैं। लेकिन पुतली हमको एक ह्यूमन बॉडी से ही चाहिए, वो चाहे नवजात शिशु हो या 90 साल का वृद्ध व्यक्ति हो। कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। केवल कुछ चीज़ें जैसे रेबीज है, यदि व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या सेप्टिसीमिया जिसमें कि खून में संक्रमण फैल जाता है, इन चार चीज़ों को छोड़ दें तो हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। और उसकी काली पुतली को हम लोग लेके जिस व्यक्ति की पुतली सफ़ेद हो गई है वहाँ पे लगा देते हैं। जी
1: डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि आप बीच का हिस्सा लेकर के प्रत्यारोपित करते हैं, इसका मतलब ये है कि पूरी आँख नहीं निकाली जाती नेत्रदान के समय?
0: नहीं, हम लोग आँख पूरी निकालते हैं, लेकिन प्रत्यारोपण जो है वो केवल काली पुतली का ही किया जाता है। पूरी की पूरी आँख किसी की नहीं बदली जा सकती है। हम लोग दोनों आँखें निकाल लेते हैं पूरी की पूरी,

फिर वो आंखें आई बैंक जाती हैं, आई बैंक में उसका परीक्षण होता है कि वो आंख इस लायक है कि नहीं कि दी जा सके, किसी को लगाई जा सके, और फिर वो दोनों आंखें आई बैंक के जो रजिस्टर होते हैं जिसमें सबसे ऊपर के दो लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनको लगाई जाती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं होता है और जो डोनर है जिसने आँख का दान किया है उसकी फैमिली और रेसिपिएंट की फैमिली

0: कोई गीत सुनवाना चाहें।
1: हाँ, मुझे CID फिल्म का एक गाना है, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया।
0: क्या बात है, तो आइए सुनते हैं ये गीत, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया।

0: नहीं, हम लोग मृत शरीर से लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स और भी कई ऑर्गन हम लोग डोनेट करते हैं और उससे दूसरे लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं।
1: क्या बात है। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं? क्या सभी लोग कर सकते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इच्छा जता दी कि वो अपने मरने के बाद अपनी आंखें या अपना शरीर दान करना चाहता है, लेकिन मृत्यु के बाद अगर परिवार वाले ना माने तो क्या हो? परिवार की क्या जिम्मेदारी है?
0: तो ये प्लेज करना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में प्लेज करता है कि मैं अपनी आंखें दान करना चाहता हूँ, तो ये उसकी भावना है और ये भावना बहुत ही विशेष है क्योंकि इससे समाज में एक संदेश जाता है।
1: जी
0: लेकिन ये एक्चुअल डोनेशन में बदलेगा ऐसा नहीं हो पाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इलाहाबाद में कहा कि मैं प्लेज करता हूँ और उस व्यक्ति की डेथ चेन्नई में हुई तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये जरूरी है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अपने परिवार में अपने बच्चों से अपने पति या पत्नी से बताए कि हमारी इच्छा को है और इसको पूरी की जाए, तो परिवार के लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने, दोनों लोगों ने अपनी आंखों का दान किया अपने मृत के पश्चात।
1: क्या बात।
0: और मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, उन्होंने भी अपनी आंखों का दान किया और उन दोनों लोगों ने अपनी आंखों का ही नहीं दान किया, अपना पूरा का पूरा शरीर को भी दान किया मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, जिससे कि नए बच्चे और ज़्यादा बेहतर सीख सकें।
1: क्या बात है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है डॉक्टर साहब कि जीते जी अपने शरीर के बारे में, मृत शरीर के बारे में सोचना, उस समाज के बारे में सोचना कि वो मरने के बाद भी किस तरह से समाज के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि फिर से सांगीतिक ब्रेक लिया जाए। कोई गीत जो आप हमारे श्रोताओं को नश्र करना चाहें।
0: एक गीत चिराग फिल्म का है, तेरी आंखों के सिवा
1: क्या
0: दुनिया
1: बात
0: में
1: है,
0: रखा क्या है।
1: बहुत बहुत ही खूबसूरत गीत है और हमारे इस साक्षात्कार के ऊपर एकदम फिट बैठता है। तो
0: जी
1: आइए सुनते हैं श्रोताओं ये प्यारा सा गीत, और यकीन मानिए जब तक मानवता रहेगी तब तक ये गीत मुझे ऐसा लगता है कि जिंदा रहेगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही प्यारा गीत आपने डॉक्टर साहब सुनवाया। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर उन्होंने नेत्रदान कर दिया तो या तो वो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे या फिर अंतिम संस्कार के समय किसी प्रकार से जो शरीर पूर्णता नहीं है, शरीर में पूर्णता नहीं है, उनको ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगे?
1: शरीर को हम लोग मृत्यु के बाद या तो जला देते हैं या दफना देते हैं। जला देते हैं तो पूरा शरीर हमारा राख में बदल जाता है, उस राख से फिर से हमारा जीवन पनपता है, ऐसा माना जाता है। दफना देने पे भी पूरा का पूरा शरीर गल जाता है, तो उसमें एक ऑर्गन निकाल देने से किसी का ये सोचना कि अगले जन्म में ऐसा होगा, ये एकदम गलत है। और बल्कि अब आँख ही

0: इस गीत की क्या तारीफ करूं डॉक्टर साहब, मतलब इसको एक, इसमें आध्यात्मिकता भी है, इसमें संगीत भी है, दिल में उतर जाती है। क्या मृत्यु के कितनी भी देर बाद नेत्रदान या आंखें दान की जा सकती हैं, या कोई एक निश्चित समय होता है इसके लिए?
1: मैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताता हूँ।
0: जी जी प्लीज।
1: यदि परिवार ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि वो नेत्र का दान करना चाहते हैं, तो मृत के पश्चात आंखों को बंद कर देना चाहिए, पलकों को, और एक छोटे से बर्फ़ के टुकड़े को एक छोटी सी रुई में लपेट के दोनों आंखों के ऊपर रखना चाहिए। कमरे के पंखे बंद कर दें जिससे कि कॉर्निया ड्राई ना हो पाए, और तुरंत किसी भी आँख के डॉक्टर या आई बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये हम लोगों की ड्यूटी बन जाती है, सारे आँख के डॉक्टर या आई बैंक की 2 घंटे के अंदर हमारी टीम घर में पहुंच जाती है और एक कंसेंट लेते हैं हम लोग परिवार के लोगों से कि वो आँख देने को तैयार हैं, और मुश्किल से 15 से 16 मिनट के अंदर दोनों आँखें निकाल ली जाती हैं। आंखें निकाल देने के बाद उसमें प्लास्टिक की आंखें लगा दी जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि इनकी आंखें निकाली गई हैं, तो और कोई व्यक्ति देखे तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि आंखें निकाली गई हैं। कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है और ना ही फ्यूनरल में डिले होता है। बहुत साधारण सा काम है, इसमें कोई खर्च नहीं आता है, और फिर वो आंखें लेके आई बैंक पहुंच जाती है। वहाँ आँखों का परीक्षण होता है, परीक्षण होने के बाद देखा जाता है कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसप्लांट के लिए या नहीं। यदि ट्रांसप्लांट के काबिल है तो मरीजों को तुरंत फ़ोन किया जाता है ऊपर की लिस्ट से, और यदि वो आँख ट्रांसप्लांट योग्य नहीं है तो भी वो हम लोगों के लिए अमूल्य है, क्योंकि हम लोगों को मानव की आँख इस तरीके से देखने के लिए और उससे सीखने के लिए, ख़ास तौर पे जो नई पीढ़ी के डॉक्टर्स हैं, और खुद भी मैं भी आज भी मुझे मुश्किल से ऐसा मौका कम ही मिला है जब मैं आँख को अपने अनुसार काट के उसका परीक्षण कर सकूं, क्योंकि यदि आँख ठीक है तो तुरंत लगा दी जाती है, और नहीं ठीक होने पे ही उसको हम लोग रिसर्च में प्रयोग करते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जो लोग चश्मा लगाते हैं या जिन लोगों को डायबिटीज़ है, क्या वो भी नेत्रदान कर सकते हैं?
1: नेत्रदान हर व्यक्ति कर सकता है, ग्लासेस वियरर, चश्मा लगाता हो, ऑपरेशन हो चुका हो आँख का, डायबिटीज़ की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, वो सब लोग कर सकते हैं। केवल 4 चीज़ें हैं, रेबीज़, HIV पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव।

0: सेप्टिसीमिया। बाकी सभी लोग आंख का दान कर सकते हैं, चाहे वो नवजात शिशु ही क्यों ना हो।
1: बिल्कुल।
2: वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्रदान, भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी विषय पर डॉक्टर मुकेश खरे से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
3: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
4: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
3: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
4: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
5: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, बरसात का मौसम कई तरह की पेट से जुड़ी समस्याएं लेकर आता है, तो कृपया अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। साफ स्वच्छ पानी ही पिए, ज़रूरत हो तो उबाल कर पिएं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जंग बहादुर यादव और साथी, रश्मि टंडन और लाल बहादुर रागी और साथियों के गाए लोकगीत। सबसे पहले हम आपको जंग बहादुर यादव और साथियों के स्वर में सुनवा रहे हैं ये देवी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जंग बहादुर यादव और साथी रश्मि टंडन और लाल बहादुर रागी और साथियों के गाए लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार।

एक नाम जो सिर्फ नाम नहीं है, एक तहजीब है। एक आंख जो देखती कम है, कहती ज्यादा है। एक औरत जिसने अकेले ही औरत होने के मायने बदल दिए।

0: बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपका रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र। आज के इस कार्यक्रम में कहानी उस लड़की की जो मद्रास की गलियों से निकली, मुंबई ने उसे ठुकराया और फिर उसी मुंबई ने उसके कदमों में रख दिया अपना ताज। नाम भानुरेखा गणेशन, जिसे दुनिया सिर्फ रेखा कहती है।

रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास यानी कि चेन्नई में हुआ। पिता तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन, माता तेलुगु सुपरस्टार पुष्पवल्ली। पर किसी कारणवश रेखा को न अपने पिता का साथ मिला और ना ही प्यार। बचपन में नाम मिला भानु रेखा, भानु मतलब सूरज, लेकिन रेखा के बचपन में सूरज था ही नहीं। बचपन अत्यंत सूना, निराशा से भरा और पीड़ादायक रहा। 13 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, घर चलाना था, माँ बीमार। 1966 में पहली तेलुगु फिल्म मिली, रंगुल्ला रत्नम, किरदार एक छोटी बच्ची का था। 1968 में

कन्नड़ फिल्म गुवाथल्ली सीआईडी 999 में लीड रोल मिला, उम्र महज 14 साल तक। उसी दौरान हिंदी फिल्म मिली, नाम था अनजाना सफर। 15 साल की रेखा बिना बताए उनके साथ एक ऐसा सीन फिल्मा लिया गया जिसे देखकर वो बहुत डर गईं, बहुत रोईं। और वो ड्रामा कैसे किया गया, उसकी शूटिंग कैसे की गई थी, ये उनको बरसों बाद बताया गया। ये थी शुरुआत ग्लैमर नहीं बस एक गहरी चोट के साथ।

सन 1969 में सावन भादों फिल्म से हिंदी में डेब्यू किया। फिल्म हिट हुई पर लोगों ने कहा, काली है, मोटी है, कैसे हीरोइन बनेगी। फिल्म फेयर ने लिखा, द अगली डकलिंग ऑफ हिंदी सिनेमा। ये बात रेखा को लग गई। और फिर क्या था, 1976 से 1981 के बीच रेखा ने खुद को तोड़ा और फिर से गढ़ा। और फिर रेखा ने फैसला किया कि अब जवाब देना है। 1976 से 1980 के बीच रेखा रुपहले पर्दे से गायब हो गई। इस बीच उन्होंने अपना समय दिया जिम में, योग में, उर्दू की क्लास में। उमेश मेहरा जो उनके मेकअप मैन थे, उन्होंने बताया कि रेखा रोज 4 बजे उठती थी, 2 घंटे योग, फिर डाइट, सिर्फ अंकुरित अनाज और दूध। अगर उनकी आवाज की बात करें तो पहले उनकी आवाज में साउथ इंडियन एक्सेंट था, डबिंग कोई और करता था। रेखा ने उर्दू सीखी, हिंदी साफ की और नतीजा 1978 में फिल्म आई घर और मुकद्दर का सिकंदर। घर में रेप विक्टिम का रोल निभाया, बिना मेकअप, बिना ग्लैमर। लोगों ने कहा, ये वही काली लड़की है। उसके बाद 1979 में फिल्म आई मिस्टर नटवरलाल और सुहाग, दोनों सुपरहिट रही। 1981 में वो साल जिसने रेखा को अमर कर दिया। 1981 की सफलता ने रेखा को पहली कतार में ला करके खड़ा कर दिया। एक ही साल में 4 अलग रूप में दिखाई दी रेखा। उमराव जान फिल्म आई, इस फिल्म में अपनी अदायगी के लिए रेखा जी लखनऊ गईं, 3 महीने लखनऊ में रहीं, हजरतगंज की गलियों में घूमी, बेगुओं से अदब सीखा और नेशनल अवार्ड भी जीता वेस्ट एक्ट्रेस का। आज भी लखनऊ उन्हें अपनी बेटी कहता है।

इसी बीच सिलसिला फिल्म भी आई यश चोपड़ा की, और ये सबसे बोल्ड फिल्म रही। अमिताभ, जया बच्चन, रेखा, रेखा ने बिना बोले प्यार करना सिखाया, और खून भरी मांग। इस फिल्म में रेखा ने दिखा दिया कि यदि एक नारी चाहे तो जाने क्या कर सकती है।

0: हालांकि ये गाना घर फिल्म में फिल्माया गया था रेखा पर, लेकिन रेखा का स्वभाव बिल्कुल इससे इतर है। इतनी सफलता हासिल करने के बाद रेखा जी के पैर हमेशा जमी पर रहे। कहते हैं ना कि जब सफलता यूं ही मिल जाती है तो उसके लिए बहुत फिक्रमंद नहीं होता इंसान, लेकिन जब सफलता बड़ी मशक्कत से हासिल की गई हो तो उसके ठहराव के लिए इंसान के जीवन में भी ठहराव का होना बहुत आवश्यक है। खैर, अब बात कर लेते हैं रेखा जी की सफलता की, पुरस्कार की और स्टारडम की। 1982 में उमराव जान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। जूरी ने कहा, रेखा ने आंखों से अदाकारी की है। फिल्म फेयर अवार्ड की अगर बात करें तो 6 बार नॉमिनेशन मिला और 4 बार ये पुरस्कार रेखा जी ने जीता भी। 1981 में खूबसूरत बेस्ट एक्ट्रेस, 1989 में खून भरी मांग बेस्ट एक्ट्रेस, 1997 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और 2003 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 2010 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। फिल्मों की बात करें तो 180 से ज्यादा फिल्मों में रेखा जी ने अभिनय किया। सामाजिक फिल्में हैं घर, इजाजत, कॉमेडी भी उन्होंने की, खूबसूरत, बीबी हो तो ऐसी, याद है वो बीबी ही तो ऐसी में जिसमें कटआउट को बोलती हैं वो थमचू, वो बिजली वाला थमचू। एरोटिक ड्रामा की बात करें तो आस्था, एक्शन फिल्मों की बात करें तो खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, आर्ट फिल्मों की बात करें तो उत्सव और उमराव जान। अदाकारी के तमाम रंगों में अपने रंग बिखेरे हैं भानु रेखा गणेशन यानी कि रेखा जी ने। 1984 की फिल्म उत्सव में उन्होंने वसंत सेना बनकर साबित किया भारतीय सिनेमा में देह को भी गरिमा के साथ दिखाया जा सकता है। शशि कपूर साहब ने खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। रेखा जी का जीवन, उनकी अदाकारी आज भी लोगों को अच्छा खासा प्रभावित करता है और उनकी फिल्में आज भी उसी चाव से देखी और सराही जाती हैं।
1: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

और अब कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रेखा जी के जीवन के उस हिस्से से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पर सबसे कम समझा जाता है। रेखा का निजी जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा। 1980 में विनोद मेहरा से शादी की खबरें आईं। 1981 में सिलसिला फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन के साथ नाम जुड़ा, लेकिन रेखा जी ने कभी कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक बार सिमी गरेवाल के शो में कहा था, मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो मुझे मिल नहीं सकता है। 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी हुई। 7 महीने बाद मुकेश जी ने आत्महत्या कर ली। रेखा पर बहुत इल्जाम लगे, वो टूट गई पर फिर भी खड़ी रही। और उसके बाद रेखा ने चुना अकेले रहना। आज वो बांद्रा के बंगले में अकेले रहती हैं, अपने सेक्रेटरी फरजाना के साथ। दिनचर्या वही, रोज सुबह 4 बजे उठना, योग मेडिटेशन, अपने बगीचे में फूलों से बात करना। वो मांग में सिंदूर लगाती हैं, लाल साड़ी पहनती हैं। लोग पूछते हैं किसके नाम का, वो मुस्कुरा कर कहती हैं अपने प्यार के नाम का। रेखा ने कहा कि अकेले होकर भी पूरा होकर के जिया जा सकता है। रेखा ने हमें सिखाया, औरत को पूरा होने के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं, वो खुद में पूरी हैं। राज्यसभा में सांसद भी रहीं 2012 से 2018 तक। रेखा ज्यादा बोलती नहीं है, पर जब बोलती हैं तो उनकी आंखें बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। रेखा अपनी मस्ती में, अपनी धुन में आज भी रेड कॉर्पेट हैं और सबको अपने जीवन से चकाचौंध किए रहती हैं।

रेखा जी की फिल्में तो हमें आनंदित करती ही हैं, साथ ही रेखा जी ने हमें ये सिखाया कि जब हमारे सामने कोई चुनौती हो तो उसे कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए और कैसे उससे लड़कर खुद को साबित करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने सिखाया कि जीवन पर कितना भी बुरा समय आ जाए, हमें जीना नहीं छोड़ना है और उस बुरे वक्त को भी कैसे पछाड़ दे करके दुनिया को और उस बुरे समय को दिखा देना है कि अकेले रहकर भी विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अच्छे से जिया जा सकता है, माया नगरी जैसी जगह पर होकर भी कैसे मर्यादित जीवन जिया जा सकता है। सबको आज रेखा जी बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब भी घर जाइए तो आईने के सामने खड़े होकर के कहिए कि मेरे अंदर भी एक रेखा है, रेखा जैसी अदाकारी है, रेखा जी जैसी चुनौती उठाने की हमारे अंदर क्षमता है। आज के इस कार्यक्रम में रेखा जी के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके चिरायु होने के लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी। थोड़ी देर में फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं फिल्म आशिकी 2 से। गीत के बोल और संगीत हैं मिथुन के, और अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने।

आइए अब आपको सुनाते हैं गुलजार के बोल शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में, राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में फिल्म झूम बराबर झूम से।

अब आइए सुनते हैं फिल्म शेरशाह से ये गाना। गीत, संगीत और आवाज़ है तनिष्क बागची के।

आइए अब सुनते हैं आर डी बर्मन साहब के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, आवाज मोहम्मद रफ़ी की है और फिल्म का नाम है यादों की बारात।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म मेरे सनम से। मजरूह के बोलों को सुरों में पिरोया है ओपी नैयर साहब ने। आवाजें हैं आशा भोसले की।

आशा भोसले की आवाज में भी आपने सुनी मजरूह की संगीत रचना। फिल्म का नाम था मेरे सनम। शब्द रचना मजरूह की थी और संगीत रचना ओपी नैयर साहब की। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: दिन के 12 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस द्रोम्बोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संरक्षण समझौते के लिए चल रही वार्ताओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्वाव शिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इन कंपनियों ने नकद प्रबंधन व्यवस्था एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। इन्होंने अवैध प्रेषण के माध्यम से देश से बाहर रकम भेजने में मदद की है। प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

0: के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कल हुई इस वर्चुअल बैठक में व्यापार को सुगम बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has departed for Nepal today. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that the aircraft is carrying an 11-member rescue team equipped

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:10 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:30 बजे। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रियंका मल्लिक का ख्याल गायन सुनिएगा, दिन में 12:15 बजे और रात 10:30 बजे। अपने फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा, दिन में 12:30 बजे कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। महिलाएं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेंगी, दिन में 1:15 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लेकर के आएंगे, दिन में 2:30 बजे।

युवा साथी अपना कार्यक्रम युवावाणी सुनेंगे शाम 5:15 बजे। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे नीति वचन। बोलते नगमे ये कार्यक्रम होगा आज शाम 7:31 पर। प्रस्तुति नेहा गुप्ता की होगी और मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस होगा रात 8:30 बजे।

यति रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रियंका मलिक का राग मखदुवंती में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं ऐ लाल की नैना, और द्रुत रचना तीन ताल में बोल है, तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं काहे मान करो।

अभी आप सुन रहे थे प्रियंका मलिक का राग मधुवंती में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अरुणेश कुमार पांडे और हारमोनियम पर थे शमशाद अहमद खान। अब शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो
1: हेलो,
0: जी।
1: मैं महेंद्र यादव मुन्ना बोल रहा हूँ।
0: जी महेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं कुकड़ा हंडिया प्रयागराज से।
0: जी महेंद्र जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मजदूर फिल्म का गाना है, नाना बन गया दीवाना।
0: महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत है।
1: हाँ, ये गाना इसलिए सुनना चाहते हैं मैम, अपने
0: जी
1: नाना जी के लिए।
0: जी जी जी
1: मैं बरौत, हमारा घर है। मैं बचपन से ही अपने नाना के साथ रहता हूँ,
0: अच्छा।
1: और हमारे नाना अभी 98 ईयर के हो गए हैं, और नाना नानी हमारे दोनों हैं। हम दोनों साथ में, सबके साथ में रहते हैं,
0: अच्छा, चलिए
1: और गांव में भी सबसे ज्यादा उम्र के हो गए हैं ये।
0: अच्छा,
1: और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हम लोग उनके साथ में और बड़े ही प्यार से रहते हैं। और हमारा यही कहना है कि परिवार में बड़े बुजुर्गों का सर्व सम्मान करिए, सभी
0: जी
1: से हमारा ये अनुरोध है।
0: जी जी
1: जी
0: बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके महेंद्र जी, और आप अपने नाना के लिए ये गाना सुनना चाहते हैं। मजदूर फिल्म का ये गीत है।
1: हाँ,
0: जी
1: हमारी पत्नी रेखा यादव जी, वो
0: जी
1: तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: बहुत अच्छी बात है। तो आपकी पसंद का ये गाना आइए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: मौसम वर्मा मेहता, नाम विंध्याचल।
0: विंध्याचल से मौसम जी ने कॉल की है, तो मौसम जी कौन सा गीत सुनेंगी?
1: जान फिल्म का।
0: जान फिल्म का की फरमाइश आई है विंध्याचल से, तो मौसम जी आपकी पसंद का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये कार्यक्रम आप मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुन सकते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: संगम नगरी प्रयागराज बोल रहा
0: हूँ। नमस्कार पवन जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: एक रिश्ता का।
0: गाने के बोल बता दीजिए।
1: एक राजा एक बाल पैदा है।
0: पवन जी की फरमाइश का ये गाना, फिल्म का नाम है एक रिश्ता, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: गांव दोदापुर पोस्ट उमरी प्रयागराज निवासी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से आरणी मधु दीदी को करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है संगीत।
0: जी
1: इसका शीर्षक गीत है। वैसे संगीत फिल्म में सारे गाने अच्छे हैं,
0: जी जी
1: लेकिन ये गीत है कि संगीत जहाँ है प्रीत वहाँ, प्रीत जहाँ है रीत वहाँ, ऐसा
0: जी
1: करके
0: जी
1: बहुत ही सुंदर प्यारा गीत है।
0: सुरेश
1: आपसे अनुरोध करना
0: वाडेकर
1: चाहता
0: साहब ने गाया है, अनुराधा पौडवाल भी हैं इस गीत में।
1: जी।
0: जी तो चलिए आपकी इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं संगीत फिल्म का ये गाना।
1: जी हृदय धन्यवाद, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट हंडिया, तहसील हंडिया, थाना हंडिया, गांव मुगरा, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद यादव जी, हंडिया से बात कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है जब हैरी मेट सेजल।

0: जी
1: और गाने के बोल है हवाएं, गाने को गाया है अरिजीत सिंह।
0: जी अरिजीत सिंह तो आपके फेवरेट सिंगर हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम,
0: आपने बताया था पहले वाली कॉल जो आपने की थी उसमें आपने कहा था कि आपको उनके गाने बहुत पसंद है, इसलिए ज्यादातर गाने आप उन्हीं के फरमाइश करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम। कुछ श्रोताओं का नाम लेना चाहते हूँ।
0: जी ले लीजिए।
1: गुतनी कुंडा प्रतापगढ़ से राजेंद्र कुमार जी हैं, मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, दादरपुर प्रयागराज से विकास ड्राइवर और नीतीश आर्या हैं, और ये गाना राजेंद्र कुमार जी को भी समर्पित है क्योंकि वो हमारे पसंदीदा श्रोता हैं।
0: अच्छा जी, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। एक बजने को हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्डिस दोम्ब्रोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों के बचाव दल, विशेष उपकरणों और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
1: प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार

बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: of Money Laundering Act. The premises are located in Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Jammu, Madhya Pradesh, the National Capital Region and Kolkata. In squash, India's Anahat Singh stormed into the second round of the London Squash Classic. Reigning world junior champion Anahat eased past Egypt's Meriem Metveli in her women's singles opening match. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex fell 548 points to 76,396, while the Nifty lost 203 points to 23,852 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीरे आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ मुनक़दा एक प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्विस कॉरपोरेशन का आगाज किया। कॉरपोरेशन का पोर्टल और वेबसाइट भी लॉन्च किया गया और वजीरे आला ने कॉरपोरेशन के लोगों की नकाब कुशाई की। वजीरे आला ने कहा कि हुकूमत में मुलाजमीन का रिश्ता तनख्वाह और काम तक महदूद नहीं हो सकता, यह एतमाद और जिम्मेदारी का रिश्ता है। मुलाजमीन को यह महसूस करना चाहिए कि उनके हकूक की हिफाजत करने और उनके अच्छे काम की देखभाल करने वाला कोई है। वजीरे आला ने कहा कि मुलाजमीन को उनकी मेहनत के मुताबिक तनख्वाहें मिलनी चाहिए और उनकी मेहनत का एहतराम किया जाना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए हसासियत अवलियन शर्त है, इसीलिए हुकूमत ने आउटसोर्स सर्विसेज कॉरपोरेशन तश्कील दी है।
2: सुशासन की पहली शर्त होती है संवेदनशीलता, और इसीलिए हम लोगों ने इस आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है। इसके माध्यम से आपको एक संस्थागत सुरक्षित भविष्य प्राप्त होगा। अब इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हम इस बात को मानते हैं कि अधिकार अब किसी व्यक्ति की कृपा पर नहीं मिलेंगे बल्कि आपकी मेहनत पे प्राप्त।
1: प्रोग्राम में नायब वज़ीरे आला ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी शिरकत की। रियासत में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का आगाज किया जाएगा, जिसका मकसद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 25 साल मुसलसल खिदमत के अवामी फलाही कामयाबियों को अवाम तक पहुंचाना और हर शहरी को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 की इज्तिमाई कौमी अज्म से जोड़ना है। एक माह तक चलने वाली यह जाम मुहिम 13 बड़े प्रोग्रामों के जरिए खिदमत, गुड गवर्नेंस, गरीबों की फलाह बहबूद, तरक्की और अवामी शराकत की कहानी को मुआशे के हर तबके तक पहुंचाएगी। कल मुहिम के एक्शन प्लान पर एक आला सतही बहस के दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर आजम के 25 साल के अवामी जिंदगी खिदमत, गुड गवर्नेंस और गरीबों की फलाह बहबूद का मुसलसल सफर रही है। चीनी जखीरा अंदोजी और कयास आराइयों को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने चीनी जखीरा करने की हद को 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दिया। मजीद बरा मुल्क में प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने बफर स्टॉक से प्याज को बाजार में जारी करना शुरू कर दिया है। चीनी जखीरा करने की नई हद 15 नवंबर से 30 नवंबर तक नाफिजुल अम्ल होगी। सार्फीन के उमूर, खुराक और अवामी तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा कवानीन के तहत कोई भी ताजे स्टॉक हासिल करने के बाद 30 दिन से ज्यादा चीनी को मुकर्रर हद से ज्यादा नहीं रख सकेगा। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि इस फैसले से मार्केट में चीनी की किल्लत खत्म हो जाएगी और कीमतें कंट्रोल में रहेगी। दरियसना प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस वे 450 मैट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंची, जिसे दिल्ली, एनसीआर, वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में तकसीम किया गया है। रियासत में स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए खतरे की रोशनी में प्राइवेट पैथोलॉजी मराकज के लिए जांच की शर्तें तय की गई हैं। लखनऊ में स्वाइन फ्लू टेस्ट की फीस 3000 रुपये मुकर्रर की गई है। प्राइवेट पैथोलॉजी अब इस शरह से टेस्ट करेंगे। इन्फेक्शन के बढ़ते हुए केसों की रोशनी में इंतजामिया ने प्राइवेट अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटर्स की तरफ से वसूल की जाने वाली मनमानी फीसों पर पाबंदी लगा दी है। लखनऊ में संजय गांधी पीजीआई में टेस्टिंग फीस 2400 और ये शरह निजी शिविर के लिए अब इस शरह की बुनियाद पर मुकर्रर की गई है। यह फैसला लखनऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर की सदारत में हुई मीटिंग में किया गया। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की 41,424 असामियों पर इंदराज के लिए 2025 जारी भर्ती के अमल के तहत मुंतखब उम्मीदवारों के लिए फिजिकल एग्जाम का इम्तिहान 8 सितंबर से शुरू हो गया। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने पोस्ट किया है कि फिजिकल एग्जाम के इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम मीटिंग आज दोपहर 2 बजे होगी। आज होने वाली ट्रस्टी इजलास में नए ट्रस्टीज की तकरीरी और सीओ सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा। काबिल अजी मजहबी कमेटी की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें राम मंदिर में आने वाले त्योहारों और तकरीबात को शान निशान तरीके

0: से मनाने पर इत्तेफाक किया गया। रियासत के 19 अजला में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से सैलाब से मुतासिर, वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव काम जंगी बुनियादों पर चलाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में बारिश से होने वाली जनहानि, पशुहानि और आर्थिक हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का आकलन कर 2 से 4 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, राहत सामग्री और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का काम जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 549 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 248 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 552 नाव और मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए 312 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन राहत शिविरों में करीब 1700 लोग रह रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी के साथ आकाशवाणी

0: अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का आकलन कर 2 से 4 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, राहत सामग्री और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 549 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 248 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरत बंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 552 नाव और मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए 312 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन राहत शिविरों में करीब 1700 लोग रह रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी की सभी श्रोताओं को तनु का
1: और शारदा का
0: प्यार भरा नमस्कार। और आज के पावन पर्व ललही छठ या हलषष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: तनु जी, पता है हाँ? संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाने वाला ये जो निर्जला उपवास है, इसे हल छठ भी कहते हैं। बलदेव छठ, बलदेव जयंती या कुछ लोग चंदन छठ के नाम से भी जानते हैं।
0: और शारदा, आज का दिन एक और वजह से बहुत खास है।
1: वो क्या?
0: ये कि आज का दिन हमें याद दिलाता है एक ऐसे सफर की जिस पर अग्रसर रहने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए, जिसकी आज हमारे समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम तकनीक में तो आगे बढ़ चुके हैं, पर उतनी ही सेहत के इस रेस में कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, है ना?
0: बिल्कुल शारदा। तो सखियों, ये जो स्वाद का चश्मा लगा है ना, इसे हटाना होगा, सेहत का हाथ थामना होगा, फास्ट फूड को छोड़कर सही पोषण को अपनाना होगा।
1: और श्रोताओं, हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमारे लिए एक चेतावनी भी है और ये एक अवसर भी है, है ना?
0: तो आप समझ गए होंगे कि हमारा आज का ये दिन और भी क्यों खास है, क्योंकि हम इस वक्त इसी सप्ताह में चल रहे हैं। और ये जो सप्ताह है ना, ये सिर्फ एक चेतावनी है उस कुपोषण के खिलाफ जो हमारे छोटे छोटे बच्चों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। और ये अवसर है हर घर में सेहत की थाली सजाने का।
1: तो क्यों ना हम आज ही ये संकल्प लें कि अपने पौष्टिक और पारंपरिक जो भोजन पर लौटने का, क्योंकि वही एकमात्र तकनीक है जिसे हम कोई भी स्वास्थ्य रह सकता है, है ना? निरोग रह सकता है, दीर्घायु रह सकता है, क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य की थाली है ना तनु जी, उसमें हर प्रकार का स्वास्थ्य रूपी अनाज और पोषण तत्व छुपे हुए हैं।
0: बिल्कुल शारदा, जो हमारा पारंपरिक भोजन है, जो हम अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजें खाते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाई है, वो हमारे वातावरण, हमारे परिवेश के हिसाब से है और हमें जिस मौसम में जैसी इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, जैसे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें हैं। और आजकल हम क्या करते हैं कि हम विदेशी खान पान की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, बच्चों को फास्ट फूड पसंद आता है और वो जो चीज़ें हैं वो हमारी सेहत के साथ बहुत बुरा खिलवाड़ करती
1: हैं। बिल्कुल, इसका सीधा असर जो है कि हमारे पाचन क्रिया पर पड़ता है, है ना? जो कि पाचन जब हमारा ख़राब होता है या बिगड़ता है तो उससे पूरा स्वास्थ्य ही प्रभावित होने लगता है।
0: बिल्कुल, और हर चीज़ की शुरुआत हमारे खाने से ही तो होती है। जब पेट सही होगा, सही चीजें हमारे शरीर में जाएंगी तो सारे ऑर्गन, सारी चीजें, सब कुछ सही रहेगा, है ना? यहां तक कि हमारी जीवन शैली भी, जब हम बहुत भारी खाना, अपच वाला खाना खाते

0: तो हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, शरीर में आलस आता है। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि देखो, हम अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हम अपना सोना जगना तक ठीक नहीं कर सकते हैं, तो बाकी चीज़ों की तो बात ही छोड़ दो।
1: हाँ, है ना? और ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी नियम बनाया गया है कि हाँ, आपको सुबह, दोपहर, शाम या रात को जो खाने की सारणी बनाई गई है उस नियम से चलें, है ना?
0: बिल्कुल। तो हमें ज्ञान का दीपक जलाना होगा, मिटे अज्ञान को का जो अंधियारा है उसको बिल्कुल अच्छे से मिटाना होगा, स्वस्थ रहना होगा हर नागरिक को, और यही हमें संकल्प लेना होगा।
1: बिल्कुल। और अब अपने कार्यक्रम की इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आप सबको ये सुंदर सा गीत।

0: प्यारा गीत था, है ना तंजी? और इस खुशनुमा नगमे के बाद लीजिए हम फिर हाजिर है अपने कार्यक्रम पर।
1: मैं तनु हूँ शारदा के साथ, और हम फिर से आ गए हैं आपसे प्यारी प्यारी बातें करने के लिए।
0: बाहर रिमझिम बारिश हो रही है और पकौड़े और चाय का मौसम तो बस बेहद ही खूबसूरत लग रहा है ना। लेकिन क्या कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बारिश के इस हल्के दिनों में अचानक

0: से आपका मन उदास होने लगा हो, बिना किसी वजह से थकान महसूस होने लगी हो, सुबह बिस्तर छोड़ने का मन ही ना करे और बेवजह चिड़चिड़ापन बढ़ जाए।
1: अगर ऐसा है तो घबराइए मत, आप अकेली नहीं हैं और ना ही आप आलसी हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे सीजनल डिफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं और आम भाषा में मॉनसून ब्लूज।
0: और धूप की कमी और घर में कैद होने से कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस भी होता है और हमारे साथ ऐसी समस्या होने लगती ही है।
1: बिल्कुल भाई, होता क्या है ना कि हमें कहीं जा नहीं पा रहे हैं, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, हर वक्त बारिश हो रही है, बदली बदली की वजह से वो लाइट की कमी सी हो रही है, तो ये साइंटिफिकली हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें इस तरीके की दिक्कत होने लगती है। लेकिन इससे छुटकारा पाना बेहद आसान है। आपको बस इतना करना है कि अपने घरों में ब्राइट लाइट का इस्तेमाल करें और जहाँ तक हो सके, क्योंकि भाई गर्मी तो है नहीं कि आपको खिड़की दरवाजे बंद करके रखने की ज़रूरत है,
0: खोल
1: खिड़की दरवाजे खोल दें आप, और आपकी घर में अगर बालकनी है या पोर्टिको है तो वहाँ पे बैठ के मौसम का आनंद लें, अपने मन का बढ़िया बनाए खाएं। घर से अगर निकल नहीं सकते हैं तो घर में ही हल्का फुल्का योग, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज करें, क्योंकि भाई जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग वॉक पे जाते हैं, वो लोग जब उस पे नहीं जा पाते हैं ना, तो वो अपने आप में ही उनको बहुत मतलब डिस्टर्बिंग सा फील करने का कारण हो जाता है।
0: एक तरीके से कह सकते कि बोरियत सा महसूस होना है ना,
1: बोरियत भी महसूस होती है और वो फिजिकल एक्टिविटी की कमी से भी उलझन होती है।
0: तो इससे और इसके अलावा मौसम है ये बारिश का, तो कोशिश करें कि इसको एंजॉय करें
1: बिल्कुल। और जब हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, तो जब मौका मिले, सामने वाले को फुर्सत हो, तो आप अपने दोस्तों से, परिवार वालों से खूब बात करिए। और हाँ, मौसम के लालच में पड़ के सिर्फ चटर पटर और पकौड़े नहीं खाने हैं, सेहतमंद खाना खाना है। जब हम पौष्टिक खाना खाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमको खुश करता है।
0: है ना जी, पता है इन सब परिस्थितियों में, मतलब कि हम घर में कैद हैं, ये क्या करें समझ में नहीं आता, और बदली बदली सा मौसम है, बारिश लगातार हो रही है, थोड़ा सा उमस सा भी और मॉइस्चराइजर भी हो जाता है, और खाना क्या बनाए भाई, खाना बन चुका है, पकौड़ी बहुत खा चुके हैं, चाय पीने का इच्छा नहीं, तो इन सब से थोड़ा सा हमें राहत किस चीज़ से मिलता है, सुकून किस चीज़ से मिलता है, और वो है सबसे अच्छी चीज़ म्यूजिक। है ना, म्यूजिक एक ऐसा रास्ता है जिससे आपका मन तो खुश होता ही है, बल्कि इसका पूरा प्रभाव हमारे पूरे शरीर और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: उदास मन भी खुश हो जाता है। तो शारदा, अपने श्रोताओं को खुश किया जाए।
0: बिल्कुल,
1: एक और गीत सुनते हैं प्यारा सा।
0: चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: भाई गहरा हुआ, बहुत ही खूबसूरत गीत है ना तनु जी। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम का रुख थोड़ा बदलते हैं और सुनवाते हैं आप सबको वार्ता, कैविटी और मसूड़ों की समस्या, रोकथाम और उपचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर वंदिता वत्स जी।
1: मैं डॉक्टर वंदिता वत्स, दंत चिकित्सक। हमारे घरों की गृह लक्ष्मियों को कैविटी एवं मसूड़ों की समस्या, रोकथाम एवं उपचार के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। मैंने घर की माताओं और बहनों पर इसलिए जोर दिया क्योंकि कहते हैं कि एक महिला को पढ़ा दिया जाए तो पूरे घर को शिक्षित करने के समान है। जब हमारी गृहलक्ष्मी ये समझ जाएगी कि कैसे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखकर पूरे शरीर के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है, तो वो बचपन से ही घर के बच्चों को मुख एवं दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर पाएगी। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन या मीठा खाते हैं तो अन्न के कण हमारे दांतों की सतह पर लगे रह जाते हैं। यदि खाने के बाद कुल्ला और ठीक से सफाई न की जाए तो बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो इस कार्बोहाइड्रेट को अम्ल में या एसिड में बदल देते हैं। आपने अक्सर महसूस भी किया होगा कि सुबह सोकर जब हम उठते हैं तो हमारे दांतों की सतह पर एक चिपचिपी सी लेयर महसूस होती है जिसे हम प्लाक कहते हैं, जिसमें खाने के कण, बैक्टीरिया

और एसिड पाया जाता है। प्लाक में मौजूद एसिड दांतों की सबसे बाहरी परत, जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो दांतों को प्रोटेक्ट करने या उनकी रक्षा करने का काम करती है, उसे ये अम्ल नुकसान पहुंचाने लगता है। यदि लंबे समय तक दांतों की सफाई ठीक प्रकार से ना की जाए तो इनेमल की सतह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और छेद जैसा हो जाता है, जिसे हम डेंटल केरीज या आम भाषा में कैविटी कहते हैं। अगर समय पर इस कैविटी का इलाज ना किया जाए, इसमें फिलिंग ना करवाई जाए, तो इसका आकार या साइज बढ़ता जाता है और इनेमल के नीचे मौजूद डेंटिन और पल्प, जहाँ दांतों की नसें व खून की नलियाँ होती हैं, वहाँ तक ये इन्फेक्शन पहुँच जाता है और मरीज को दर्द, सूजन आदि की शिकायत आने लगती है। कैविटी को सही समय पर पहचाने कैसे? तो देखिए, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो अपने डेंटिस्ट से मिलें। अगर दांतों पे सफेद, भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई दें, शुरुआत में हल्का सा दर्द या संवेदनशीलता महसूस होना, ठंडा गर्म लगना, दांतों में गड्ढे या छेद दिखना, दांतों में झनझनाहट होना, चबाते वक्त दर्द होना या धीरे धीरे हर समय दर्द होते रहना, या खाना फंसने की शिकायत होना जिसके कारण बदबू आने की भी शिकायत होती है, तो ये सब कुछ लक्षण हैं जो कैविटी के शुरुआती लक्षण होते हैं। अब अगर बात करें कारणों की, तो जैसा कि मैंने बताया, दांतों की ठीक से सफाई ना करने पर प्लाक की परत दांतों पर जमा हो जाती है, जिसमें मौजूद बैक्टीरिया एसिड बनाकर इनेमल को नष्ट करने लगते हैं और कैविटी का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसे जोखिम कारण भी हैं जो कैविटी होने की संभावना को बढ़ा देते हैं, जैसे दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, जिसके कारण मरीज सही से साफ सफाई नहीं कर पाता, दांतों की बनावट कुछ इस तरह का होना कि उनमें मौजूद दरारें जो थोड़ी ज्यादा गहरी होती हैं, जिन्हें हम डीप पिट एंड फिशर कहते हैं, वहां खाना जमने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। सॉफ्ट और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार ज्यादा लेना, क्योंकि ये चिपचिपे होते हैं तो हमारी दांतों की सतह पर चिपक जाते हैं, जैसे पिज्जा, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक आदि। छोटे बच्चों को रात में दूध पिलाना और उनकी दांतों की सफाई ना करना, इसके कारण एक बहुत ही आम समस्या आजकल देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज। ये बच्चों में होने वाली कैविटी है, जिसका खतरा तब बढ़ जाता है जब हम रात में बच्चों को दूध पिला के सुला देते हैं। कभी कभी किसी बीमारी या दवा के साइड इफेक्ट के कारण देखा जाता है कि हमारे मुंह में लार का बनना कम हो जाता है। लार कम होने से ये जो अम्ल का प्रभाव है इनेबल पर ज्यादा पड़ता है और कैविटी होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन मरीजों को एसिडिटी की समस्या होती है, भूख न लगना या बुलेमिया आदि समस्याएं होती हैं, जिसमें पेट का अम्ल या एसिड मुंह में आता है, तो वो दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाता है और कैविटी होने का एक कारण बन सकता है। कभी कभी किन्हीं मरीजों में पहले से मौजूद फिलिंग अगर ठीक से ना की गई हो या किन्हीं कारणों से टूट गई हो, तो वहां पे भी सेकेंडरी केरीज या कैविटी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अब हमने कुछ कारण तो जान लिए जो जोखिम बढ़ाते हैं कैविटी होने का, अब ये जानते हैं कि आखिर हम इनकी रोकथाम व बचाव कैसे कर सकते हैं। तो श्रोताओं, जरूरी है कि दिन में 2 बार व 2 मिनट तक सही ढंग से ब्रश करें, और रात में ब्रश करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रात में सलाइवा की मात्रा भी कम होती है और खाना लंबे समय तक दांत की सतह पर चिपका रहता है, जिससे कैविटी होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। खाने के बाद कुल्ला अवश्य करें। अगर डॉक्टर ने आपको फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश करने की सलाह दी हो तो जरूर करें। मीठी व चिपचिपी चीजों को कम खाएं, और हो सके तो ऐसी चीजें 2 खानों के बीच में खाएं, जिससे कि वो दांतों पे चिपकी ना रहे। फ्लोराइड युक्त पेस्ट का प्रयोग करें। यदि आपके दांतों की दरारें गहरी हैं, तो डेंटिस्ट की सलाह से पिट एंड फिशर सीलेंट लगवा लें। यदि किसी दवा के कारण आपकी लार कम बन रही है, तो पानी का अधिक सेवन करें और डॉक्टर की सलाह लें। बच्चों को रात में दूध पिलाने के बाद पानी अवश्य पिलाएं, और उनमें 2 बार ब्रश करने की आदत बचपन से ही डालें। श्रोताओं, ये बहुत ही जरूरी है कि हर 6 महीने में कम से कम 1 बार आप अपने डेंटिस्ट से मिलें। अगर कैविटी के कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं, तो डेंटिस्ट से मिलकर फिलिंग करवाएं, जिसमें आपके दांतों को क्षति भी कम पहुंचेगी, समय भी कम लगेगा व कम पैसे में आपका इलाज भी संभव हो सकेगा। यदि कैविटी आपके पल्प या नसों तक पहुंच गई है
और उसने

दर्द व सूजन उत्पन्न कर दिया है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट या नसों का इलाज जरूरी हो जाता है, जो अधिक खर्चीला होने के साथ साथ समय लेने वाला उपचार है और किसी किसी मरीज में कैप लगाना भी जरूरी हो जाता है। तो ये तो थे कैविटी क्या होती है, उसके लक्षण, रोकथाम व उपचार। चलिए अब हम बात करते हैं मसूड़ों की। मसूड़े दांतों के चारों ओर मौजूद गुलाबी रंग के सॉफ्ट टिश्यू को कहते हैं, जो दांतों को सहारा और सुरक्षा देने का काम करता है। आमतौर पर मसूड़ों में जो समस्याएं देखने को मिलती हैं वो इस प्रकार हैं। जिंजिवाइटिस, जिसमें मसूड़ों का लाल होना, उनमें सूजन आना, मसूड़ों का फूलना, दर्द का होना, बिना किसी कारण या ब्रश के सर में खून का आना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा है पायरिया, इसको हम अपनी मेडिकल भाषा में पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। यदि जिंजिवाइटिस का समय पर डॉक्टर द्वारा इलाज नहीं कराया जाता तो मसूड़े दांतों से हटने लगते हैं व गहरी पॉकेट्स बन जाती हैं, जिनमें मौजूद बैक्टीरिया या जीवाणु हड्डी व दांतों के पास मौजूद सहायक टिश्यू को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण मुंह से बदबू आना, पस निकलना, दांतों का हिलना या समय से पहले गिर जाना या टूट जाना, ये लक्षण देखे जा सकते हैं। और तीसरी जो एक आम समस्या है वो है गम रिसेशन, मसूड़ों का सिकुड़ना या नीचे जाना, जिसके कारण दांतों की जड़ों का मुंह में दिखना, ठंडा गर्म लगना, जड़ों में कीड़े लगना आदि समस्याएं देखी जा सकती हैं। मसूड़ों की समस्याओं के कारणों की अगर बात की जाए तो दांतों की सफाई ठीक से न करना, उस स्थिति में चिपचिपी परत जिसे हम प्लाक कहते हैं, जिसमें अन्न कण, बैक्टीरिया, अम्ल मौजूद होते हैं, वो जमा होने लगती है। प्लाक को अगर लंबे समय तक साफ न किया जाए तो मिनरल्स या खनिज को जमा कर ये कठोर हो जाती है और इसे हम टार्टर कहते हैं। जी हाँ, प्लाक टार्टर का रूप ले लेता है और जिसे केवल और केवल डेंटिस्ट ही मशीन से साफ करके निकाल सकता है। अगर कारणों की बात की जाए तो मुंह की उचित देखभाल ना करना, सही तरीके से ब्रश ना करना, फ्लॉस का प्रयोग ना करना, ये ऐसे कारण हैं जिसके कारण प्लाक जमा होता जाता है। धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि का प्रयोग मसूड़ों से संबंधित रोगों व कैंसर का कारण बनता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न होता है, जो मसूड़ों को कमजोर करता है, उनसे खून निकलना आदि जैसी समस्याओं का कारण बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें मसूड़ों की समस्याओं की, तो एक मुख्य कारण हार्मोन्स का सही से न निकलना भी एक कारण होता है। जैसा कि देखा गया है, गर्भावस्था में, किशोर अवस्था में या रजोनिवृत्ति के दौरान हार्मोन्स बदलते हैं, या डायबिटीज के मरीजों में मुंह में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रभावित होते हैं और मसूड़ों से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। कुछ दवाइयां जैसे एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, जो कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग की जाती हैं, ऐसा पाया गया है कि इनके प्रयोग से भी मसूड़ों में सूजन आना, खून आना आदि समस्याएं हो सकती हैं। तो श्रोताओं, मसूड़ों की समस्याओं की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? जैसा मैंने पहले भी बताया, दिन में 2 बार 2 मिनट ब्रश करें, फ्लॉस का प्रयोग करें, अगर डॉक्टर ने आपको माउथ वॉश की सलाह दी है तो उसका प्रयोग करें, अगर आपको कुछ दर्द या सूजन जैसी समस्या लग रही है तो गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करें। हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाके रूटीन चेकअप कराना बहुत ही आवश्यक है। इससे क्या होगा, अगर कोई भी समस्या शुरू हो रही है तो शुरुआत में ही उसका निदान किया जा सकेगा। संतुलित आहार लें, रेशेदार फल सब्जी लें, विटामिन सी और कैल्शियम युक्त भोजन लेने से हमारे मसूड़े और दांत स्वस्थ रहेंगे। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। जिंजिवाइटिस की समस्या अगर शुरू हो गई है तो तुरंत अपने डेंटिस्ट की सलाह पर सफाई करवाएं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि सफाई करवाने पे दांत हिल जाएंगे, परंतु श्रोताओं, ये सिर्फ हमारा एक भ्रम है, क्योंकि होता क्या है, मरीज बहुत देर से डेंटिस्ट के पास सफाई करवाने जाता है और तब तक पायरिया की समस्या शुरू हो चुकी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पायरिया की समस्या में हमारी हड्डी भी गलने लगती है। तो अगर आप ऐसी स्थिति में जाएंगे तो कुछ दिन आपको सफाई के बाद महसूस होता है कि हमारे दांत हिल रहे हैं, परंतु जब आप एक बार सफाई करवा लेते हैं, प्लाक और टार्टर हमारे दांतों से हट जाता है, स्वस्थ वातावरण जैसे ही वहां पे आता है दांतों के आसपास, तो नई हड्डी बनने लगती है और हमारे मसूड़े फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि पायरिया की समस्या अगर शुरू

0: हो चुकी है तो इसे हल्के में ना लें। तुरंत डेंटिस्ट से मिलकर एंटीबायोटिक कवरेज में ओरल प्रोफाइलेक्सिस और पॉकेट रिमूवल आदि जो उपचार होते हैं उनको करवाएं, अन्यथा असमय दांत हिलकर टूट भी सकते हैं। गर्भवती महिलाएं व डायबिटीज के मरीजों को मेरी सलाह होगी कि अपने मसूड़ों का विशेष ध्यान रखें, जरूर दोनों टाइम ब्रश करें, अच्छा आहार लें, विटामिन सी से युक्त आहार लें। तो श्रोताओं, ये थे कैविटी व मसूड़ों से संबंधित बीमारियां, उनके लक्षण, रोकथाम व उपचार। तो चलते चलते मैं यही कहूंगी, स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, परंतु उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मुख्य द्वार को भी साफ रखें, क्योंकि अगर हमारा मुख्य द्वार ही गंदा होगा तो हम घर को कितना भी साफ कर लें, बाहर से गंदगी अंदर आएगी। ऐसे ही हमारा मुंह जो है वो मुख्य द्वार है, जहां से भोजन, पानी सब कुछ हम अपने शरीर में ले रहे हैं। अगर मुख की साफ सफाई की हम देखभाल नहीं करेंगे तो वो कीटाणु हमारे शरीर में जाके कैविटी ही नहीं, मसूड़ों की समस्याएं ही नहीं, बल्कि अनगिनत बीमारियां देंगे और हमारे पाचन को खराब करेंगे। तो ध्यान रखें, स्वस्थ मुंह है सेहत का आधार।
1: अभी बहनें सुन रही थी वार्ता, कैविटी और मसूड़ों की समस्या, रोकथाम और उपचार, और वार्ताकार थी डॉक्टर वंदिता वत्स। तो शारदा, हमें उम्मीद है कि इस वार्ता से हमारी जो सुनने वाले श्रोता हैं उन सब ने बहुत अच्छी जानकारी ली होगी और वो अब बहुत अच्छे से अपने मुंह का, अपने दांतों का ख्याल रखेंगे, है ना। और अब मूड को थोड़ा चेंज करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही सुंदर गीत था शारदा। और अब वापस आते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ।
1: बिल्कुल,
0: हम लोग कार्यक्रम के शुरुआत से ही बात कर रहे थे बारिश की। तो भाई बारिश में देखो, जैसा कि हमने बात किया, बहुत अच्छा भी लगता है, कुछ समस्याएं भी होती हैं। एक बहुत ही कॉमन समस्या बारिश में होती है बालों की, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है ना कि आप वॉश करो और नेक्स्ट डे ही आपको ऐसा फील होने लगता है कि बाल चिपचिपे हैं या स्कैल्प में अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रेश नहीं फील हो रहा है। और ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हर वक्त पार्लर में जाके कोई हेयर ट्रीटमेंट करवाएं, और वो कॉस्टली भी बहुत होता है। तो क्यों ना ऐसा करें कि आज अपनी श्रोताओं को हम लोग ऐसा हेयर स्पा बताएं जो वो घर पे ही कर लें और इन समस्याओं से दूर रह सके।
1: हाँ, क्यों नहीं,
0: तो बताओ। तो,
1: बिल्कुल तनु जी, भाई बहनों, अगर हम घर पर ही अपने बालों को आसानी से बहुत ही नेचुरल तरीके से और नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करके एक पार्लर जैसा सुंदर हेयर स्पा कर सकते हैं। इस क्रिया में सबसे पहले ऑयलिंग मतलब मसाज, क्योंकि तेल से हम लोग बचते हैं कि भाई बारिश में तेल ना लगाएं, है ना। तो नारियल का तेल हुआ, ऑलिव जैसे तो जैतून का तेल हुआ, बादाम का तेल हुआ, इन तेलों को आप हल्का सा, मतलब किसी एक तेल को हल्का सा गुनगुन करें और उंगलियों की मदद से सिर की त्वचा और बालों की लंबाई पर 10 से 15 मिनट तक हल्की मसाज करें। और इसमें जो है कि अच्छी तरीके से जब बाल में, मतलब कि आपके बाल में तेल लग जाते हैं, तो 2-4 घंटे के बाद बालों को आप स्टीम दें। और स्टीम देने के लिए आप साफ अच्छी टॉवल को, जो इतना बड़ा तौल यानी जिससे आपके पूरे बाल अच्छे से लिपट जाए, और गर्म पानी में ऐसे तौलिए को गर्म करके और उसके पानी को अच्छे से निचोड़ के निकाल लें कि हाँ तौलिए से स्टीम मतलब भाप जैसा आता रहे, और पूरे सर के बालों में उसको लपेट लें और थोड़ी देर के लिए करीब 10-15 मिनट के लिए उसे छोड़ दें कि आपके बाल जो जिस ऑयल से आपने पूरे सर का मसाज किया है वो बालों की जड़ जड़ में ऑयल स्टीम के द्वारा जाए और उससे उसको पोषण मिले, तेल का जो एक पोषक तत्व है वहाँ तक मिले। और इसके बाद अब बालों को आप मास्क लगाइए, इसमें दही, शहद, एलोवेरा जेल का जेल को मिला करके एक नेचुरल हेयर पैक बना लें और इसे बालों की जड़ों से लेकर के सिरे तक अच्छी तरीके से लगा करके करीब 30 मिनट से 45 मिनट तक छोड़ दें।
0: अच्छा,
1: हाँ। अब इसके बाद अगला चरण आया बालों को धोना, मतलब हेयर वॉश। किसी माइल्ड शैम्पू, मतलब हल्का शैम्पू हो, हर्बल शैम्पू हो, इसे ताजे पानी से बालों को अच्छी तरह से धो लें और कोशिश करें कि बालों को नेचुरल तरीके से सुखाएं।
0: बिल्कुल शारदा, हाँ। तुमने बहुत ही एक दो पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए कि देखो, पहली चीज़ तो हमें हमेशा माइल्ड शैम्पूज, हर्बल शैम्पूज यूज़ करने चाहिए। आजकल जो बच्चे हैं, हमारे खुद के बच्चे इस बात को नहीं मानते हैं कि वो हर्बल शैम्पू यूज़ करें, वो नए नए प्रोडक्ट्स देख के, एड्स देख के, वो ये वाला लाएंगे, वो वाला लाएंगे, तो वॉल्यूम करने वाला लाएंगे। लेकिन उन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है। एक दिन मैं सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के, उनका मैं इंटरव्यू सुन रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि अगर आप तेल अच्छे से लगाते हो, अगर आप ऑयलिंग अच्छे से करते हो ना, और ये जो तुमने बताया हॉट टॉवल की बात, तो इससे जो होते हैं हमारे पोर्स खुलते हैं और वो ऑयल अच्छे से सीप इन हो जाता है, तो बहुत अच्छे से ऑयलिंग हो जाती है हमारे स्काल्प की और हमारे हेयर्स की, जितना उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाते हैं। उसके बाद हम किसी भी शैम्पू से धोएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाता है। तो बजाय इसके कि हम किसी भी बात से इन्फ्लुएंस होके, किसी भी एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होके महंगे और केमिकल शैम्पूज लाएं, इससे अच्छा है कि हम हर्बल शैम्पू यूज़ करें, है ना। और एक चीज़ और तुमने बहुत अच्छी बताई कि ये जो है चीज़ें हम सारी घर पर करें, बाहर जाके हम बेकार के पैसे और समय अपने खर्चा ना करें।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और पता है धनु जी, हम लोग कोशिश, बाल तो धुलते हैं, धुलने के बाद हल्का हल्का नम रहता, बाल को तुरंत झाड़ने लगते हैं, तो कोशिश करें बड़े दानों के जो कंघी होते हैं वो इस्तेमाल करें, जिससे कि आप बाल अच्छी तरह से सुलझ करके झड़ जाए, आराम से झड़ जाए।
0: और जब तक

0: बहुत ज़रूरत ना हो, आपको किसी पार्टी में जाना है या बहुत तुरंत घर से निकलना है, तो आप ब्लो ड्राइज़ का, हेयर ड्राइज़ का इस्तेमाल ना करें, उन्हें नेचुरली सूखने दें।
1: और आजकल एक बहुत ही हम घर घर ही इस फैशन को देख रहे हैं भाई, कि बाल को स्ट्रेट करने की फैशन।
0: स्ट्रेट या कर्ल, जिसके कर्ल्स हैं उनको स्ट्रेट चाहिए, जिनके स्ट्रेट हैं उनको कर्ल्स
1: तो
0: चाहिए।
1: स्ट्रेटनर जो लगाते हैं उसे कभी कभी बालों से इतनी अजीब सी जलन सी बदबू आती है, ये चीज बहुत ही नुकसानदायक
0: नहीं,
1: होता
0: और वो
1: है।
0: क्योंकि उसमें हीट यूज होती है उस प्रोसेस में, तो वो बालों को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है, फिर वो आसानी से ठीक भी नहीं हो पाते हैं।
1: हाँ, तो श्रोताओं, यदि आप अपने बालों को सुंदर, स्वस्थ, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि बहुत ही हल्के शैम्पू का प्रयोग करें और नेचुरल तरीके से उन्हें सुखाएं, और तेल का भाई जरूर ही मसाज करें, है ना?
0: बिल्कुल। और अगर स्पा का नहीं भी टाइम मिल पा रहा है, तो इतना हम कहेंगे कि आप जब भी हेयर वॉश करें, उसके पहले चाहे 1 घंटे के लिए ही सही, आप हेयर ऑयल से मसाज जरूर से
1: जरूर
0: करें।
1: करें,
0: उतना करने से ही आपके बाल जल्दी डैमेज नहीं होंगे
1: नहीं
0: और
1: होंगे।
0: मेंटेन रहेंगे।
1: वैसे ये तो बात हो गई
0: ये निखार की,
1: शानदारी खीर निखार की,
0: हाँ,
1: और
0: और
1: अब
0: जायके पे आते
1: हाँ, क्यों
0: हैं। तो भाई
1: नहीं।
0: देखो, जब सावन का महीना आने वाला होता है ना, बारिश, अगस्त, सितंबर, तो फिर तुरंत घेवर की याद आती है ना, क्योंकि ये इसी मौसम में मिलता है और इतना अच्छा लगता है खाने में कि हम पूरे साल इसको मिस करते हैं। तो जल्दी से इसकी हम रेसिपी बता देते हैं। सबसे पहले इसके लिए आप सामग्री नोट कर लें। मैदा चाहिए 1.5 कप, देसी घी चाहिए 1/4 कप घोलने के लिए, और तलने के लिए अलग से घी या तेल जो भी आप यूज़ करना चाहें। बर्फ़ के टुकड़े चाहिए 5-6, 1 छोटा चम्मच बेसन, 1/2 कप ठंडा दूध, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, और 2.5-3 कप लगभग ठंडा पानी, और चाशनी के लिए 1 कप चीनी, 1/2 कप पानी और इलायची पाउडर, और सजावट के लिए आप जैसा चाहें रबड़ी और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो। तो अब बनाने की विधि, एक बड़े बर्तन में 1/4 कप पिघला हुआ या जमा हुआ देसी घी लें। इसमें बर्फ़ के टुकड़े डालकर अच्छी तरह फेंटें, जब तक कि घी एकदम सफ़ेद और क्रीमी मलाई जैसा ना हो जाए। अब बर्फ़ के टुकड़े बाहर निकाल दें। क्रीमी घी में 1 छोटा चम्मच बेसन और थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिलाएं। इसमें ठंडा दूध और फ्रिज का ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, ताकि कोई गुठली ना रहे। अंत में 1 छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाएं। घोल बिल्कुल पतला लस्सी जैसा होना चाहिए, और इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें। अब चाशनी बना लें। एक पैन में चाशनी और 1/2 कप चीनी और 1/2 कप पानी, जो हमने पहले इंग्रेडिएंट्स में बताया था, वो डालें। 1 या 2 तार की चाशनी बनाकर इलायची पाउडर मिलाकर उसे रख लें। अब बारी है घेवर बनाने की। एक गहरे बर्तन या कढ़ाई में घी या तेल डालकर गरम करें। घी अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। अब एक चम्मच या छोटी बोतल में ठंडा बैटर भरकर कढ़ैया के बीच में बिल्कुल पतली धार से थोड़ा थोड़ा डालते रहें। झाग शांत
1: जैसे
0: होने
1: कि
0: पर बीच में फिर से जगह बनाएं और बैटर डालते रहें, और जो बैटर बनता जा रहा है उसको किनारे खिसकाते जाएं। जब घेवर सुनहरे रंग का हो जाए और पक जाए, तो चाकू या चम्मच की मदद से इसे सावधानी से बाहर निकाल लें। ये बिल्कुल जालीदार बर्तन में रखें, ताकि इसका जो भी अतिरिक्त घी है वो निकल जाए, और ठंडा होने के बाद इसकी टॉपिंग कर लें। इसमें पहले एक समान रूप से चाशनी फैलाएं, ऊपर से रबड़ी फैलाएं, और कटे हुए जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है उससे आप इसको बनाएं, खाएं। और फिलहाल हमारा समय हो रहा है, तो हमें इजाजत दें। शारदा, हम अपने श्रोताओं से कहते हैं
1: नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत

0: उपकरणों के साथ पांचवा विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का पांचवां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
3: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व

0: बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIR News हिंदी और पब्लिक पर @AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न

0: जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
1: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
2: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनूघाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चुल्स को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
2: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
2: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
2: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
1: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
2: अजीत जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
1: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
2: जी।
1: आप कहेंगे ये ठीक भी है, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
2: श्रोता, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
1: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं
2: जी।
1: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
2: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
1: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है
2: जी।
1: लेकिन ये जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
2: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है, तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
1: जी हाँ श्रोताओं, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था
2: जी।
1: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओं, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं
2: जी।
1: और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
2: जी हाँ श्रोताओं, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है
1: जी। श्रोताओं, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर
2: जी,
1: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारे आभार के पात्र नहीं है? वे सभी हमारे आभार के

0: पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मशीनों को रिटायर करने की जापान की ये छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
0: तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए
1: जी,
0: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
1: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
0: श्रोताओ, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
1: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: जी, तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न है,
0: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है।
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: CIET NCERT presents the program द स्मार्ट मंकी।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw down the bottle. Just then, the monkey climbed down the tree with the banana peel. There was a dustbin nearby. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Farida and Anju saw this and felt ashamed. They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. Have Have you seen people throwing packets or bottles in the park or

0: मेरा नाम साक्षी है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
4: नमस्कार साथियों।
5: मेरा भी नमस्कार।
4: साथियों, राजस्थान की भूमि रण बांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
5: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले

0: लीजिए राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
1: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
0: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोकगीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
1: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
0: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
1: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खांट जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
0: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
1: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
2: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
1: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
0: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
1: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
0: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे, परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
1: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
0: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
1: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
0: पाठशाला

0: कार्यशाला में उस समय नाना भाई और सेंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सेंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
1: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
0: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
2: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों, इसे ट्रक से बांध कर घसीटो।
0: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
1: साहब, ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
0: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता, वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
1: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
0: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
1: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे,
0: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
1: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
0: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
1: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
0: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
1: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ, घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
0: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो?
1: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
0: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
1: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
0: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
1: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
0: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
1: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
0: साथ ही उसने जन

0: भारतीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
1: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
0: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
1: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
2: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
4: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजने को हैं। अब मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मीडियम वेव पर शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, सायंकालीन सभा हमारी अब आरंभ होती है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त के गाने से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म शागिर्द से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं पलक मुच्छल का गाया फिल्म प्रेम रतन धन पायो का गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है और रचना भी रविंद्र जैन की है।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युव वाणी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: इमेजिन यू आर ट्रैप्ड समवेयर एंड यू मैनेज टू मेक अ कॉल। डोंट पैनिक एंड स्टार्ट गिविंग अ लॉन्ग स्टोरी। रिमेंबर फोर थिंग्स: वेयर आर यू, व्हाट हैपेंड, हाउ मेनी पीपल नीड हेल्प, एंड व्हाट इज द इमीडिएट डेंजर।
6: लेट्स सीक एन एग्जांपल। अंजलि, आई एम नियर द रेलवे ब्रिज, ओके? द रोड इज फ्लडेड, दे थ्री पीपल आर विद मी, the water is rising and we cannot move. That's much more useful to rescuers than simply saying, please help, we are stuck.
5: Exactly. And that's why every one of us should know basic emergency information.

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ाना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। यहां दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अब करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेड कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा आपके

0: चारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं बताइए।
1: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। साथ ही ट्रस्ट में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 374 अंक गिरकर 76,570 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 141 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम होगा रात 9:30 बजे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7:31 पर बोलते नगमे कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। वाचन सर होगा नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे प्रियंका मलिक का ख्याल गायन। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। भारत और हांगकांग के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:31 से। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 बजे से और ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह से की गई बातचीत, मत्स्य पालन हेतु आवश्यक जानकारी। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर योगांतर पांडे की वार्ता, बच्चों में न्यूमोनिया कारण लक्षण और उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन सुनिए सुबह 7:30 बजे। गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 12:15 बजे। नमस्कार प्रयागराज, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में विनीता मिश्र के गाए भजन और गीत सुनिए सुबह 9:50 पर। हरिनाथ सुमन मौर्य, सुशीला सिंह और सूरज कुशवाहा के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 10:30 बजे। 11:30 बजे बोलते नगमे कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा। वाचन सुर होगा नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। श्रोता अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में। इसका प्रसारण हम करेंगे दोपहर 12:30 बजे, प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी शोभा शुक्ला की वार्ता, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महात्म्य। एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा दिन में 2:30

0: बजे। युवा साथियों का कार्यक्रम रोज की तरह युववाणी शाम 5:15 बजे होगा और ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर शाम 6:30 बजे। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। रक्तदान तकलीफ दे नहीं है, इसे देने में समय भी नहीं लगता। इससे किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है, वो व्यक्ति आपका अपना भी तो हो सकता है। कृपया रक्तदान करें, रक्तदान महादान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान सवेसरों में। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: बार हुआ तुम इतने दिन थी कहां, मैं ढूंढता ही रहा
0: कहां
1: कभली।

0: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
1: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
2: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दिवसीयायां भारत यात्रायां भविष्यति। भ्रमणावधौ सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां समग्र विषयेषु अपि च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयाणां विषयेषु च चर्चां करिष्यति। प्रधानमन्त्री डी वेवर इत्येषः भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समन्वयस्य व्यावसायिक कार्यक्रमे मुख्य भाषणम् अपि प्रदास्यति। सः मुम्बई नगरम् अपि गमिष्यति, यत्र सः वज्रस्य, नौकाश्रयस्य, रसद इत्यस्य च क्षेत्रैः सह विविधैः सहभागिभिः सह वार्तां करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् इयं यात्रा भारत बेल्जियम सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् अवसरं प्रदास्यति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः श्वः आरभ्य शनिवासर पर्यन्तं यूक्रेन पोलैंड देशयोः त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। डॉ जयशंकरः यूक्रेन देशस्य समकक्षेण आंड्री सिबिहा इत्यनेन, पोलैंड देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा विदेशमन्त्रिणा च राडोस्लाव सिरोस्की इत्यनेन च सह द्वैपाक्षिक विमर्शं करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् इयं यात्रा द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् वर्धयितुं केन्द्रिता भविष्यति, अथ च क्षेत्रीय विकास विषयेषु परस्पर हितानां विषयेषु च विचाराणाम् आदान प्रदानस्य अवसरमपि प्रदास्यति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य मध्याह्ने पूर्वी मध्य प्रदेशे अतिप्रबल वृष्ट्यै रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य किदाम्बी श्रीकान्तः, तन्वी शर्मा च अद्य चाइना ओपन प्रतिस्पर्धायाः द्वितीय चक्रे प्रविष्टवन्तौ। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, पंचायत घर।
2: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
4: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: राम राम।
1: हम कही भानु भैया,
0: हाँ
1: देव राजा देखा तनिक देर से आए, लेकिन भाई झमाझम बारिश होती है, ठीक बा?
0: बिल्कुल भैया, देखा बारिश तो ऐसा होत बटे कि जौन किसान भैया रहे धाने खेती करे हैं
1: भाई उनके लिए तो भाई देखा बढ़िया बा, नीक बा, फायदा ही फायदा बा।
0: लेकिन जौन भैया देखा सब्जी बोए यहाँ और जौन तमाम फसल आए ओकरे लिए
1: लगाए हुई है या
0: चिंताजनक बा,
1: चिंताजनक बा। कुल मिला के देखा एक ही काम करे बा खेती बाड़ी में भाई, देखा कि पानी निकासी के जौन बा प्रबंधन बा
0: पहले से
1: ठीक रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो ठीक रहा है, और कीटनाशक कोशिश करे भाई, देखा कि नमी ज्यादा हो जाता फफू जैसे रोग लग जाता। अपने भैया बड़े अभी जाना थे और वैज्ञानिक भैया बड़े ये सलाह देते हैं कि भाई जल निकासी के बेहतर प्रबंधन अपन करे रहा है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: नाली
0: बिल्कुल।
1: बनाए रहा है, यह कि पानी टिकाई ना पावे। और जहाँ तक जान बताए कि धान के लिए तो भाई फायदा ही फायदा।
0: बिल्कुल भाई, लेकिन भैया देखा धानों में का ही ध्यान रखे बैठे कि जो नहाए ज्यादा पानी ना हो, नहीं तो फिर ऊहो में समस्या हो सकता। हमारे खेत में भैया देखा पानी बहुत भर गया रहा, समझा कि पूरा धान डूबे की अवस्था आई रही, लेकिन उनका फिर जो नहाए पंप लगाए के पानी उनका कम किन गया है, तो ताकि जो ना हमारे धान सुरक्षित रहे।
1: हाँ, जहाँ जहाँ भाई थोड़ा सा नीचे खेत बाट,
0: बिल्कुल भैया बिल्कुल,
1: वहाँ के लिए भाई थोड़ा सा एक समस्या राहत है। और हम कही कि भैया देखा, हम पंच भैया ने हमेशा ही समझी थी कि भाई खेती में

0: पैसा कैसे ज्यादा से ज्यादा मिले
1: मिले
0: भाई, आमदनी बढ़े
1: बिल्कुल, तो, और साथे साथे भैया खर्च कम हो,
0: खर्च कम हो तो भाई खर्च तब कम हो, जैसे वैज्ञानिक भैया अरे बताता है कि लागत अगर कम हो भाई, देखे खाद लागत यही होते खाद पानी और भाई कीटनाशक जो हम
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो अभी लागत अगर कम हो तो निश्चित बाकी भाई देखा पैसा बची
1: बची,
0: अब पैसा बची तो वो आगे जाके बढ़ा, अब लागत कैसे बचे कम करी तो एके लिए देखा जरूरी बा कि रसायन के हम सबसे कम उपयोग करी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो रसायन अगर उर्वरक के हम लोग कम उपयोग करवे तो लागत बची। दूसरा सबसे अच्छा तरीका बा कि आपन देसी खाद,
1: देसी खाद बिल्कुल भैया
0: ठीक है, और देसी खाद भैया आप कहा है कि मतलब बा कि अगर वह पारंपरिक तरीके से आज भी अगर खेती शुरू हो जाए तो भाई लागत कम हो जाए, और सबसे बड़ी चीज माटी के संरचना ठीक हो जाए,
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल,
0: और जहां भाई देसी खाद से माटी की संरचना ठीक भाई, और उसे एक तो सबसे बड़ी बात भी जितना भी कीट बेरामियां ये कम हो गई हैं,
1: बिल्कुल भैया देखा जब हम रासायनिक प्रयोग करी थी ना तो ओके उपज पे जो असर पड़ा थे और कहूँ ना कहूँ हमारे स्वास्थ्य में देखा ओके प्रभाव आइन जाते,
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, जब पौधों पे असर पड़ी और तो उसे जो उन पैदा हुई वो तो पड़बे करी। सबसे बड़ी चीज बा कि ई जो अगर हम देसी खाद के नियमित अगर इस्तेमाल करते ही तो तमाम तरह की जो बेरामियां हैं उसे आप मुक्त हो जाओ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: फिर कीटनाशक के भी जो उन पैसा खर्चा करता उसे बच जाएगा,
1: कुल कहा है कि
0: तीसरा चीज बा नमी बराबर बनी रही तो भाई संसाधन जो पानी के बा वो सब बेहतर रही,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: कहा है कि मतलब बा कि रासायनिक कम करा और देसी खाद पे ज्यादा
1: ज्यादा,
0: तो देसी खाद में भाई देखा सबसे बड़ी चीज होता है गोबर के खाद, तो बात हम सब करवाई करी थी, एक कहावत है भाई बर्मी कंपोस्ट खाद, दिखाई अंग्रेजी शब्द एक बात के केचुआ के खाद,
1: बिल्कुल
0: केचुआ के खाद भाई देखा सब जाना थी,
1: और भैया देखा ये मौसम में जो ना है केचुआ के खाद बनावा बहुत आसान भी होते और बढ़िया से हो बना थे, तो
0: अब बढ़िया से बना था, और जब केचुआ भाई देखा केचुआ के खेत जब मिट्टी भाई भुरभुरी ज्यादा से ज्यादा अगर आप भाई केचुआ खाद इस्तेमाल करता खेत में केचुआ ना है तो बहुत सारी चीज मिट्टी अपने आप उर्वरा हो जाती, अब इतना तक तो लागत बचा लिया, आए भाई जब ऐसे चीज उगा तो समझ लो फिर देसी उगा, और देसी चीज की याद देखा बाजार में मांग के
1: बहुत भैया बहुत
0: मांगबा, और जौन पैसा मांगबा वो मिला
1: वो मांगा कीमत पे भैया देखा लोग देख तैयार रहा
0: अब जेब गरुआत बा, ठीक बा भैया, हम कहे का मतलब बा कि देसी खाद से माटी के सेहत जौन पैदा हुई वो भी सेहतमंद,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो भाई पैदावार भी सेहतमंद और खेत भी
1: सेहतमंद,
0: तो भाई जब सेहत सेहत के बात होती बात ये समय चलते बा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ये समय भाई देखा यही उद्देश्य राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चलावा जात बा कि भी हर मनई अपने सब जागरूक होई पोषण युक्त अगर भोजन करब
1: बिल्कुल,
0: तो भाई कौनो बेरामी ना आई, तो भाई 1 से 7 सितंबर तक हर साल मनावा जाता है, आज एक दूसरा दिन बाट है, एक मुख्य उद्देश्य यही बा
1: बोला भैया कि एका
0: एक मुख्य उद्देश्य बोला भैया यह बा कि लोग अपने खान पान के जौन भी पोषण में थाली में हो उससे जागरूक रहें और पोषण संतुलित आहार ले हैं तो जो डॉक्टर से
1: कम जो ना है सामना
0: मुलाकात हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक बा, ठीक रही है तंदुरुस्त रही है बरियार रही है, और जब बरियार रही है तो खेती बाड़ी भी ठीक रही और जीवन के गाड़ी भी दौड़त रही,
1: बिल्कुल भैया, ओकरे खातिर किसान भैया के चाहिए कि अपने खान पान में ज्यादा से ज्यादा जो है मोटा अनाज के प्रयोग करें, प्रोटीन वाली चीज लें, फल और हरी सब्जी लें, दूध दही के इस्तेमाल ज्यादा करें, ऐसे कि जब स्वस्थ भोजन रही तो स्वस्थ शरीर और रही,
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे खाए अन्न वैसे रहा
1: मन,
0: तो देखा भोला भैया अब बात बतकई तो होते रही तनी के जब तक पंचायती में
1: ढोल मजीरा ना बजे तो भी मन नहीं जो
0: ना लेके आया भैया, देखा
1: भैया देखा आज अपने पंचायती में राम प्रसाद और साथी के लोकगीत है विकास गीत, साथे साथे नीति वचन सुनवावा जाए और एक बातचीत बाटे भैया देखा डेयरी उद्योग पे वो बातचीत सुनवावा जाए, मुरा कहे कि पहले लोकगीत हो तो फिर आगे सब बात बात कही हो,
0: बिल्कुल सुनवा
1: भैया राम प्रसाद साथी के विकास गीत।

0: ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा। सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हाँ भैया, तो बोला भैया, ए रहन राम प्रसाद एवं संघातिन के विकास गीत सुनेगा, साथे साथे संदेश सुनेगा।
2: बिल्कुल भैया।
1: तो भाई देखा, एक बात हम सब करत रहे कि भाई देखा बारिश, भाई बारिश अगर ज्यादा बरस गया
2: तब नुकसान बा,
1: और सूखा हो गया
2: तब नुकसान,
1: तब नुकसान बा।
2: देखा भैया,
1: ऐसे बचाई के लिए का करे, तो भाई एक और अच्छा उपाय बा।
2: का भैया?
1: कि भाई फसल के बीमा कराई ले।
2: बिल्कुल एकदम भैया, जो ना है आप बहुत सही बात बताया आज। एका भैया, किसान भैया इतना ही समझें कि जितना खेती के हर काम जरूरी बा, उतना ही किसान फसल बीमा योजना भी एका जाना समझब और एका कराओ
1: जरूरी बात है।
2: बिल्कुल।
1: काहे से भाई देखा, कौनो प्राकृतिक आपदा आई गई, ठीक बा, ओलावृष्टि हो गया,
2: सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया,
1: या बारिश ज्यादा हो गई,
2: या कोनो भी कीट पतंगा के कारण जो ना फसल नष्ट हो गया,
1: तो नुकसान ज्यादा भा, तो भाई अगर बीमा रही तो
2: नुकसान के
1: भरपाई
2: मिल
1: हो जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ज्यादा नुकसान ना हो।
2: तो इसका भैया पंच भैया प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना एक ही जो ना है जानकारी, या अपने जो ना है नज़दीकी जो भी सेवा केंद्र हैं हुआ जाए के एक समझ लें और कैसे आवेदन करें। एक बारे में जितना भी प्रक्रिया बहुत सरल यह है, जाए के आ जाए करावा एक हम काबे में तनको विलम्ब न करें।
1: अब मान ले कौन नुकसान होएगा, जे भैया रे मान ले बीमा कराए हैं, तो भाई वो सूचना दई के हेल्पलाइन नंबर पे ही बताए जगत इनकी, भाई देखा हमारा नुकसान हो गया भाई, और नुकसान हो गया भाई देखा जितना हो फिर आकलन किए वही हिसाब से
2: उनका जो ना मिली मुआवजा
1: दीन जाए। तो कहे का मतलब बा कि ई सबसे जरूरी बा, और आपन थोड़ा सा भी जागरूक रहबा तो नुकसान ज्यादा ना हो पाए। तो भाई देखा कि बात होत रही कि आज दिन आटे बुधवार।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और बुधवार भाई नीति वचन के दिन होते, तो सीताराम सिंह भैया देखा का कुछ बतावत है अपने नीति वचन के जरिए, एक तुहु सुना और पंच भैया भी सुने।
2: बिल्कुल भैया, देखा नीति वचन बहुत जरूरी बटे, और समाज में नीति वचन से नया नया जो नहाए संदेश मिलत है, एक किसान भैया सुनाए और गुनाए।
3: मानव का जीवन सुखी रहे, समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे, इस निमित्त मनीषियों महापुरुषों एवं विद्वत जनों ने समय समय पर उपदेश एवं प्रवचन के माध्यम से मार्गदर्शन किया है। महापुरुषों की ऐसी अमृतवाणी अनमोल वचन यदि मनुष्य अपने आचरण में उतारे तो निश्चित ही उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो सकता है। समाज में संस्कार पैदा करने वाले ऐसे नीति वचन मानव को सत्कर्म करने एवं सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। महापुरुषों ने जीवन में कर्म को सर्वाधिक महत्व दिया है। कर्म से ही

मनुष्य का भाग्य बनता है। कर्म के बल पर ही मनुष्य असंभव को संभव बना सकता है। रामचरितमानस के रचनाकार महान संत तुलसीदास ने मानस में एक चौपाई के माध्यम से कर्म की महत्ता का उल्लेख किया है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। अर्थात जो जैसा कार्य करता है उसे के अनुसार उसे परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए सदा सत्कर्म ही करना चाहिए जिससे सुखद परिणाम मिले। इच्छित फल के लिए सत्कर्म करना ही एकमात्र उपाय है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाहीं। भाग्य के भरोसे बैठना कायरता है। संत ने सचेत किया है, कायर के मन एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। उत्तर भारत के एक महान संत कबीर ने भी कर्म को प्रधानता दिया है। आपने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि कर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो करो सो पूजा, कहें कबीर सुनो भाई संतो, आन उपाय न दूजा। संत ने संकेत किया है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कर्म के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। अपने समय के महान कवि एवं संत रहीमदास ने समय से कार्य करने की प्रेरणा देते हुए समय के मूल्य को दर्शाते हुए कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। समय से अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य को सुख शांति प्रदान कर सकता है। प्राचीन भारत के महान विचारक आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य अपने कर्म से ही महान बनता है। जन्म से कोई महान नहीं होता। बिना फल की कामना किए सदैव कर्म करते रहना चाहिए। आचार्य का कहना है कि अच्छा कार्य करने से देर सवेर अच्छा परिणाम अवश्य मिलता है। बुरा कार्य आज नहीं तो कल हमें गर्त में अवश्य गिराता है। आचार्य का कहना है कि यदि हमारा लक्ष्य सकारात्मक होगा तो हमारा कार्य समाज के लिए उदाहरण होगा और दूसरों को प्रेरणा प्रदान करेगा। आचार्य का कहना है कि हमें अपने कर्म का प्रचार करने से बचते हुए सदा कर्म करते रहना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कर्म की प्रेरणा दिया है। आपका कहना है कि सफल व्यक्ति सदैव लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। वे गलतियां करते हैं लेकिन कर्म छोड़ने की बजाय लगातार प्रयास में जुटे रहते हैं और अंत में सफलता उन्हें मिलती ही है, साथ में संतुष्ट भी मिलती है। गांधी जी ने आगे कहा कि हमेशा अपने विचारों शब्दों तर्क में पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखकर शुद्ध विचार से कार्य करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने अपने उपदेश में कहा है कि जिसमें धीरज है और अपनी मेहनत से नहीं घबराता, सफलता उसी की दासी है। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार यदि जीवन में एक बार किसी कार्य को करने का संकल्प ले लिया तो फिर पीछे मुड़कर न देखें। बार बार पीछे मुड़कर देखने वाले इतिहास नहीं बना पाते। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लोगों को कर्म की प्रेरणा देते हुए निराश न होते हुए सदैव सत्कर्म करते रहने का आह्वान किया है। मंजिल दूर नहीं अपने गम का बोझा ढोने वाले, जागरूक की जय निश्चित है हार चुके सोने वाले। विश्वविख्यात संत और भारतीय संस्कृति के पुरोधा स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म के बल पर आसमान की ऊंचाई नापने वाले पहाड़ को भी काटा जा सकता है, अर्थात असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अपने समय के महान विचारक और दार्शनिक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है

0: तो उसे छोटे से छोटे कार्य से भी परहेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि स्वावलंबी ही श्रेष्ठ होता है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि जो लोग आधे अधूरे मन से कोई कार्य करते हैं उन्हें आधी अधूरी और खोखली सफलता मिलती है। इससे समाज का भला होने की जगह नुकसान होता है। पूरे मन से ही कोई कार्य किया जाना चाहिए, तभी मनुष्य को जीवन में सफलता मिलती है। कहा गया है कि जो अपने विकास के लिए प्रयास नहीं करता, ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं करते। खुदा उस शख्स की हालत बदल बिल्कुल नहीं सकता जो खुद हालत बदलने की कभी कोशिश नहीं करते। सिख धर्म के महान गुरु अंगद देव महाराज ने कहा था कि शरीर के अंग थक जाते हैं, उनकी एक सीमा होती है, पर मन का संकल्प कभी नहीं थकता। वह हर पल जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। यदि व्यक्ति मन में संकल्प ले ले तो उसके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि कुछ कहने की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए दुनिया में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। जिसके मन में कुछ करने का संकल्प है वह सफलता अवश्य पाता है। विद्वानों का मत है कि किसी कार्य को करने के पहले सोचना बुद्धिमत्ता, बीच में सोचना सतर्कता और बाद में सोचना मूर्खता है। मनुष्य को ईश्वर की इच्छा समझकर सत्कर्म करने का संकल्प धारण करना चाहिए और पूरे मन से कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा है, अर्थात कर्तव्य पर ही मेरा अधिकार है, फल कर्तव्य के ऊपर निर्भर है। इसलिए फल की चिंता किए बिना सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। भारत के महान ऋषियों मुनियों ने भी चैरवेति का मंत्र दिया है, अर्थात चलते रहो चलते रहो। चलते रहना सदैव सत्कर्म की ओर बढ़ते रहने का संकेत है। प्रकृति भी हमें सदैव संकल्पित होकर कार्य करते रहने की प्रेरणा देती है। यदि हमें जीवन में कुछ पाना है, समाज को कुछ अच्छा देना है, तो सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए। इसका आशय यही है कि हमें अपने उत्तरदायित्व को पूरे मन से निभाना चाहिए। कहा गया है, सूरज चलता चांद डोलता धरती डोल रही है, हवा चल रही उड़ती चिड़िया चींची बोल रही है, जागो उठो बढ़ो आगे कर्म सिद्धि दाता है, ऋषि मुनियों संतों की बाड़ी अमृत घोल रही है, अमृत घोल रही है।
1: तो भोला भैया,
2: हाँ भैया,
1: ये रहे भाई देखा सीताराम सिंह भैया, कितना नीक नीक बात बताएं। और निश्चित बाकी पंच भैया, अरे अगर गुनिया बुनिया जीवन में आत्मसात करी हैं तो भाई देखा परिवार ठीक रही, समाज ठीक रही,
2: बिल्कुल
1: भी आओ भाई राष्ट्र भी अपने सही दिशा में चल। तो भाई देखा एक बात होते कि खेती तो हम सब करते ही, बारी भी करते ही, भाई गोरु बछरुआ भी रखे ही, तो गोरु बछरुआ आज यह भी ना जरूरी बा कि भाई देखा ओके कई उपयोग बा,
2: बिल्कुल
1: भाई खाद तो मिल भाई करत बा। आज जौन बा दूध और दूध से जौन बना दूसर जौन उत्पाद है वो बाजार में बड़ी संख्या में भाई देखा
2: मांग बा, बिल्कुल भैया
1: ठीक बा। तो अब यह एक कैसे खेती के साथे साथे अगर ये शुरू की जाए वही प्रमुख बा डेयरी उद्योग,
2: बिल्कुल भैया।
1: भाई घरे घरे जाता है दूध ले आए, तो आज देखा यही विषय पे एक ठो चर्चा बा डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी। अवधेश चंद्र यादव से चंजीत यादव भैया का बतियाना है, एक तुहु सुनाओ पंच भैया भी सुना।
2: बिल्कुल भैया सुनवाए दें।
3: तरह तरह से भाई पशुपालन करते हैं और पशुओं के पाल के आप चाहते हैं भैया कि डेयरी उद्योग चलाए के

0: उसी अच्छा फ़ायदा लिया जाए। तो भाई देखा, एक आधुनिक तकनीक के रूप में जो जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका के बात की जाते डेयरी उद्योग में, तो भाई जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका का बाटे डेयरी उद्योग में जोने से आप सबके अच्छा फायदा हो सके। देखा, ये विषय पे जानकारी देख लिए आज मेरे साथे बाटे अवधेश चंद भैया, जो उनकी ई कुल के जानकार बाटे, भैया आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे। और हम आपसे जानना चाहब भैया कि ई डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी के का भूमिका बाटे। एमें भैया सबसे पहले तो हम जैव प्रौद्योगिकी के मतलब जानना चाहब कि का मतलब है एकर, जौन से किसान भाई जान के एका उपयोग में लावें।
1: जैव प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जैव दूसरा प्रौद्योगिकी। जैव का अर्थ जीव विज्ञान से है और प्रौद्योगिकी मतलब जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों पर हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैव
0: अच्छा,
1: प्रौद्योगिकी में लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे सूक्ष्म जीव, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, ईस्ट, कोसा, चाहे वो जंतु कोसा हो और चाहे पादप कोसा हो, चाहे वो कोसा के कुछ अवयव हो, का उपयोग करके हम मानव के लिए अच्छे उत्पाद प्राप्त करते हैं।
0: जी
1: जैव प्रौद्योगिकी में कुछ भाषाओं का समावेश होता है,
0: जी जी
1: जैसे जैव रासायनिकी, सूक्ष्म विज्ञान, अभियांत्रिकी विज्ञान, जेनेटिक इंजीनियरिंग या अनुवांशिकी अभियांत्रिकी।
0: जी
1: जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीवों या जो जंतु या कोशिकाएं हैं उनमें जेनेटिक स्तर या अनुवांशिकी स्तर पे कुछ परिवर्तन करके उसमें सुधार करके उच्च गुणवत्ता व अधिक मात्रा में उपयोगी उत्पाद और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी
1: जेनेटिक स्तर या अनुवांशिकी परिवर्तन का अर्थ है जेनेटिक पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए में बदलाव लाकर मनचाहे उत्पाद को हम प्राप्त कर सकते हैं।
0: काहे मतलब भैया, ये कुल वैज्ञानिक तरीका है, आधुनिक तरीका है, जोने के अगर इस्तेमाल करें किसान भाई तो निश्चित तौर पे भाई इसी जोन डेयरी उद्योग में उनमें गुणवत्ता भी आए और उत्पादन भी बढ़े, और अगर उत्पादन बढ़े तो किसान भाई के लाभ हुए।
1: अब जैसे हम सब बताना चाहेंगे कि डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग कर
0: हाँ
1: सकते
0: हाँ
1: हैं,
0: बिल्कुल बताओ भैया।
1: इससे हम लीव स्टॉक, लीव स्टॉक मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो है उनमें हम अनुवांशिकी स्तर पर विकसित मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उन्हें विकसित कर सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब अच्छी नस्ल एक तरह से तैयार की जा
1: हाँ
0: सके
1: हाँ
0: थे।
1: हाँ
0: जी
1: इससे जो हमारे लीव स्टॉक पैदा होंगे जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उनमें बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी,
0: जी
1: उनकी उच्च पोषण क्षमता होगी। उच्च पोषण क्षमता का मतलब उनको हम अगर कोई थोड़ा भी भोजन देंगे तो उनमें जो न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व होते हैं
0: जी।
1: उनको अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा होगी।
0: का मतलब भैया, एक तो नस्ल में सुधार होए और दूसरे वो जौन की भाई पोषक तत्व की बात की जाती है कि पशुओं के पोषक तत्व दिया जाए, वही पोषक तत्व उनमें से जितना भी पोषक तत्व उनका दिया जाए भोजन के रूप में, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अवशोषित कर ले ही और ओकर उपयोग जो ना है उत्पादन में वो कर सकते। और
1: अच्छा,
0: भैया
1: कुछ उच्च प्रजनन क्षमता भी उनमें रहेगी। कुछ
0: अच्छा
1: हम जानवरों को देखते हैं कि उनमें प्रजनन क्षमता की कमी से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो
0: जी।
1: उनके लिए सरोगेट मदर का हम उपयोग करते हैं।
0: अच्छा भैया, ये का होता है, ये कौन विशेष तकनीक में का जोने से भाई कि जोन जनन क्षमता हो तो उनमें वृद्धि हो जाए, और अगर जनन क्षमता में वृद्धि हो तो निश्चित तौर पर उत्पादन भी बढ़े।
1: हाँ, इसमें किसी उच्च गुणवत्ता वाले जानवर विदेशों से जो हैं
0: हाँ।
1: उनको ला कर मतलब उनके स्पर्म या जो ओवम को यहाँ पे हम फर्टिलाइज करके यहाँ की गांव जानवरों में
0: जी।
1: कोख में हम जो रखते हैं उसे सरगोट मदर, हिंदी में सरगोट मदर का मतलब किराए की माँ या किराए की कोख
0: अच्छा, काहे
1: कहा
0: मतलब
1: जाता
0: भैया
1: है।
0: कि नस्ल सुधार के लिए
1: हाँ
0: जौन भाई कुछ उच्च गुणवत्ता के नस्ल वाले भाई जानवर बाटे उन्हन
1: जैसे जो
0: के
1: जानवर बाँझ हैं, बंद
0: जी
1: हैं,
0: हाँ,
1: उन लाइलाज हैं, उनके लिए है वे जो है सरगोट मदर का विकल्प एक है।
0: मतलब नर और मादा युग्मक के निषेचन कराए के
1: दूसरे
0: ऐसन
1: में दूसरे
0: जानवरन में स्थापित करके उसी जौन है बच्चा पैदा करेगी भैया।
1: हाँ।
0: अच्छा, और
1: अच्छा,
0: भैया
1: इससे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो हम जानवर या लीव स्टॉक पैदा करते हैं वो काफ़ी विकसित मतलब हिष्ट पुष्ट रहेंगे, मांसपेशी और स्वस्थ और सुडौल मजबूत रहेंगे। दुग्ध उत्पादन इससे अच्छा होता है
0: जी
1: और उच्च स्तरीय उत्पादन, दूध की पोषण क्षमता विकसित करना मतलब कि दूधों

0: के अवयव, जैसे प्रोटीन है, लैक्टोज है, फैट है,
1: जी
0: उसको हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को वसा की कमी होती है, तो उसके लिए वसा हम बढ़ा सकते हैं। जैसे गाय में वसा कम होती है, भैंस में ज़्यादा, तो
1: जी
0: उनके बीच की जीन्स को लेके हम दोनों के बीच की वसा, मतलब गाय में वसा कुछ बढ़ा सकते हैं और
1: जी
0: भैंस की वसा कुछ घटा सकते हैं। या तो आपने सुना होगा कि किसी किसी को लैक्टोज नहीं पचता है,
1: जी जी
0: तो उनके लिए हम दूध से लैक्टोज रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे रोगियों को हम लैक्टोज, या जो होते हैं बीमार, उनको हम दे सकते
1: का
0: हैं।
1: मतलब यह कि दूध के गुणवत्ता उनमें जवन पोषक तत्व तो होते हैं ओकर मात्रा घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं इस तकनीक के इस्तेमाल द्वारा।
0: इस तकनीक का एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि दूध की पाचकता बढ़ा सकते हैं हम।
1: अच्छा।
0: दूध फर्मेंटेटेड होगा तो ज़्यादा बढ़िया से पचता है। दूध में एक और इसका अनुप्रयोग है कि औषधि व मौखिक टीका द्रव का उत्पादन करना।
1: अच्छा। ये भैया का होता है।
0: औषधि का मतलब, दूध में हम शुरू से मतलब जीन्स कुछ ऐसे लाते हैं बैक्टीरिया सूक्ष्मजीवों से, जो एंटीबायोटिक और एंटी फंगल और एंटीवायरल उत्पादों को उत्पन्न करते हैं। उनको हम इसमें जीन्स लाएंगे, जो ट्रांसजेनिक हम बनाते हैं पशु जो है,
1: जी
0: जिससे उनमें जो है दूध में खुद ब खुद औषधि एंटीबायोटिक उसमें आते रहेंगे और हमें मौखिक टीका द्रव का हमें मिलता रहेगा।
1: का मतलब दूध में जवन आप बतावत बाटे भैया एंटी फंगल और एंटीवायरल और तरह तरह के जवन संक्रमण के डर रहा थे वही डर के भी खत्म किया जा सकता है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: एक चीज़ भैया और बताओ जैसे ट्रांसजेनिक के बात आप करते बाटे या जैसे किड़वन के बात की जाते हैं ये का होते करे विषय में थोड़ा फरिया बता।
0: बताना चाहेंगे कि ट्रांसजेनिक वे जानवर होते हैं
1: जी
0: जिनमें दो जातियों के जीन्स को लेकर संकर करके एक नया प्रकार के लक्षणों का एक जानवर पैदा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले, सबसे पहले एक ट्रांसजेनिक गाय बनाई गई
1: जी
0: जिसमें ह्यूमंस मतलब आदमी के जीन्स को लिया गया
1: जी
0: जो लैक्टोज बनाने के लिए उत्तरदायी था। अब इस गाय में के दूध में लैक्टोज, जो कि केवल मानवीय दूधों में ही पाया जाता है,
1: जी
0: इसके दूध में भी पाया जाने लगा, जिसका उपयोग हम शिशुओं को दूध पिलाने के लिए करते हैं। जो माएँ अपना दूध नहीं पिलाना चाहती अपने शिशु को, उनके लिए यह दूध उपयोगी होता है।
1: का मतलब कि भैया जैसे माँ के दूध होते वही तरह के
0: हाँ सेम
1: दूध
0: सेम
1: जानवर से प्राप्त किया जा सकता
0: हाँ
1: है
0: सेम सेम
1: और
0: प्राप्त।
1: ओकर इस्तेमाल जो है शिशुओं के पियावे में किया जा सकता है। अच्छा।
0: अच्छा, एक दूसरा ट्रांसजेनिक आपने जैसे आप पूछा, बताना चाहेंगे हम कि गाय बनाई गई जिसमें लैक्टोफेरिंग और लाइसोजाइम, जो कि एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल हैं,
1: अच्छा।
0: ये दूध में हमारे पाए जाएंगे, जिनको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक दूसरी ट्रांसजेनिक गाय बनाई गई जिसमें ब्लड डिसऑर्डर को दूर करने की क्षमता थी।
1: अच्छा। मतलब जवन भाई खून में जवन कमी हो जाता है वही कमी के भी दूर करे के क्षमता ओकरे जवन उत्पाद वहीं ओमे रहे। एक चीज़ और बताऊँ भैया जैसे ये पाश्चुरीकृत दूध की बात कही जाते है एकरे विषय में बताऊँ ये का बा इसी का किसान भाई के लाभ हुए।
0: पाश्चुरीकृत दूध का मतलब कि दूध में से सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को हटाना।
1: अच्छा।
0: तो पाश्चुरीकृत में जो है हम तापमान के द्वारा सूक्ष्म जीवों को मारते हैं।
1: अच्छा।
0: तो ये तीन प्रकार से होता है, इसके तीन टाइप होते हैं। निम्न ताप पे एक होता है, जैसे 62.8 सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए हम रखते हैं।
1: 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक दूध के रखा जाए।
0: हाँ, गर्म करते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं मर जाते हैं।
1: अच्छा।
0: इसके बाद अगर हम तापमान और बढ़ा देंगे, लेकिन टाइम उसी हिसाब से कम करेंगे, जैसे 70 से 71.7 सेंटीग्रेड जब बढ़ाएंगे, तो टाइम हमें 10 से 15 सेकंड करना होगा।
1: तो इस तरह से भाई दूध पाश्चुरीकृत हो जाए और हमें जो सूक्ष्म जीव बहुत नुकसान करते हैं वो जो है ख़त्म हो जाए ही तो दूध की गुणवत्ता बढ़ जाए। आप भैया आएँ और इतना बढ़िया जानकारी दें सब जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
1: तो
2: भैया।
1: भोला भैया तो ये भैया रहे अवधेश चंद्र यादव
2: बिल्कुल
1: से चंजीत यादव के बातचीत रही कि डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी के काका
2: उपयोगिता बाटे,
1: उपयोगिता बाटे भूमिका
2: बहुत
1: का
2: बढ़िया,
1: बाटे।
2: बहुत बढ़िया तरीके से बताएं भैया। जौन भी भैया देखा डेयरी उद्योग से लगा है, उनके लिए ये जानकारी बहुत लाभप्रद रही हुई। हम तो कहे भैया देखा बात बत कही बहुत हुई गए, हम कहे ठीक गौ नहीं और हुई जात, तो फिर जो ना है आगे बातचीत हो।
1: ए भोला भाई जब मन करत बात

0: तो भाई काहे तनिक देर काहे करता।
1: तो हमका भैया देखा राम प्रसाद और साथी के जो ना है गावा एक ठी जो ना है खिमटा लोकगीत है, आवा का सुन लीन जाए फिर
0: सुनवाए
1: बात कीन जाए।

0: तो
1: देखा
0: भैया
1: भैया राम प्रसाद और साथी के कितना बढ़िया लोकगीत रहा, और सुन के भैया देखा एकदम खेती किसानी मन इतना ऊर्जा से भर गया है कि जरी खेते में जो ना है एक आध घंटा कुछ और काम धाम देख लीन जाए। लेकिन अब देखा समय हो गया है कि अभी पंच लोगन से विदा लेके, लेकिन ओके पहले जो ना है कहा भैया कि कार्यक्रम कैसन लगा हमार सबके, एक प्रतिक्रिया जरूर दें। ओकरे खातिर हमारे आकाशवाणी के फेसबुक पे और व्हाट्सएप नंबर पे जो ना है अपन बात हमसे सबसे साझा कर सकत हैं कि कैसा लगा का सुनाई चाहत हैं। ओकरे लिए भैया नंबर लिखें 800-4926-250। हम कहे भैया एक दे नंबर वो बता दे 800-4926-250। तो भैया देखा मौसम के ध्यान रखत भाई, अपन ध्यान रखा, अपने पशुअन के ध्यान रखा और अपन खेती बाड़ी के जो ना ध्यान रखा। तो पंचों
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: सितारों से बच्चों की मुस्कुराहट समाती है बाल संग बाल गोपाल और नन्ही दुनिया में।
1: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
0: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
1: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: कभी वर्ड एंड रूट, कभी कैडल रूट, कभी पेड रूट।
1: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
2: पहली बार
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारंभ, कहा प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को मिलेगा उनका अधिकार। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा होंगे अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ। गोविंद देव गिरी को बनाया गया ट्रस्ट का महासचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। 13 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाएंगी 25 वर्षों के सेवा काल की उपलब्धियां। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी, मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आउटसोर्स कर्मियों को उनका अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में तय हुई उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा इन्हीं कार्मिकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मी हैं। इस नई व्यवस्था में 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आकस्मिक इलाज के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हर एक जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ दिया है।
1: डबल इंजन की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लागू, उसे तकनीक दिया, उसे बाजार दिया और उसे मार्केट के साथ जोड़ने का काम आज परिणाम हमारे सामने है। कारीगर के हाथ में जो कला थी, जब उसे बाजार दिया गया, बाजार मिला तो उसका हुनर प्रदेश में रोजगार बना, रोजगार बढ़ा तो वही कारीगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी बना।
0: पश्चिमी वायु कमान के पूर्व कमांडर सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को आज अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में अयोध्या की मणिराम दास छावनी में आयोजित ट्रस्ट की बैठक के बाद घोषित की गई। सीईओ ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और श्रीराम मंदिर परिसर से संबंधित प्रमुख परिचालन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए जिम्मेदार होंगे। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉ निर्मला यादव शामिल हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पश्चिमी वायु कमान के पूर्व कमांडर ने ऑपरेशन सिंदूर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
2: एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।

0: उस ऑपरेशन सिंदूर की भूमिका में कमांड करते उस हिजाब को उसके लीडर थे।
1: अंतरिम महासचिव ने बताया कि गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के नए महासचिव होंगे और महेश भागचंद का नए कोषाध्यक्ष होंगे।
0: मैंने इस काम के लिए हमारे श्री गोविंद देवगिरी से प्रार्थना किया, महाराज जी ने उसको स्वीकार कर लिया और आज से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव के पद के पर महाराज जी कार्यरत हैं। महाराज जी के पास में कोषाध्यक्ष का भी दायित्व था तो महाराज जी ने ये कहा कि कोषाध्यक्ष जो है वो महेश भागचंद का, जिसके बारे में मैंने बताया है, वो इस दायित्व का निर्वहन करे। नहीं,
1: श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया था। इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावरे शामिल थे। सीईओ पद के लिए 5,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: एक माह के इस व्यापक अभियान में 13 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास और जन भागीदारी की कहानी समाज के हर वर्ग तक पहुंचाई जाएगी। आशीर्वाद का दिया, 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत, नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, वडनगर से वाराणसी यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, रंगोली राष्ट्र एवं घर घर से राष्ट्र तक, राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज और जन सेवा महाकुंभ इसके प्रमुख कार्यक्रम होंगे। कल अभियान की कार्ययोजना पर उच्च स्तरीय चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर शाम 7 बजे आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम से अभियान की शुरुआत हो। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित परिवार अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन प्रमुख कार्यक्रमों के साथ प्रदेश के ऐतिहासिक और लोकप्रिय स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर नमो सेवा की थीम पर लेजर शो आयोजित किए जाएं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी पर्व को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मथुरा में इस बार जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। वहीं आज वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम मंदिर से श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में जन्मोत्सव के लिए उपहार सामग्री भेज दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पर्व के मद्देनजर बसों और बस स्टेशनों पर सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष अपरिमेय श्याम प्रभु जी ने बताया कि पर्व को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं।
3: तो ये कृष्णा नाइट, इसमें आपको बहुत सारा भगवान का सुंदर श्रृंगार, फूल बंगला, अभिषेक, दूध दही शहद, 1008 तीर्थों के जल से अभिषेक दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक चलने वाला है और इसमें आप सब भगवान का दर्शन पा सकते हैं, इस सेवा को कर सकते हैं और सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है।
1: सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए प्रदेश में विशेष HPV टीकाकरण अभियान कल से 17 सितंबर तक चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित होने वाले इस अभियान के दौरान 14 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ NB सिंह ने पात्र किशोरियों से टीकाकरण कराने की अपील की।
4: 14 से 15 साल के बीच की बच्चियों को HPV वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। ये जो टीका है उनके CS सर्विक्स या बच्चेदानी के कैंसर का बचाव का एकमात्र तरीका है। HPV वैक्सीन का टीका लगवा के अपनी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रखें।
1: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 6 सितंबर

0: तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर, बलिया में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार बाढ़ राहत को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं।
1: जहाँ जहाँ बाढ़ का प्रकोप है उसे निपटने के लिए हमारी सरकार ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को सक्रिय कर रखा है। चित्रकूट मंडल में लगातार मंदाकिनी नदी का प्रवाह बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, वहाँ सतर्क रहने कहा गया है और सभी जो भी जहाँ बाढ़ आई थी सबको रेस्क्यू कर लिया गया है और बाढ़ राहत कार्यक्रम लगातार चल रहा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों को मिलेगा उनका अधिकार। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा होंगे अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ। गोविंद देव गिरी को बनाया गया ट्रस्ट का महासचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। 13 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाएंगी 25 वर्षों के सेवा काल की उपलब्धियां। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे। वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का।

0: بولتے نغمے श्रोताओं नमस्कार, वंदना जी नमस्कार।
1: नमस्कार नेहा जी, और सभी सुनने वाले दोस्तों को भी हमारा नमस्कार।
0: वंदना जी
1: जी,
0: देखिए जरा, ये जो हमारे रिश्ते होते हैं वो एहसासों के आधार पर बुनते चले जाते हैं ना।
1: जी बिल्कुल।
0: कई बार ये जो रिश्ता होता है वो चाहे अपनेपन का हो, इश्क का हो, उसमें होता ये है कि उस रिश्ते में एक व्यक्ति बहुत संजीदा होता है और एक व्यक्ति उस तरह से उस संजीदगी को महसूस नहीं कर रहा होता है। ऐसा हुआ कभी आपको लगा?
1: नेहा जी, जब हम प्रेम के एहसास में हो, उस दौरान जब कभी ऐसी बात आती है कि जब सामने वाले की निगाह में अजनबीपन, हम उसका एक कण भी देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो इतने लंबे अरसे का साथ था वो क्या बेमानी था।
0: अब जरा देखिए इस सुंदर से वाक्य को, जब कत्ल शफाई देखते हैं इसी वाक्य को
1: जी,
0: इतनी सुंदर शब्दों में उन्होंने एक गजल लिख डाली है। किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह।
1: क्या बात है नेहा जी, देखिए मुझे तो ये लगा था कि आप बताएंगे नहीं, पहले सुना देंगे, लेकिन आपने तो रहस्य पर से ही पर्दा उठा दिया है। तो आप क्या कुछ और भी कहेंगे कि किस सीधे गजल पर चले हम लोग?
0: गजल पे पहले चलते हैं, तब बातें करेंगे।
1: चलिए

0: बहुत सुंदर है ना
1: जी।
0: जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी की आवाज इसको और सुकून प्रदान करती है। और मुझे लगता है कि जब कतल शफाई जिन्हें इस गज़ल को लिखा होगा और शेर दर शेर इसको लिखते चले गए होंगे, कैसे सामने वाले के प्रति भी एक

0: सम्मान और वो मनमुटाव का भाव नहीं है। ये इस बात पर मुझे हमेशा ताज्जुब होता है कि ऊपर वाले ने किसी को ऐसा भी हृदय दिया है।
1: जब कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, तो जब किसी ने जिंदगी की तरह किसी को प्यार किया हो तो वो कितना हसास दिल होगा, वो ज्यादा गहराई से उस रिश्ते को महसूस कर रहा होता है, और जिससे हम प्यार कर रहे होते हैं उसने शायद इतने गहरेपन में हमारे इस रिश्ते को नहीं लिया होता है। लेकिन हाँ, कि जब कभी दोनों आमने सामने आते होंगे तो शर्मिंदगी की एक झलक सामने वाले की निगाहों में जरूर गुजर कर जाती होगी।
0: जी, तो आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए।

0: जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी जब इस गज़ल को गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो जब वो कहते हैं कि वो आशना भी मिला अजनबी की तरह। आशना से यहाँ पे मतलब है एक प्रेमी जो मिलता है, जिसको आपने चाहा होता है, वो जब अजनबी की तरह मिलता है, माय गॉड बहुत सुंदर। ये जो हल्के से वाद्य यंत्र इस गज़ल के पीछे बज रहे हैं और ये जो बांसुरी है, मुझे लगता है कि और सुकून और एहसास, जो जुदाई का मखमली एहसास है, उसको और उभार रही है।
1: ऐसा होता है अमूमन दोस्तों कि कभी कभी प्यार साथ होकर भी साथ नहीं होता, हाथों में हाथ होता है लेकिन दिल कहीं और पर, उसका ध्यान जो दिल का होता है वो कहीं और होता है। दिल यही कहता होगा कि तू पास है फिर भी फासला सा क्यों है, ये कैसा अजनबीपन तेरी आंखों में छुपा है।

और जिस तरह से ये गज़ल आगे की ओर बढ़ रही है, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे उद्गार हमारे भी इसके साथ जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि ये गज़ल नदी की तरह से प्रतीत हो रही है, जिसमें हमारे भी जो विचार हैं मन के, वो एक तरंग की तरह से उठते हैं, लहरों की तरह से, और इस गज़ल रूपी नदी में समा जाने के लिए आतुर व्याकुल से प्रतीत हो रहे हैं। इतना शानदार पूरा वातावरण तैयार कर रही है ये गज़ल

0: कि जहाँ पर बहुत सारा दर्द है और एक मलाल का रंग भी है, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम कर रहे होते हैं, उस प्रेम के आँखों में या उसके भावों में या उसके बॉडी लैंग्वेज होती है उसमें, अगर ज़रा सा भी कुछ अलगाव वाली जो बात होती है या अजनबियत वाली जो एक बात होती है, उसका अगर छोटा सा भी कतरा दिखाई पड़ता है तो मन विचलित सा हो जाता है और ये लगता है कि अरे क्या चाहा था और ये क्या हो रहा है। जिसको मैंने एक जीवन की तरह से प्यार किया है, वो प्रेम शायद अब कोई दूसरा रुख अपना रहा है, कोई दूसरा रास्ता अपना रहा है, तो ये एक तरह से पीड़ादायक भी बात होती है।
1: आप कह रही हैं कि गज़ल रूपी नदी या भावनाओं की नदी जब हम लोग सुन रहे होते हैं, तो शायद इस नदी में हम लोग भी उस उतार चढ़ाव के साथ बहे चले जाते हैं और कुछ शब्द इन गज़ल से, शेर से, नज़्म से ले लेते हैं ना। यहाँ पर कितनी सुंदर और बात उन्होंने कही है आकतल शफाई जी ने, कि हमने सारे जो गम हैं खुशी की तरह लिया है। वो जो आप कह रही हैं कि ये एहसास की गहराई और बड़प्पन, और जब सामने वाले को इसका भान होता है तो जो शर्म का एहसास है वो भी उभर आता है।

0: क्या बात है नेहा जी। देखिए ये गजल जब अभी हम सुन रहे थे, इतने खूबसूरत भाव हमारे भी मिले जुले, जितने भी हमारे श्रोता होंगे जो भी इस भावना से गुजर रहे होंगे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस गजल को उसी तरह से अपना समझकर इसे महसूस किया होगा, बड़े अपनायत के साथ लिया होगा। लेकिन हाँ, अभी मेरे मन में ख्याल आ गया कि नेहा जी आप तो ऐसे ना थे।
1: मैं ऐसी नहीं थी। मतलब गजल पहले नहीं सुनती थी?
0: नहीं नहीं गजल तो आपने बहुत सुना है, खासतौर पर इस प्रोग्राम के साथ तो हम लोगों ने गजल को बहुत ज्यादा शेयर किया है, तो बहुत उससे राबता रहा है हमारा। लेकिन अगर हमारे जो लिसनर्स हैं वो जरूर समझ गए होंगे जब मैंने ये बोला कि आप तो ऐसे ना थे,
1: आप तो ऐसे ना थे,
0: क्या आपको कोई क्लू मिला इससे?
1: अच्छा, हाँ। आप जो है ना मुझे उसको कहते ना भरमा देना, या पहेली जो होती है ना वो वहाँ से शुरू होती है,
0: चकरा देना।
1: चकरा दे
0: तो देखिए हमारे दोस्तों ने भी समझा होगा जरूर नेहा जी आपकी ही तरह कि ये उस फिल्म का शीर्षक है जिसका एक बहुत ही बेहतरीन उत्कृष्ट गीत हम लेकर आए हैं। ये तीन आवाजों में है लेकिन पहली आवाज
1: पहले मनहर उदास जी वाला

0: नेहा जी
1: जी,
0: अब बताइए ये जो आवाज मनहर साहब की आ रही थी तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। अभी बात हो रही थी किया है प्यार हमने जिसे जिंदगी की तरह, लेकिन कितनी खूबसूरत रूप में यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई जब जीवन में प्रवेश करता है, हमारी जिंदगी बनकर आ जाता है, तो हमारी जिंदगी जीने की जो लालसा है वो कितनी बढ़ जाती है।
1: बहुत सुंदर ये जो आप बात कह रही हैं कि असल में उससे पहले ऐसा नहीं होता है, उस एहसास

0: के जगने से पहले
1: जी
0: कि कोई भी व्यक्ति जिंदगी नहीं जी रहा होता है। लेकिन जब अगर आप किसी दिए को देखें जलते हुए तो उसमें खास तरह की रोशनी होती है, कुछ पीली भी होती है, हल्की सी नीली होती है, बीच में कुछ लालिमा लिए हुए सी होती है। तो वैसे ही जब शायद दिल के अरमा जगते हैं, मैं कहूँ लौ की तरह जलने लगते हैं, कई रंग व्यक्तित्व में और जिंदगी में नजर आने लगते हैं,
1: बिल्कुल।
0: है
1: और
0: ना?
1: देखिए कितने सारे रंग अभी और नजर आएंगे जब हम इसकी अगली लाइन की तरफ चलेंगे
0: जी
1: और जब हम सुनेंगे, तब जिन्होंने इसे लिखा है वो गीतकार तो है ही हैं इस गीत के, लेकिन वो एक बहुत बड़े शायर भी रहे हैं उर्दू अदब के, नेहा जी,
0: कैसे बोल सकते हैं
1: है ना। तो पहले हम सुन लेते हैं,
0: जी
1: फिर
0: जी
1: हम आते हैं शायर साहब पर।
0: मैं बोलूंगी नहीं दोस्तों, मुझे पता है इस कार्यक्रम के अदब के बारे में।
1: तो चलिए अदब से सुनते हैं इस खूबसूरत पंक्तियों को।

0: वंदना जी, अब आप कहिए तो थोड़े सा राज में खोल दूं?
1: नहीं, बिल्कुल
0: अब रहा नहीं जा रहा है।
1: अरे इजाजत है नेहा जी।
0: दोस्तों, निदा फाजली साहब जब कोई बात कहते हैं, लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी कलम की जो स्याही है ना, उस बूंद बूंद में शायद प्यार भरा रहा होगा। और ज़िंदगी को जब वो शब्दों में ढाल करके लिखते होंगे तो एक अलग एहसास जगते होंगे, तभी शायद इस तरह का गाना बन पड़ता है। और जब आप इसको सुनते हैं, बहुत सारा सुकून है, इत्मीनान है। और मुझे लगता है कि इस खायनात का हर शख्स ज़रूर चाहता होगा कि उसे इस तरह के मोहब्बत का एहसास हो, है ना?
1: सच कह रही हैं। और जब आप गीतकार निदा फाजली साहब की बात कर रही हैं, तो हम संगीतकार की बात नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इस पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, जहाँ पर एक से बढ़कर एक संगीतकार हुए हैं, वहाँ पर उषा खन्ना ने अपनी खास जगह बनाई है और संगीत का वो जादू जगाया है। आप उनके किसी भी गीत को उठाकर देख लीजिए, वो एक जो खूबसूरत रिदम होता है, जो लय है, ताल है, उसकी समझ, उसकी पकड़ इतनी बेहतरीन तरीके से उनके अंदर भीतर समाई हुई है। और बहुत हद तक ओपी नैयर के संगीत से और शंकर जयकिशन के संगीत से उनका काफ़ी जुड़ाव दिखाई पड़ता है, जब जब हम उषा खन्ना जी के गीत को या संगीत को सुनते हैं। तो देखिए, अभी हम मनहर दास जी को सुन रहे थे, लेकिन इसी गीत को जब हेमलता अपनी आवाज़ देती है, तो उसमें भी जो आवाज़ की जो कशिश होती है, जो देसीपन है उनका, वो आपके दिल को छू जाएगा, आपकी आत्मा को छू जाएगा।
0: तो चलिए, देर किस बात की,

0: ये जो मैं कहूँ देसी खनक है, वो जब रूह में उतरती है कानों के जरिए, तो शायद जबान पर भी चढ़ सी जाती है और होठ गुनगुनाने लगते हैं। मुझे इसकी एक लाइन जो निदा साहब लिखते हैं कि भाई सब चीज़ अपनी ठिकाने पर है, सूरज चांद ये हवाएं ये आसमां सब कुछ, पहले जमाने से शिकायत हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। मतलब
1: नेहा जी यही है कि जब हम प्यार में होते हैं तो हम बाहरी दुनिया को भुला देते हैं कि हमारे साथ क्या तकलीफें चल रही, कौन कितना हमको दुख दे रहा है, क्योंकि जिससे हमको साथ मिला, जिससे हमें प्यार मिला है, वही छाया होता है हमारे पूरे व्यक्तित्व पर। आसपास का जो पूरा वातावरण होता है उसके घेरे में, उस प्रेम के घेरे में हम होते हैं, तो बाहरी कोई भी चीज़ हमको छू नहीं सकती है।
0: इसका मतलब है कि इंसान वही होता है, अगर एक खास तरह के जो जज्बात हैं वो जग जाए तो उसे शिकायत नहीं होगी।
1: बिल्कुल नहीं होगी, वो इंसान बन जाएगा।
0: मतलब कई बार ऊपर वाले की जो ये कलाकारी है उसको देख के ताज्जुब होता है कि चीज़ वही है, सब कुछ वही है ठिकाने पर, लेकिन कुछ बदल सा जाता है भाई, और ये बदलाव बहुत सुंदर होता है।
1: बिल्कुल
0: ना?
1: और यहाँ पे सामने जो नजर आ रही हैं वो रंजीता हैं, खूबसूरत सी।
0: अच्छा,
1: और
0: ये
1: राज
0: वही,
1: बब्बर
0: ये
1: यहाँ
0: वही
1: पर
0: है ना जो अखियों के झरोखों में वाली हीरोइन है,
1: वही वही अभिनेत्री है। लेकिन ये दो वर्जन जब हमने सुने हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि रफी साहब की आवाज का जो जादू इस गीत में, यानी जो अभी हम गीत सुन रहे हैं, जब रफी साहब ने इसे गाया था और ये दीपक पराशर पर ये फिल्माया गया था, तब वो जो एक बहाव एक गति जो होती है वो जब नजर आती है तो ये गीत अलग रंग में ढलकर नजर आता है, इसके रौ में हम बहते चले जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इसकी एक थोड़ी सी झलक।

0: ये झलक मुझे याद दिला गई है फलक के बारे में।
1: आहा, क्या बात है, झलक से फलक, क्या बात है। तो फलक तक चल साथ मेरे,
0: साथ में चलिए। फलक

0: ओह माय गॉड, ये हाथ में हाथ थामे और फलक तक चलने की बात, मुझे लगता है कि कौशर मुनीर जी जब लिख रहे थे इस गीत को तो जरूर आसमां के नीचे बैठे थे,
1: सच चांद सितारों की छांव तले बैठे थे, ये कही है नेहा जी।
0: हाँ, और तब वो इतना सुंदर लिख डालते हैं। अच्छा वंदना जी, दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि हम शायद दसियों साल पहले उस गाने को देखे होते हैं सिनेमा घरों में या टेलीविज़न पे, और वो गाने कई बार जब हम कुछ इंटरवल्स पे सुनते हैं तो भी जीवंत से लगते हैं,
1: क्योंकि ये गाना जब बनाया जा रहा होता है उस समय किस तरह के जज्बात उसमें डाले गए हैं और किस तन्मयता के साथ गीत को गढ़ा गया है, वो बहुत मायने रखती है बात। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि विशाल शेखर का संगीत तो वो तो जादू रचते हैं, उनके संगीत में सच में वो बिल्कुल तिलिस्म सा होता है कि जिसमें हम कैद

0: और मुनीर साहब का क्या कहना है, क्या शब्दों के जरिए, जो बिंबों के जरिए अगर कहें तो, जिस तरह से वो एक पूरा एक ख्याल बुन रहे हैं और उस ख्याल के इर्द गिर्द हम अपने ख्याल उसमें शामिल कर रहे हैं जब हम इस गाने को सुन रहे हैं। इतनी सुंदरता के साथ उन्होंने शब्दों को गढ़ा है, एक एक लफ्ज़ जैसे मोतियों से बिखरते हुए चले जा रहे हों, और उसकी जो मानी है वो इतनी गूढ़ है क्योंकि बहुत सारे और अर्थों को लिए हुए हैं जो बहुत ही अपनाइयत से भरपूर हैं। और प्रेम की दस्तक जहाँ पर हो रही है वो बात इतनी हसीन है, इतनी दिलकश है कि उस दिलकशी में दिल हमारा भी डूब डूब जा रहा है।
1: करीना कपूर, अक्षय कुमार और सैफ अली खान इस गाने में नज़र आ रहे होते हैं। शुरुआत में रेगिस्तान जैसा कुछ दिखाई पड़ता है, उसके बाद नदी, वहाँ पे नाव है और तीनों बैठे हुए हैं और दो लोगों के बीच में बहुत सुंदर से जो ये जज्बात हैं उभर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, जब दिन ढल रहा है और ये जो रथ है सूरज का, उस दिन की बाहों में आ झुकता है। और फिर कहते हैं कि कोई ऐसा चौबारा ढूंढते हैं जहाँ पे चाहत की बूंदों से ये चौबारा बना हुआ है, शायद छुप से जाते हैं। और जो एक हर व्यक्ति स्वप्न देखता है कि उसके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा और कुछ सुंदर सा आशियाना होगा, आशियाने में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं, तो वो आशियाना उस चौबारे पे गढ़ने की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि अरे कौशल मुनीर साहब ने वहाँ से शुरुआत की और कैसे एक घर तक ले आए हैं। नहीं

0: जरा देखिए, जब ये गाना 2008 में
1: जी
0: रिलीज होता है, जश्न फिल्म में ये गीत है और यशराज बैनर तले ये फिल्म बनी थी
1: जी।
0: मुझे लगता है कि सिनेमा घर से जब लोग निकल रहे थे तो बात सिर्फ गाने की हो रही थी। कई बार ऐसा होता है कि गाने जो हैं सुपरसीड कर जाते हैं
1: जी।
0: और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें चांद को अड़ने की बात है और बिगड़ने की बात है, और धीरे धीरे चंदा जो है आंखों में जब समाने लगे, बहुत सुंदर कल्पना है। ऐसा लगता है कि इतने ठहराव के साथ ये जो चीज़ें ठिकाने पर हैं, निदा फाजली साहब कहते हैं
1: जी।
0: उन लोगों ने कितने सुंदर रूप में इस एहसास को देखा ना।
1: सच कह रही हूँ। और देखिए, हमारे दोस्तों ने भी जब ये सुना होगा ये गीत, तो वो भी इसमें डूब जरूर गए होंगे।
0: हाँ।
1: और बहुत सारे एहसास उनके हृदय के भीतर भी जन्म ले रहे होंगे
0: जी।
1: और वो एहसास कौन कौन से उभर कर आए हैं वो तो श्रोता बताएंगे हमें अपने संदेश के द्वारा।
0: हाँ श्रोताओं।

0: कैसा लगा आपको आज का हमारा कार्यक्रम? लिख भेजिए अपना संदेश, हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए। व्हाट्सएप नंबर है
1: 8004926250। तो नेहा जी
0: जी,
1: अब विदा लेने का मन तो नहीं हो रहा है क्योंकि फलक तक चले आए हैं, तो अब जमीन पर उतरने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन उतरना है क्योंकि अगली बार फिर से आना है।
0: हाँ,
1: और किसी और दुनिया में लेकर जाना है अपने दोस्तों को।
0: बहुत सुंदर सा कारवां होता है ये, जब आपसे मिलना होता है तो बहुत सारी तैयारी करनी होती है। तो ठीक है, हम चलते हैं तैयारी के लिए और आप लिखिए पत्र। तो अब हम कहते हैं
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे। वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का था, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की थी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। दोस्तों, भारतीय सिनेमा का संगीत केवल गानों का संग्रह नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के हर मोड़ का हमराही रहा है। कभी किसी की पहली मोहब्बत का एहसास तो कभी ढलती शाम का तन्हा साया। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बहुत प्यारे प्यारे नगमे और आपसे कुछ बातचीत भी करेंगे। तो कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म पत्थर के सनम से। इसे गाया है मुकेश ने और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम का ये प्यारा सा गाना।

दोस्तों, संगीत वो भाषा है जो सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। और जब बात हो मोहब्बत की, एक दूसरे से कभी ना जुदा होने के वादों के, तो पुराने गानों की मिठास हमारी रूह को छू लेती है। कहते हैं ना कि जब कोई अपना थोड़ी देर के लिए भी दूर हो जाता है तो वक्त थम सा जाता है, दिल बेचैन हो उठता है और खामोशी चीख चीख कर बस यही गुजारिश करती है कि ठहर जाओ, अभी मत जाओ। इन्हीं भीगे भीगे एहसासों को पिरोकर सन 1970 के दशक की मशहूर फिल्म आया सावन झूमके का एक ऐसा सदाबहार नगमा रचा गया जिसे आज भी जब हम सुनते हैं तो यादों के दिए जल उठते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का रूहानी संगीत, आनंद बख्शी साहब के दिलकश बोल और मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज़, वाह क्या कहने। आइए सुनते हैं एक गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और फिल्म है आया सावन झूमके।

दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि समर्पण। समर्पण की वो पराकाष्ठा जहां इंसान अपनी हस्ती भूलकर सामने वाले के रंग में ऐसा रंग जाता है कि जब तक वो पूरी तरह से उसका अपना ना हो जाए, जब तक आंखों में वो मासूम बेकरारी ना हो, तब तक वफा का नाम ही अधूरा रहता है। इसी निश्चल और अटूट प्यार के एहसास को रूह में उतारने के लिए अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये गीत, जो कि सन 2002 में आई फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का है, और इसे महान गायक उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल जी ने अपनी सुरीली आवाजों से सजाया है। ये गीत हमें सिखाता है कि सच्चे प्यार में किसी भी शर्त की गुंजाइश तो होती ही नहीं। तो आइए सुनते हैं फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म चिराग का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जसपिंदर निरूला के स्वर में एक पारंपरिक भक्ति रचना।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए साबिर जलालाबादी की रचना रूपकुमार राठौर और सोनाली राठौर की आवाजों में।

रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर के गाए इस गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वीवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमरीका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा, ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 1 महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशुल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है।

0: कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेबर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेबर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है।

0: नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा, आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
2: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। नरेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रूपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का यह टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood hit Nepal. Death toll rises to over 1200 with over 4000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over 136 billion US dollar inflows till August 31st. Shri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Mark de Wever to arrive in New Delhi tonight on a 3-day visit to India. Talks on trade, defence, technology, energy and connectivity high on agenda. Heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbh and West Uttar Pradesh tomorrow. And India to stage inaugural Women's Champions Trophy in 2027 after Sri Lanka dropped as hosts. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Barendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. The death toll from devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share responsibility for mitigating its impacts. Prime Minister Narendra Modi participated in the valedictory session of the departmental summit of the Ministry of Jal Shakti in New Delhi today. The 2-day departmental summit was the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India, deepen cooperative federalism and foster collective ownership of national priorities through closer collaboration between the centre and the states. The initiative provided a structured platform to jointly deliberate on critical sectoral priorities and accelerate implementation and outcomes. The Reserve Bank of India

0: category. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization and future water requirements, emphasizes greater adoption of water-saving technologies. New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200 with over 4,000 people still missing. Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Bart De Wever to arrive in New Delhi tonight on a three-day visit to India. And heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbha and West Uttar Pradesh tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: Aadab, ye Akashwani hai. खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल के लिए हंगामी सामान की पांचवी खेप भेजी है। मरने वालों की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। आरबीआई ने बताया कि खसूसी अमरीकी डॉलर भारत रुपए फॉरेक्स स्वैप सहूलत के तहत 31 अगस्त तक 136 अरब अमरीकी डॉलर नकद रकम के तौर पर मौसूल हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला सीईओ मुकर्रर किया है। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वीवर भारत के 3 रोजा दौरे पर आज रात नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुजाकरात में तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, तवानाई और कनेक्टिविटी के मामलों को तरजीह दी जाएगी। मशरकी मध्य प्रदेश, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में कल तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है और भारत अव्वलीन ख्वातीन चैंपियन ट्रॉफी 2027 की मेजबानी के लिए मुंतखब हुआ है। श्रीलंका को मेजबानी से हटा दिया गया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल में अपनी राहती कार्रवाई को तेज कर दिया है और उसने इमरजेंसी साजो सामान की पांचवी खेप वहां पहुंचाई है। नेपाल में भारत के सफीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि राहत और इमदादी साजो सामान लेकर पांचवा भारतीय तैयारा आज सुपहर नेपाल पहुंचा। तैयारे में 11 अफराद पर मुश्तमिल बचाव टीम भी है, जो सुरंगों से बचाने वाले खसूसी आलात से लैस है और साथ ही 5.5 टन जरूरी दवाएं भी तैयारी में हैं। भारतीय फजाइया ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में जरूरी साजो सामान पहुंचाने के लिए कई उड़ानें भरी। भारत ने तलाश और बचाव में मदद के लिए खसूसी तआवुन भी दिया। इधर नेपाल के वजीर आजम बलेंद्र शाह ने आज पार्लियामेंट में भारत के फौरी रद्द अमल के तहत उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने तबाहकुन सैलाब के अलमनाक हादसे में फौरन तआवुन दिया। बचाव टीमें बदतरीन मुतासरा इलाकों में जिंदा बच जाने वालों और लापता अफराद की तलाश में लगी हैं। नेपाल में इस तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1204 हो गई है, जबकि 4216 अफराद अब भी लापता हैं। बचाव में लगे अफराद बारिश और मलबे से नबर्द आजमा हैं, ताकि उन लोगों का पता लगा सकें जिनके बारे में ये माना जा रहा है कि वो भूटे कोशी दरिया के किनारे वाके सुरंगों और जेर जमीन पावर हाउसेस में फंसे होंगे। भारत के रिजर्व बैंक ने आज बताया कि उसके खसूसी अमरीकी डॉलर भारतीय रुपए USDINR फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी को 31 अगस्त 2026 तक 136 अरब अमरीकी डॉलर का जर मुबादला मौसूल हुआ है। कुल नकद रकम में से गैर मुल्की करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक FCNRB में जमा रकम जबरदस्त अक्सरियत की हामिल है, जो 127.2 अरब अमरीकी डॉलर पर मुश्तमिल है। इधर बैरून मुल्क गैर मुल्की करेंसी बोरोइंग्स OFCBs में 5.26 अरब अमरीकी डॉलर आए और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ECBS में 3.89 अरब अमरीकी डॉलर मौसूल हुए। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को USDINR फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी शुरू की थी, जो FCNRB में रुकूमात जमा करने, ECBs और OFCBs नकद रुकूमात का अहाता करती है। जरे मुबादला में स्वैप की इस सहूलत का ऐलान कमजोर होते हुए रुपए के सिलसिले में डॉलर की नकद फराहमी को फरोग देने के मकसद से किया गया था, जिस

0: के नायब वजीर आजम रेडोस्ला सिकोरस्की के साथ मुजाकरात करेंगे। पोलैंड में अपनी मीटिंग को के इख्तिताम पर वजीर खारजा यूक्रेन का सफर करेंगे, जहां वो यूक्रेन के अपने हम मनसब एंड्री साइबा से बातचीत करेंगे। ये आकाशवाणी है। ईरान ने आज खबरदार किया है कि वह अमेरिका के साथ जारी अपने तनाज़े के सिलसिले में एक नई हिकमत अमली इख्तियार करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े में आई हालिया तेज़ी के बाद ये बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कौमी सलामती की आला कौंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई ने कहा कि मैदान जंग पर सिफारतकारी में और इकतसादी नाकाबंदी से महाज आरई में ईरान की नई हिकमत अमली उसके मुखालिफिन की बुनियादों को हिला कर रख देगी। ये इंतबाह पूरे मगरबी एशिया में की पोजीशंस पर ईरानी हमलों के ताजा लहर के बाद सामने आया है, जिसे कई हफ्तों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दोनों तरफ से सबसे भारी हमले करार दिया गया है। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब ने कहा कि उसकी अफवाज ने उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और इराक के खुद मुख्तार कुर्दिस्तान खित्ते में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये हमले ईरानी निशानों के खिलाफ अमरीकी फौज की कार्रवाई के बाद किए गए हैं, जिसमें तेहरान के मुताबिक 18 अफराद हलाक हुए हैं। कांगो में इस साल मई के बाद से इबोला के 6,100 तस्दीक शुदा मामलात में से 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आज जारी किए गए ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक मई के वस्त में जब से इसका ऐलान किया गया था उस वक्त से इबोला के 6,186 तस्दीक शुदा मामला दर्ज किए गए हैं और 3,007 अमवात हुई हैं। झारखंड में स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा हुआ है। रियासत भर में गुज़िश्ता 30 रोज में कुल 36 मामला दर्ज किए गए हैं, जिनमें 18 बच्चे और बालिग अफराद शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: स्वाइन फ्लू या H1N1 इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के पेश नजर झारखंड में सेहत के महकमे ने सभी बड़े अस्पतालों को अलर्ट रहने, फौरी टेस्टिंग और मुश्तबे मामलात के इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 के लिए जदीद टेस्टिंग सहूलतें दस्तियाब हैं। रियासत भर में मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों को हर एक में कम से कम 10 इजाफी बिस्तर रिजर्व करने की भी हिदायत दी गई है। सेहत का महकमा बैन रियासती सफर करने के बाद झारखंड वापस आने वाले अफराद की भी निगरानी कर रहा है। रिम्स के क्रिटिकल केयर महकमे के सरबराह डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा है कि H1N1 एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ताहम बच्चों, बुजुर्ग अफराद और संगीन बीमारी में मुबतला लोगों को इजाफी एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। तेज बुखार, कपकपी, खांसी गले
0: करने पर भी जोर दिया। भारत ने सैलाब से मुतासर नेपाल के लिए हंगामी सामान की 5वीं खेप भेजी है। मरने वालों की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। RBI ने बताया कि खसूसी अमरीकी डॉलर भारत रुपए फॉरेक्स स्वैप सहूलत के तहत 31 अगस्त तक 136 अरब अमरीकी डॉलर नकद रकम के तौर पर मौसूल हुए हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है।
1: गों और मसालों के काफिले मध्य एशिया के बीहड़ रास्तों से गुजरा करते थे। ताशकंद से बिश्केक तक फैली वो धरती जहां इतिहास के पन्नों ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा, लेकिन आज 21वीं सदी के नक्शे पर वही मध्य एशिया सिर्फ इतिहास की किताब नहीं बल्कि ग्लोबल पावर प्ले का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। ऊर्जा का अकूत खजाना, यूरेनियम के भंडार और भू राजनीति का नया केंद्र, चीन की उठती इमारतें, रूस का पारंपरिक दबदबा और अफगानिस्तान के मुहाने पर सुलगती अशांति, इन तमाम चक्रव्यूहों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक के सरजमी पर। 4 दिनों की ये महायात्रा सिर्फ 2 देशों का दौरा नहीं थी, ये ताशकंद में यूरेनियम की डील से भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को लॉक करने की पटकथा थी। ये बिश्केक से पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अल्टीमेटम था। ये कदम था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से व्यापार के नए रास्ते खोलने का। ये शंखनाद था मध्य एशिया के दिल में भारत की कनेक्ट सेंट्रल।

0: एशिया नीति को एक नए युग में ले जाने का। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे कुछ बड़े सवाल भी हैं। क्या भारत सेंट्रल एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस का नया अध्याय लिख रहा है? क्या ये चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच भारत की अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश है? इन बेहद महत्वपूर्ण सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद।
0: चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से उज्बेकिस्तान के साथ रिश्ते पहुंचे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक। 2030 तक व्यापार को $5 अरब से ज्यादा ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल पेमेंट्स, डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कनेक्टिविटी, यानी सहयोग का दायरा अब सिर्फ कूटनीति की मेज तक सीमित नहीं है। और फिर बिश्केक SCO के मंच से भारत का स्पष्ट संदेश, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। त्रिगुणायत जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला है। चीन और रूस के पारंपरिक प्रभाव वाले इस क्षेत्र में भारत का ये कूटनीतिक कदम सेंट्रल एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्या लगता है आपको?
1: देखिए आनंद जी, 2012 से हमने अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को स्थापित किया है और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज में विजिट किया और उनके साथ में हमारे जो C5+1 या दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिश्ते बना पाए और प्रगाढ़ कर पाए, उसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। लेकिन जैसा आपने कहा है कि सेंट्रल एशिया जो है इस वक्त ग्रेट गेम के अंदर में लगा हुआ है। आज की डेट में वहां पर जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस रूस का है वो पुराना है, क्योंकि ये सारे कंट्रीज रूस के रिपब्लिक्स थे 1991 से पहले, और उसके बाद से चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस वहां पर जियो इकोनॉमिक्स के रूप में उभरा है। और रूस और चीन ने बीच में ये एडजस्ट किया है कि जियो पोलिटिकली रशिया अपना स्थापित करता रहेगा लेकिन चीन को जियो इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक एंगेजमेंट के साथ उनको बढ़ावा देते रहेंगे, तो वो दोनों के बीच हो रहा है। तो यूरेशियन कनेक्टिविटी की बात वहां पर चल रही है। उधर अमेरिका उनका एक थर्ड नेबर बन के उभरा है, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने भी अपना C5+1 और ये इस तरह के काफी वहां पर कोशिश की है, इसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया में। क्योंकि आज की डेट में जब हम सेंट्रल एशिया को देखते हैं तो सेंट्रल एशिया को कॉकेशस के साथ मिलाकर के देखा जाता है, तो उस सब के अंदर में भी अमेरिका काफी वहां पर है। चौथा कंट्री जो है वो वहां पर है टर्की। टर्की ने अपना वहां पर काफी जो उनका टर्किक लैंग्वेजेस का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है उसके चलते उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी को वहां पर काफी बढ़ाया है। तो ये चारों कंट्रीज और गल्फ के कंट्रीज भी कुछ इन्वॉल्व हैं इस तरह से, मेनली यूरोपियन यूनियन भी काफी वहां पैसा लगा रहा है। आप विश्वास मानेंगे कि आर्मेनिया के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो उस रीजन की सबसे बड़ी एम्बेसी है और आर्मेनिया के साथ हमारे रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट इस वक्त हुई है वो दो संदर्भ में हुई, एक तो ये कि बायलैटरल है हमारा उज्बेकिस्तान के साथ में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जैसे आपने कहा कि उसको हमने कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है जिसका मतलब सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया या न्यूक्लियर डोमेन के अंदर हो गया, डिफेंस में हो गया, ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारी सेंट्रल एशिया के साथ रही है वो है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के लिए हमने जो है जब डायरेक्ट हमारा पाकिस्तान के थ्रू नहीं हो पा रहा, अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रहे, सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच पा रहे थे, तो भारत ने चबहार पोर्ट के जरिए जाना शुरू किया। लेकिन अभी चबहार पोर्ट भी जो है अमेरिका की काटसा सैंक्शंस और आजकल तो बमबारी चल रही वहां पर, तो ये सब करने की वजह से भारत को थोड़ा वहां चबहार पोर्ट में हमारे को कंट्रोल प्रॉब्लम हुई है। उसी के चलते वहां पर जो आपने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, उसमें भी चबहार पोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सारी जो समस्याएं इस वक्त जियो पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन की वजह से, खासतौर से अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जो है बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं, और उसमें भारत ने कोशिश ये की है कि किस तरह से हम उनको इम्यूनाइज कर पाए उन प्रॉब्लम से ताकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस आगे बढ़ सके। तो किस तरह हो सकता है, एक तो एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब आप ये देखिए कि अभी प्रधानमंत्री को हमारे जो जाना पड़ा 7.5 घंटे लग गए जबकि ये 2.5 से 3 घंटे के बीच हमारे कंट्रीज हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जिस तरह का एक अपना नजरिया दिखाता है, हमारे जो दुश्मनी के ताल्लुकात उनके साथ हैं उसके चलते ये समस्या सबसे बड़ी आई। तो मैं समझता हूँ कि काफी सारे एरियाज में बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत बड़ी है। दूसरा, उज्बेकिस्तान भी जो है ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री है, तो उनके जो लीडर हैं

0: शवकत मिर्जिया है वो भी भारत आएंगे, जब हम भारत इस बार जो है ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है तो वो सब उसके अंदर, जो ऑल्टरनेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो SCO हो, नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो ब्रिक्स है, और बायलैटरली भारत ने पूरी कोशिश की है कि इन सब देशों के साथ मिलकर के किस तरह से हम और आगे बढ़ा सके अपने जो हमारे रिश्ते हैं, हिस्टोरिक और
1: जी
0: सिविलाइजेशनल टाइज है। आई मीन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहां पर भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है, आप अगर जाकर देखें वहां पे कल्चरली लोग जो है
1: जी
0: वो काफी अलाइंड है भारत के साथ, लेकिन इस वक्त में प्रधानमंत्री की विजिट से काफी मैं समझता हूँ एक ये जो रिश्ते हैं और आगे बढ़ेंगे और प्रगाढ़ होंगे।
1: जी प्रोफेसर जोशी, भारत और उज्बेकिस्तान ने 2030 तक आपसी व्यापार को $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान व्यापार आंकड़ों को देखते हुए ये लक्ष्य कितना व्यावहारिक है, और इसमें फार्मा, आईटी, माइनिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों की क्या भूमिका रहने वाली है आपके नजरिए से?
2: देखिए ये देखना इस बार बड़ा सुखद रहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान की यात्रा की तो उनको न सिर्फ वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जिस प्रकार के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं, बहुत लंबे पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उसको जब हम ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं टेंजिबल आउटकम्स में, जब हम दो देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो उसमें व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो उसमें एक जो अभी व्यापार का हम वॉल्यूम दोनों देशों के बीच में देखते हैं वो कम है, उसमें बहुत बड़ी संभावना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को $5 बिलियन तक करने का लक्ष्य रखा है। और हम ये भी ध्यान में रखें कि जब हम उज्बेकिस्तान की ओर देखते हैं तो भारत को क्रिटिकल मिनरल्स और विशेषकर यूरेनियम सप्लाई करने वाला देश है, तो जब हम इस ट्रेड टारगेट को देखते हैं तो फिर इसमें एक प्रिफरेंशियल ट्रेड की बात भी आती है, ताकि कन्वेंशनल जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कट किया जा सके और दोनों ही देशों के जो निवेशक हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको फायदा हो सके। तो एक तो एक टारगेट सेट किया गया $5 बिलियन का, प्रिफरेंशियल ट्रेड की बात दोनों देश कर रहे हैं ताकि जितने भी टैरिफ से जुड़े हुए और नॉन टैरिफ से जुड़े हुए जो बैरियर्स हैं और जो निवेश में जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो जब हम भारत को देखते हैं तो भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हुए, व्हीकल ऑटोमोबाइल्स हुआ, उसके पार्ट्स हुए, अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हुए, मोबाइल फोन्स हुए, ये तमाम और कुछ खाद्य पदार्थ जो है उज्बेकिस्तान को भेजता है। वहीं जब हम उज्बेकिस्तान की ओर नजर डालते हैं तो फल और सब्जियां, फर्टिलाइजर्स, कुछ केमिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें कि यूरेनियम शामिल है वो भारत को प्रोवाइड कराता है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर एक क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक का ऐसा नया क्षेत्र उभर के आता है आनंद, जिसमें विशेषकर एक तो क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में सहयोग को आगे ले जाने की कई गुना व्यापार बढ़ाने की बात की जा रही है, जो भारत और उज्बेकिस्तान दोनों के लिए एक विन-विन सिचुएशन की तरह है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो जो ये नोवीस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, विशेषकर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और AI है, इसको लेकर के भी दोनों देश और दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बात करते हुए नजर आए। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत के जो अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो कि आज भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको हमने कल प्रूफ भी किया, हमारी क्वार्टरली ग्रोथ 7.8% की रिकॉर्ड हुई है GDP की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हर्ष का विषय है। और वहीं दूसरी ओर भारत की जो तकनीकी ग्रोथ है उसकी भी उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने तारीफ की थी जब ये बायलेटरल ऑफिशियल टॉक्स हुई। और इसमें फिर मैं कहती हूँ कि न सिर्फ हम सेंट्रल एशिया की ओर, भारत जब अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एग्जीक्यूट करता है दूसरी तरफ जाकर, तो वहां पर भी जो इंडोनेशिया जैसे देश हैं, फिलीपींस जैसे देश हैं, वो भारत की ओर देखते हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें व्यापार में फिर जो है एक पूरा सामरिक क्षेत्र आ जाता है जिसमें डिफेंस से जुड़े उपकरण, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ये तकनीक को लेकर के सहयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान के साथ भी जो व्यापार को 5 बिलियन करने की बात की गई है उसमें जो ये तमाम जो नवाचारी क्षेत्र हैं इनका भी उल्लेख है। इसमें दोनों देश साथ में काम करेंगे, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर, दोनों स्तर पर ये दोनों देशों के लिए और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है।
1: जी त्रिगुणायत जी, जो ताशकंद वार्ता रही उसमें जो सबसे बड़ा टेक अवे रहा वो उज्बेकिस्तान से भारत के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति की रूपरेखा तय होना रहा। भारत की स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस समझौते के रणनीतिक महत्व को आप कैसे आंकते हैं?
0: देखिए, भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और भारत एक लीडर के रूप में निकला है जहां तक कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन की बात है या

0: दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने की बात है। तो भारत ने अपना जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक नया आयाम किया है, उसी तरह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के इस तरह के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसी तरह भारत ने अपना लक्ष्य जो है न्यूक्लियर एनर्जी का रखा है, लगभग 100 गीगावाट बाय 2047। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसके लिए आपको जो है यूरेनियम की प्राप्ति, उसकी आपूर्ति, लॉन्ग टर्म सप्लाईज, उन सबको करना होता है। अभी हम सिर्फ कजाकिस्तान से खरीदते हैं यूरेनियम, और भारत चूंकि ऑलरेडी जैसे अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, और इस वक्त में अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत काफी कुछ चीजों में हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में जो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमने साइन किया है येलो केक या जिसको बोलते हुए लेंगे वहां से, तो ये हमारी जो ऊर्जा के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, देखिए इस वक्त हमने देखा है जो ईरान के साथ युद्ध हुआ है उसमें जिस तरह चोक पॉइंट्स हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बाबल मंदब हो, जब उनके बंद होने से एनर्जी सप्लाईज में बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, तो ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है जैसे INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस सब की वजह से क्या है, आपको अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की भी बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो है फोकस किया है कि रिन्यूएबल एनर्जीज को हम कैसे और आगे बढ़ाएं।
1: जी बिल्कुल प्रोफेसर जोशी, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये भी जान रहे हैं कि UPI 10 से ज्यादा देशों में इस समय इस्तेमाल हो रहा है। उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक में भारत के फिनटेक और IT सेक्टर के प्रवेश के जो अवसर बन रहे हैं उसे आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या ये भारत की सॉफ्ट पावर का नया हथियार बन रहा है?
2: आनंद, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरी चर्चा में जोड़ दिया, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं आपको हमारे प्रधानमंत्री की पिछली इंडोनेशिया यात्रा की ओर ले जाना चाहूंगी, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खुल के तारीफ की थी, और विशेषकर भारत की इलेक्टोरल सिस्टम और जिस प्रकार से हमने EVMs के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को सहज सरल ट्रांसपेरेंट बनाया, डिजिटाइज किया, उसकी तारीफ करते हुए एक महत्वपूर्ण MOU जो है वो भारत के साथ इंडोनेशिया ने साइन किया। तो इसी प्रकार से आप अपने आसपास के जब तमाम देशों को देखते हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया के देश हो, साउथ एशिया के देश हो, ईस्ट एशिया के देश हो, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, आज भारत की जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है पूरे विश्व में। और 140 करोड़ की आबादी के घने देश को डिजिटाइज करना सरल काम नहीं था आनंद, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। तो चाहे हमारा आधार हो जो हमारा बायोमेट्रिक और डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, चाहे अपना UPI हो जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है जिसकी वजह से इंस्टेंट जो पेमेंट्स हैं वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बीच में और अलग अलग मुद्राओं के बीच में भी संभव है, आज 10 से अधिक देशों में अपना UPI स्वीकार्य है, चाहे अपना डेटा शेयरिंग का डेपा हो जिससे कि डेटा एम्पावरमेंट को और प्रोटेक्शन को बल मिलता है, या ONDC हो जो कि ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स के लिए जिसमें कि बायर्स और सेलर्स को ये एप्लीकेशन आपस में जोड़ती है और एक प्राइवेट मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। तो हम फिर इससे जुड़ी हुई अलग अलग जो हमने योजनाएं चलाई, चाहे जनधन हो, आधार हो, मोबाइल फोन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, तो इससे हमने दो प्रकार के अकम्प्लिशमेंट अचीव किए। एक तो हमने अपना जो पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पब्लिक सर्विसेज थी, उनको ट्रांसपेरेंट किया, इजी किया, सीमलेस किया, और इनको हमने डेमोक्रेटाइज किया, ये जन जन तक हमारी योजनाएं और ये तमाम जो पूरा डिजिटाइजेशन था ये पहुंचा। और दूसरा, हमने तमाम इसके माध्यम से जो बेनिफिट हुए वो एक ग्रास रूट लेवल पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाए। तो ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है, और आज भारत अपना जो DPI का ब्लूप्रिंट है उसकी ग्लोबल शेयरिंग कर रहा है। अलग अलग जो देश हैं वो भारत के साथ में ऑफिशियल अग्रीमेंट्स के थ्रू ग्लोबल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के DPI की। ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने भी न सिर्फ फिनटेक को या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि अलग अलग जो तमाम क्षेत्र हैं जो लोगों की सिटीजन्स की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, या जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, उससे जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की यात्रा की थी, तो घाना अफ्रीका में या अर्जेंटीना, ब्राजील को हम लैटिन अमेरिका में देखें, इनको हम अपनी जो हमारा जो ई मेडिसिन संजीवनी की जो सर्विसेज हैं वो
1: जी
2: प्रोवाइड कराते हैं, और जो टेली मेडिसिनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, और वहां पर उनकी सर्विसेज को हम ग्रो करा रहे हैं। तो इसी प्रकार के अग्रीमेंट्स हमने इन दो देशों के साथ भी किए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं, तो उनकी जो डिजिटाइजेशन की

0: यात्रा है, इसका ये बड़ा माइलस्टोन है जिसमें भारत अपने ब्लूप्रिंट को शेयर करके तमाम ये जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं इसमें इन दोनों देशों को आगे ले जाने का काम करने वाला है।
1: जी, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में चल रहे युद्धों पर भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि संघर्षों का समाधान बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को एंडलेस वॉर्स से एंडिंग वॉर्स की दिशा में आगे बढ़ना होगा और भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है। गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग। इन सभी विषयों पर कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं।
1: त्रिगुणायन जी, इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जो प्रधानमंत्री ने युद्ध को लेकर अपनी बात कही, बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के सख्त संदेश दिया। अफगानिस्तान से सटने वाली मध्य एशियाई सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भारत का ये रुख कितना प्रासंगिक है, जब आप देख रहे हैं कि कई देशों की सीमाएं अस्थिर और अशांत बनी हुई हैं।
3: देखिए आनंद जी, बात ऐसी है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आज 25 साल मना चुका है अपनी एनिवर्सरी, उसका मेन जो उद्देश्य था वो था टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, इन चीजों के लिए लड़ना और सिक्योरिटी को बढ़ाना किसी तरह से। उनके कुछ रेड्स टाइप के जो बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उन्होंने। इस पूरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही जो है टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ना है। भारत अपने आप लड़ रहा है, दुनिया भर में सबको कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स अगर आप रखेंगे तो इस बुराई, इस कुरीति और इस तरह के देशों के साथ में कोई भी पार्ट को नहीं कर सकते, उसको सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री ने इस बार फिर कही। और अगले जब 25 साल की बात हो रही है तो उसमें ये बहुत आवश्यक है कि दुनिया जो है अपने ये डबल स्टैंडर्ड्स, खासतौर से मेंबर कंट्रीज जो है वो ना रखें इसमें। तो भारत पूरी तरह से जब तक अपने आप तो लड़ता ही रहेगा टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन दुनिया को ये सबक दे रहा है कि अगर आप इससे नहीं लड़ेंगे तो कल आप इसका शिकार बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ईरान युद्ध जो हुआ है, देखिए जितने भी इस तरह के इन्वेजन होते हैं, हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो मदर ऑफ ऑल इवल्स वाज इन्वेजन ऑफ इराक, कि इराक में जब अमेरिका ने अटैक किया था तो उस वक्त के बाद सारा टेररिज्म बढ़ा, आईसिस आया वहां पे, आईसिल आया। अब आप ईरान के अंदर भी उसी तरह का अटैक कर रहे हैं, तो ये जितने भी उनके ग्रुप्स हैं जिनको टेररिस्ट ग्रुप बोला जाता है, 4H, वो सब और ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद में दोबारा से और ज्यादा इस तरह की बात होगी, तो ये जो सारी सीमाओं का बिल्कुल मतलब नहीं रह जाएगा जब नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना बढ़ावा मिलेगा स्टेट्स की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का बड़ा सीधा भाषण था और राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ा सीधा, उन्होंने जब पहली बार वर्ड्स में ये कहा कि एंडलेस वॉर को एंड ऑफ वॉर होना चाहिए, और पहले उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन ईरा वॉर, तो मैं समझता हूं कि ये बात और उनकी मुलाकात जो है ईरान के राष्ट्रपति से भी हुई, डॉक्टर पजेशकियान से, और तब भी वो बातें हुई हैं। देखिए जब तक ये युद्ध नहीं रुकेंगे, जब तक देश जो है इस तरह का ये दुभातिया व्यवहार जिसको कहते हैं या डबल स्टैंडर्ड वो इसमें नहीं छोड़ेंगे, तब तक इन सब लड़ाइयों से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो, इनसे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
1: जी, प्रोफेसर जोशी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एससीओ के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का 3 पिलर्स वाला विजन दिया। आपसे ये समझना चाहेंगे कि वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध के इस दौर में मध्य एशियाई देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद और संतुलित पार्टनर के रूप में खुद को कैसे स्थापित कर रहा है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है।
0: हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं, जब हम दो देशों के या भारत और किसी संगठन की के संबंधों की चर्चा करते हैं तो हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत के लिए कोई भी वो देश या वो संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस बात की चर्चा भी अवश्य होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस प्रश्न का उत्तर देने में कि भारत किसी क्षेत्रीय संगठन के लिए, भारत किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग संप्रभु देशों के रूप में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, तब जबकि शीत युद्ध समाप्त हुआ, ये तमाम देश

0: में आए और भारत के साथ बहुत लंबे समय से इनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्राकृतिक इनके पास में तमाम रिसोर्सेज हैं, विशेषकर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और जिस तरह की इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको देखते हुए हमने वर्षों से देखा है कि न सिर्फ रशिया के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए ये देश जो है वो जियो पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे, और वही भारत के साथ भी स्थिति है। लेकिन जब इन देशों के, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, इन देशों के जब हम सेंट्रल एशिया में जा करके व्यवहार को या इन देशों के साथ के पारस्परिक संबंधों को देखते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी का जो रुख है वो एक ट्रांजैक्शनल रुख है इन तमाम देशों के प्रति। और वहीं जब हम भारत को, भारत की कूटनीति को देखते हैं, तो भारत ने विगत 11 से 12 वर्षों में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, विन विन रिलेशनशिप्स को कैसे आगे ले जाते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या किसी भी क्षेत्र की जो क्षेत्रीय अखंडता है, संप्रभुता है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए आप चाहे कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें काम करें, या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें काम करें, या जब आप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को आगे ले जाने की बात करें तो उसकी ओर देखें। तो इस बात का संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार के SCO समिट में चीन की मौजूदगी में दिया कि कनेक्टिविटी पर काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी देश की जो संप्रभुता है, विशेषकर उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका सम्मान करते हुए कनेक्टिविटी की दिशा में काम करना चाहिए। और ये अपने आप में चीन को एक बहुत बड़ा संदेश था। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत की जो कूटनीति है वो बहुत सकारात्मक कूटनीति है। भारत न किसी प्रकार का डेट क्राइसिस या डेट डिप्लोमेसी खेलते हुए किसी देश के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि उसके किसी भूभाग पर जाकर के कब्जा करे या वहां अपनी प्रेजेंस को असर्ट करे। न भारत इस प्रकार की कूटनीति करता है कि अपने फायदे की या अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करने की सोचता है जिसमें कि दूसरे देश का नुकसान हो जाए। न भारत इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा हो। और आज जो भारत की शक्ति की स्थिति है आनंद, वो हम सभी जानते हैं। कल अपनी आर्थिक शक्ति का तो भारत ने पूरे विश्व को परिचय दे ही दिया, तब जबकि अमेरिका के प्यूनिटिव मेजर्स और तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर रखा था, पश्चिम एशिया का संकट बहुत गहराया हुआ था, और बाकी के जो देश है, विशेषकर पश्चिम के जो शक्तिवान देश है, उनका जो GDP ग्रोथ है रेट रहा वो 0.5 से लेकर 2% तक का रहा। हमने अपना GDP इस क्वार्टर का जो रिकॉर्ड किया है वो 7.8% का रिकॉर्ड किया है। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत ऐसा देश है, उसकी कूटनीति ऐसी, इस प्रकार की डायनेमिक कूटनीति है कि वो सभी मंचों पर एक सामंजस्य बना करके काम करता है, ग्लोबल साउथ की आवाज आगे लेकर के जाता है। ये देश जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बात भारत करता है। भारत UNSC में तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश है उनके नेतृत्व की बात करता है, और भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई की बात करता है। इसके साथ ही भारत अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, कनेक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में साथ में काम करने के लिए, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमीज को इंटैक्ट रखते हुए। तो यहां पर भारत इन तमाम देशों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हो जाता है, क्योंकि भारत जैसे देश पर इस प्रकार का भरोसा इन देशों का है कि भारत किसी भी प्रकार की नकारात्मक कूटनीति में ना पड़ते हुए अपने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर काम करता है।
1: विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी दी। आइए सुनते हैं विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा।
2: The Prime Minister held a bilateral meeting also with the President of Iran, Dr. Pezeshkian. The two leaders dwelt on recent developments in West Asia and developments in the bilateral relationship. And the Prime Minister conveyed to President Pezeshkian how much he was looking forward to welcoming him in New Delhi for the BRICS summit in less than 2 weeks' time.
1: त्रिगुणायत जी, कार्यक्रम अब अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां से कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं उस द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से कि भारत विकसित बनने की राह पर और आगे बढ़ सके। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री की महायात्रा थी, इसमें कौन से ऐसे पहलू आपको नजर आते हैं जो भारत को विकसित बनाने की तरफ और आगे लेकर जाएंगे।
3: देखिए, भारत हमेशा से विश्वास ये करता है कि अगर हम विकसित हो रहे हैं तो हमारा विकास जो है वो दूसरे जो देश हैं उनके साथ भी उसको साझा किया जा सके। तो जैसा अंशु जी ने बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहें, क्योंकि दुनिया बिल्कुल अब नए ढंग से चल रही है।

0: टेक्नोलॉजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत प्रदान करता है, शेयर करता है दूसरे देशों के साथ में। तो जब हमारी ग्रोथ हो रही है, इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 7.8% क्लॉक किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिश्ते हम बना रहे हैं वो तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, जनरल सिक्योरिटी है, और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसमें साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है। या तो हम वहां पे टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं, भारत में मेक इन इंडिया की बात करते हैं, किस तरह से विकसित भारत को आगे बढ़ाए, कैसे वसुधैव कुटुंबकम के जरिए दूसरे देशों को जो ग्लोबल साउथ के हैं उनको फायदा पहुंचाए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह से भारत हमेशा और सब देशों के साथ में उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए हमेशा साथ रहता है। तो मैं जब देखता हूं कि जब हम विकसित 2047 की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं या दूसरे देश हैं जो ग्लोबल साउथ के डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं, वो भी हमारे जो ग्रोथ है उसका लाभ उठा सके। तो मैं समझता हूँ यही भारत की एक नीति है जिसकी वजह से भारत को लोग एक विश्व मित्र के रूप में देखते हैं।
1: जी, ताशकंद के ऐतिहासिक गलियारों से लेकर बिश्केक की चोटियों तक वक्त का पहिया एक बार फिर घूम चुका है। सदियों पहले जिस रेशम मार्ग पर भारत के ज्ञान, संस्कृति और मसालों की खुशबू महकती थी, आज 21वीं सदी का नया भारत उसी धरती पर अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अटूट सामरिक पहचान का परचम लहरा रहा है। उज्बेकिस्तान में मिला प्रधानमंत्री को सम्मान सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि एक कूटनीतिक जीत भी नहीं है, बल्कि मध्य एशिया के दिल में भारत के बढ़ते विश्वास की वो मुहर है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिगुणायत जी आपका, प्रोफेसर जोशी आपका और हमारे श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म दो बदन के उस गाने से जिसे गाया है आशा भोसले ने, संगीत दिया है रवि ने और गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने।

आइए सुनते हैं फिल्म डेंजरस इश्क का गीत राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। शब्द रचना शब्बीर अहमद की है, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

अब लीजिए सुनिए, समीर का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया, फिल्म तेरे नाम का गीत, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की हैं।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जख्म का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है MM करीम ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म वो कौन थी से है। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार मदन मोहन है। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

और इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए प्रियंका मलिक का राग मारू बिहाग में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत की है विनोद कुमार मिश्र ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रियंका मलिक का राग मारू बिहाग में ख्याल गायन, आपके साथ तबले पर संगत की विनोद कुमार ने। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: दिन जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और इसकी प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाले विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम की प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नाम की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉ. निर्मला यादव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का यह टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Saira Mujtaba. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal.